सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर एवं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि तदनुसार 14 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नज़दीकी स्टेशन हैं।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana.
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, अनुशासन किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता अपितु आत्म अनुशासन लाया जाता है।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है वंदना। सर्वप्रथम नमन अपनी मातृभूमि को, जिसकी पावन धरा पर हमारा जीवन विस्तार पाता है। इसके गौरवशाली नागरिक होने का सौभाग्य हम आजीवन पाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्तिपूर्ण गीत। उस परम पिता के आलोक पुंज की अनेक रश्मियाँ संपूर्ण संसार को आलोकित करती हैं। उनके विविध दिव्य स्वरूप भक्तों के मन मंदिर को प्रकाशवान बनाते हैं, असीम ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं।

महेंद्र दहलवी की लिखी ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में। अपने आराध्य के समक्ष दीप प्रज्वलित करना, पुष्पार्चन नैवेद्य अर्पित करना हमारे मन को आनंदित करता है और ऐसा ही आनंदित मन अपने प्रभु की भक्ति में कीर्तन कर उठता है।

संत कबीर दास रचित ये भजन अभी आप सुन रहे थे मधु मुद्गल के स्वर में। श्रोताओं, सेवा करते हाथ प्रार्थना करते हाथों से भी अधिक पवित्र माने जाते हैं। यदि हमें प्रभु की सच्ची भक्ति करना है तो दीन दुखियों की सेवा करना ही अपने प्रभु के निकट पहुंचने का श्रेष्ठ माध्यम होता है। यूं भी कहा गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है।

नीरज का लिखा ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में। पूजा पाठ के भव्य तरीके मानव को क्षणिक प्रसन्नता देते हैं, परंतु भगवान तो केवल निश्चल भक्ति भाव चाहते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद, माता शबरी, केवट, सुदामा, मीरा भाई की भक्ति में निश्चल प्रेम और अटूट भक्ति की पराकाष्ठा है, और यही भक्ति का आदर्श माना जाता है।

0: कन्हैया लाल कन्हैया की लिखी ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे अंजलि जैन और साथियों के स्वर में। इस भजन के साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन। आलेख डॉक्टर HP स्थापक का है। वाचक स्वर माधवी येंडे का।
1: समुद्र की तरह गंभीर विचारशील महात्मा गांधी जी ने मुंबई में वकालत प्रारंभ की थी। उन्होंने केवल सही अधिकारों के लिए ही पैरवी करने का संकल्प लिया था। मिथ्यावादी एक मुवक्किल ने अपने गलत पक्ष पर पर्दा डालते हुए मनगढ़ंत कहानी के आधार पर गांधी जी को अपना केस दे दिया। इस बात का रहस्य जब खुला, सत्य सामने आया, तो कोर्ट में उन्होंने बहस नहीं की। आगामी पेशी की तारीख बढ़ गई। गांधी जी ने मुवक्किल द्वारा दी गई फीस उसे वापस कर दी। कुछ व्यक्तियों ने फीस वापस न करने का आग्रह किया और कहा, वकीलों को तो मिथ्या असत्य का सहारा लेते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर तो करना ही पड़ता है। गांधी जी ने कहा, लोग क्या करते हैं वो मेरा आदर्श नहीं, मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे अच्छी तरह याद है। मैं परंपरा या धन के लोभ में सिद्धांतों को बट्टा नहीं लगाऊंगा। महात्मा गांधी मिथ्या और असत्य के घोर विरोधी थे तथा सत्य एवं सत्य धर्म पालन के हिमायती थे। विचार मंथन से स्पष्ट होता है कि संसार के स्वरूप में असत्य, मिथ्या और सत्य, ये तीनों बातें निहित रहती हैं। गांधी जी ने सत्य को धारण किया। ये मानी हुई बात है कि जो व्यक्ति देवतुल्य गुण शास्त्र सम्मत जीवन जीता है और गुरु के चरणों में

0: अनुराग रखता है वही व्यक्ति सत्य को धारण कर सकता है। गांधी जी ने यही किया। उन्होंने पाया कि सत्य का संबंध अहिंसा से है और असत्य का संबंध हिंसा से होता है। असत्य जीवन को कलंकित कर देता है। असत्य, मिथ्या, झूठ, फरेब का सहारा लेने वाला व्यक्ति षट विकारों से ग्रसित रहता है। विकारों के त्याग से सत्य की रक्षा होती है। सत्य विजय प्रदाता और कल्याणकारी है। सत्य को जानना ईश्वर को जानना है। सत्य और ईमान का रास्ता स्वर्ग में जाकर खत्म होता है। गांधी जी कहते थे, जहां सत्य है वहां ईश्वर है, जहां ईमान है वहां खुदा है। व्यक्ति के जीवन में सत्य विविध रूपों में सामने आता है। सत्य के तीन रूप हैं, आधी भौतिक, आधी दैविक और आध्यात्मिक। आधी भौतिक रूप में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पर आधारित दृष्टिगत सत्य है। न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष रखने के पूर्व शपथ ली जाती है, मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये सांसारिक रूप इंद्रियों के प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित सत्य है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर की बात छोड़िए, आज कलयुग में बड़ा ही घृणित रूप सामने आ रहा है। आजकल प्रत्यक्ष न देखने वालों को भी गवाह बनाया जा रहा है। गवाह खरीदे जाते हैं, बदले जाते हैं। मिथ्या दृष्टि दुख का स्वार्थ और लोभ का कारण है। झूठ और फरेब से जीवन बिगड़ता है। सत्य के आधी दैविक रूप का ज्ञान व्यक्ति के मन के द्वारा ही होता है। छाया और अंधकार में प्रकाश की गति की तरह अनुभव गम्य है। आध्यात्मिक सत्य ध्यान के द्वारा आत्मा में ही परमात्म तत्व का अनुभव परम सत्य है। परमात्मा सत्य स्वरूप है जिसका प्रमाण आत्मबोध है, आत्मा है। जीवात्मा ही परमात्मा का निज घर है, ये सत्य है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख डॉक्टर HP स्थापक का, वाचक स्वर माधवी येंडे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर रविंद्र साठे का।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

0: श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। कृषि सामिकी आज का विषय है धान में पोषक तत्व प्रबंधन।
1: किसान भैयारो, धान की ज्यादा पैदावार लेवे के लाने एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जी में रासायनिक उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैविक उर्वरक, हरी नीली शैवाल, गोबर की खाद और हरी खाद जैसी चीजें समुचित मात्रा में उपयोग अपन कर सकते हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को सबसे पहलो सिद्धांत जो है कि फसल लेवे के पहलो मिट्टी की प्रयोगशाला में मृदा की जाँच कराई जाओ चाहिए, जी के आधार पर पोषक तत्वों की सही मात्रा खेत में डारी जा सके। कई किसान भैया ने अपनी मृदा की जांच नहीं करवाती आए। धान की फसल के लाने बे 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटाश की मात्रा की सिफारिश करी जात है। खेत तैयार करत समय पे खेत में सड़ी भई गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद को 10 से 12 टन को प्रयोग करो जा सकत है। इसे नाइट्रोजन को अधिक उपयोग हो जात है और मिट्टी को जो भौतिक स्तर है उमें सोई सुधार होत है। यूरिया से प्राप्त होवे वाली नाइट्रोजन की बर्बादी कम करवे के लाने यूरिया की संपूर्ण मात्रा को धान की फसल में 3 बार में उपयोग करो चाहिए। यूरिया की 1/3 भाग प्रारंभिक खुराक के रूप में रोपाई करवे के पहलों दौ जाओ चाहिए, जिससे मिट्टी को नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। इके बाद में दूसरी मात्रा कल्ले फूटवे की पहली स्टेज पे टॉप ड्रेसिंग के रूप में दई जात है। ध्यान देवे जो बात जा है भैया के टॉप ड्रेसिंग के समय खेत से पानी की निकासी कर दो चाहिए और

0: जरूरत के अनुसार 24 घंटा के बाद में खेत में पानी भरो चाहिए। टॉप डेसिंग से उपज में बढ़ोतरी होते है। यूरिया की तीसरी मात्रा माने के अब जो शेष एक तिहाई भाग है उमे फूल आवे के एक सप्ताह के पहले डाल दो चाहिए। इससे धान की बालियों की संख्या और मोटाई दोनों बढ़ जाते हैं। दाना बनवे के बाद में उर्वरक को प्रयोग नहीं करो चाहिए। फास्फोरस को उपयोग सिंगल सुपर फास्फेट सभी प्रकार की मृदाओं में उपयोगी मानो जात है और फास्फोरस धीरे धीरे पौधों की जड़ों द्वारा खींचो जात है, जिसे जड़ों की वृद्धि के लाने जो बहुत ज्यादा उपयोगी मानो जात है। ऐसे ही 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डार्वे की सिफारिश करी जात है। काली और भारी मिट्टी में पोटाश की पूरी मात्रा एक संगे बेसल डोज के रूप में डालो चाहिए। ऐसी मिट्टी जी में जस्ता की कमी पाई जात है उनमें फसल में कल्ले फूटवे की कमी के कारण पौधन में असमान वृद्धि, जैसे के बोने पौधा माने के छोटे बड़े हो जावो, पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे पड़ जावो और नई पत्तियों की निचली सतह की जो मिड रिब है माने उमे हरियाई न दिखावो। जिंक सल्फेट की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम पडलिंग की समाप्ति के समय पे डालो चाहिए। जिंक को मृदा में उपयोग खड़ी फसल में पर्णीय छिड़काव करवे से कहीं ज्यादा फायदेमंद होते है। जिंक की कमी से धान की फसल में खैरा रोग होते है, जिके निदान के लाने 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलोग्राम यूरिया को 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करो चाहिए। लोहे की कमी को दूर करवे के लाने 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 100 लीटर पानी में घोल के 7 दिनों में एक बार छिड़काव जरूर करो चाहिए। ढेंचा की फसल से तैयार करी गई हरी खाद को उपयोग सोई धान की फसल में लोह तत्व की पूर्ति कर देते है। 0.2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिप्सम पायराइट देवे से लोह और गंधक की जो जरूरत है वह पूरी हो जाते है। रोपाई के टेम पे पौधों की जड़ों के जैविक खाद के घोल में 15 मिनट तक डुबो खे रखबे के बाद रोपाई करवे से अच्छी फसल होत है। एजाइटोवेक्टर के प्रयोग से धान में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जात है और ऐसे ही PSB को उपयोग फसल में फास्फोरस उपलब्ध कराउत है। हरी नीली सेवाल खेत में भरे भय पानी में वृद्धि करखो एक चटाई को आकार ले लेत है और नाइट्रोजन के फिक्सिंग को काम करत है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। लीजिए सुनिए हमारी आज की दोनों सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आज सुबह 10:10 पर विश्व दर्पण, शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

आज रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और सुबह 9:15 पर गांधी चर्चा हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम आपके मैसेज हमारे गीत आप सुनेंगे और आज रात्रि 10 हम प्रसारित करेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष गोष्ठी स्वतंत्रता की काव्यांजलि। प्रतिभागी कवि हैं श्री सोहन परोहा सलिल, श्री शिरीष गोंटिया, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा पीयूष और संचालन करेंगे श्री मनीष तिवारी।

शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोक संगीत में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे रवि कांत श्रीवास्तव और मनमोहन शर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत। सुगम संगीत का वक्त होगा शाम 6:45 पर। आज की कलाकार हैं मीता भट्टाचार्य।

सुबह 9 बजे लोकरसधार कार्यक्रम में सुनिए राम किशोर सूर्यवंशी और रुद्रदत्त दुबे के गाए बुंदेली लोकगीत। वंदे मातरम गौरव गान की 150 वीं सदी की आज की कड़ी आज सुबह 10:05 पर।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा सुबह 10:20 पर और सुबह 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे।

ये थी जानकारी आज की दोनों सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: राज्यसभयापि अनुमोदितम्। कृष्णांगारक खनिमंत्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ सप्तपञ्चाशदधिक एकोनविंशतितमस्य मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् एतं विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अद्यतावत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः वर्तते। देशस्य विभाजन काले स्वप्राणान् आहुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अत्रावसरे देशः श्रद्धांजलिं समर्पयति। अस्य दिवसस्य आचरणाय कृत्स्ने हि देशे राष्ट्रीय राजधान्यांच विविधाः स्मृति कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। केन्द्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अद्य विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसस्य पूर्व संध्यायां नवदिल्ल्यां आयोजितं एकं विशेष कार्यक्रमं संबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संचार पटलीय संदेशे असौ देशस्य विभाजन काले घोरयातनाम् अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकताम् अखण्डतां सामाजिक सौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः चतुर्वादनतः एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सुगमगमनागमनाय गृहीतः। नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे चतुर्दिनानि यावत् आयोजितायां राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धायां अत्युज्ज्वल प्रदर्शनेन सह भारतं 35 पदकानि स्वायत्ती कृतवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई।

0: है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition's Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pains during the partition in 1947. We have a report.
2: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August every year as the day to commemorate their sacrifice. The Partition Horrors Remembrance Day keep reminding people of the need to remove the poison of social divisions, disharmony, and further strengthen the spirit of oneness, social harmony, and human empowerment. The partition caused among the largest migrations in human history, affecting about 20 million people. While celebrating the independence, a grateful nation also salutes those people who had to sacrifice their lives in the frenzy of violence. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. on Independence Day. The Delhi Metro Rail Corporation said that the decision has been taken to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public attending the Independence Day celebrations. The DMRC said that the metro services will operate at a 30-minute frequency in all lines until the commencement of the regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. The Lal Kila, Jama Masjid and Delhi Gate Metro stations are are the nearest stations to the Independence Day celebration.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आज विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस। 1947 के विभाषण में जान गंवाने और पीड़ा झेलने वालों को देश याद कर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में होंगे शामिल। शिकायतों के निराकरण की करेंगे समीक्षा। और भोपाल में आज निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। 32 किलोमीटर के सफर में 1,00,000 से ज्यादा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और पीड़ा झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस दिन विभाजन की त्रासदी को याद कर प्रभावित परिवारों के संघर्ष और दर्द को स्मरण किया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

0: की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी।
1: पार्टीशन हॉरर डे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 3 साल से मनाया जा रहा है, ये केवल उन स्मृतियों को कुरेद करके एक बार फिर उन घावों को ताजा करने जितना मात्र सीमित नहीं, अभी तो हम सब लोगों के लिए ये प्रेरणा लेने का दिन है। ऐसी दुरूह परिस्थिति देश में कभी न आए, इसलिए देश को इनको स्मृतियों में को ताजा करने एक बार फिर संकल्प लेने का अवसर के रूप में विभाजन विभीषिका दिवस को मनाने का क्रम प्रारंभ हुआ है।
0: वहीं दूसरी तरफ भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन विभीषिका से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गई है। ये प्रदर्शनी आज शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। वे कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लोगों के शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन के जरिए समस्याओं के समाधान की स्थिति देखी जाएगी। मुख्यमंत्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरलाय का निरीक्षण कर मैथ्स पार्क, आईसीटी लैब बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में 2 दिवसीय संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन कार्यक्रम में युवाओं ने संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर बहस भी की। वहीं आज समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए।
2: जब हम आज बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में जाकर बैठते हैं और पूछते हैं भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, तो हर कोई भले आता किसी भी परिवार से, लेकिन वो केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इसी बात को देखता है। वहाँ खड़े होकर कोई ये नहीं कहता मैं राजनेता बनना चाहता हूँ। वहाँ खड़े होकर ये नहीं कहता मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं उन्नत खेती करना चाहता हूँ। वहाँ कोई ये खड़ा नहीं होकर कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं व्यापार वर्ग से आता हूँ। वो इसके मन में भाव आने के लिए इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी भावना से आगे बढ़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू होकर संत नगर की भैंसाखेड़ी मंडी तक जाएगी। करीब 32 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल होंगे। चूना भट्टी समेत कई जगह सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहाँ नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश दिए जाएंगे। वहीं कल भोपाल, ओमकारेश्वर, उज्जैन, मंडला, बैतूल, मैहर, बालाघाट समेत कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में बड़ा तालाब पर 350 से ज्यादा तिरंगा सजी नावों के साथ नौका यात्रा शुरू हुई, जबकि ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 151 नावों से यात्रा निकाली गई। उज्जैन में अधिकारियों ने घोड़ों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं मंडला में सीआरपीएफ ने बाइक रैली निकाली। दमोह, मैहर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट में भी तिरंगा यात्राओं के साथ स्कूल कॉलेजों में देशभक्ति कार्यक्रम, तिरंगा रंगोली और चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन प्रदेश भर में करीब 8,135 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जबकि भोपाल और इंदौर में भी कई डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। सीहोर में 204 किलो संदिग्ध एनालॉग पनीर जब्त कर उसका नमूना जाँच के लिए भेजा गया है। मुरैना में भी 3 डेयरियों से 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जाँच रिपोर्ट आने तक जब्त पनीर को एनालॉग पनीर नहीं कहा जा सकता। सरकार ने एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। खंडवा में विभाग के अनुसार पिछले 15 दिनों में पनीर के 7 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार

प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मानसून का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते आज जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडौरी, मऊकन, सीधी, सिंगरौली समेत अगले 24 घंटे में 4 इंच या इससे ज्यादा बारिश यहां हो सकती है। भोपाल समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी तेज और हल्की बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अधिकारियों का दल आज खंडवा के पंधाना विकासखंड के ग्राम गांधवा का दौरा करेगा। मंदसौर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने गंभीर कुपोषित और अति कम वजन वाले बच्चों को तत्काल पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले के बड़ौ क्षेत्र के गंगापुर क्लस्टर में आयोजित होने वाले जन विश्वास शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं का जिला अधिकारी मौके पर समाधान करेंगे। छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अशोकनगर जिले की जनपद पंचायत चंदेरी में और विधानसभा क्षेत्र इंदौर 4 के उषाराजे परिसर में आज विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल तिरंगा महारैली निकाली गई। डीआरपी लाइन से शुरू हुई रैली का शुभारंभ मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। गुना में बीबीजी रामजी योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। गुड मॉर्निंग जबलपुर।

दोस्तों, यदि हम कहें कि आज सुबह आप दुनिया की एक बेहतरीन शख्सियत से मिले हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि वो कौन हो सकता है। लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे कि जी हाँ, आप रोज़ ही मिलते हैं और वो शख्सियत होती है आईने में आपके सामने रोज़, यानी स्वयं आप। क्योंकि भगवान ने हम सभी को अलग अलग विशेषताओं से पूर्ण कर इस धरती पर भेजा है। अब उन गुणों को पहचान कर उनसे अपनी विशेष पहचान बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और श्रोताओं, हमारा केवल परिचय पहचान नहीं बनता, उसके लिए हमें अपने जीवन में मिसाल कायम करना पड़ती है, ताकि हमारी मजबूती किसी और के लिए भी प्रेरणा बन सके। और दर्पण के समक्ष आप अनंत ऊर्जा, अपार संभावनाओं से भरी एक शख्सियत हैं, ऐसा विश्वास आप खुद में अवश्य रखें।

अमीर गजलबाश की शब्द रचना अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में। संगीतकार रविंद्र जैन और फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली। श्रोताओं, प्रतिदिन हमारी एक निश्चित दिनचर्या होती है और इसमें हम अपने ढंग से काम करते हैं। कहीं आते जाते हैं तो कभी मनपसंद जगह पर भ्रमण के लिए भी निकल जाते हैं। कार्यालय या किसी विशेष पेशे में कुछ अनिवार्य घंटों का हमें बंधन रहता है बस, बाकी तो हमारा अपना जीवन होता है। तो दोस्तों, इतनी चर्चा करने का अभिप्राय यह है कि इस स्वतंत्र जीवन के पीछे, हमारी आज़ाद फिजाओं के पीछे, हमारे देश के अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों, वीर बालाओं का लंबा संघर्ष और बलिदान रहा है। उन्होंने अपने निजी सुख और घर द्वार त्याग कर भारत भूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में लेश मात्र भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की, ताकि देश स्वतंत्र हो सके, उनके बाद की पीढ़ियां आज़ाद हवा में अपना जीवन गुजार सकें। उन क्रांतिवीरों का बलिदान अक्षुण्ण

है, अविस्मरणीय है। हमारा सर सदैव उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नतमस्तक रहेगा। दोस्तों, इस स्वतंत्रता का मूल्य हमें समझना होगा, क्योंकि ये एक मनमाना जीवन जीने का सिर्फ अधिकार नहीं है, वरन इसमें अपने देश के संदर्भ में हर कार्य के प्रति एक जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव निहित है। हम अपने देश के स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों या किसी हरे भरे स्थल पर अनावश्यक वस्तुएं ना फैलाएं, अपने देश की बिजली पानी की बचत करें, उन्हें व्यर्थ चलता ना छोड़ें, अपना पर्यावरण स्वच्छ रखें, अपने कार्यालयीन पारिवारिक दायित्व ईमानदारी से वहन करें, यही अपनी स्वतंत्रता का सच्चे अर्थों में सम्मान करना कहलाएगा। याद रखें, सच्ची स्वतंत्रता हमेशा अपने साथ जिम्मेदारी और कर्तव्य लेकर आती है, मनमानी कभी नहीं।

कवि प्रदीप की शब्द रचना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। संगीतकार हेमंत कुमार, फिल्म का नाम जागृति। गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सो योर प्लेस और माइन?
7: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
6: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
7: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
6: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
9: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
8: क्या, कैसे?
9: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
8: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
9: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
10: संदेशों के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। कार्यक्रम में अब हम लेकर आए हैं गीतों से सजी संगीतिका। गुलजार की शब्द

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। संगीतिका में लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी की शब्द रचना, महेंद्र कपूर के स्वर में। संगीतकार हैं रवि और फिल्म का नाम हमराज़।

संगीतिका में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में मन की आंखें फिल्म का ये नगमा, शब्दकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और श्रोताओं, संगीतिका के आखिर में हम लेकर आए हैं उपकार फिल्म का ये गीत, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना गुलशन बावरा की है, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम से चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ मनमानी करना कतई नहीं है, वरन यह एक जिम्मेदारी और दायित्व बोध है और यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। दोस्तों, ये आज़ाद फिजाएं हमें अनेक वीर सपूतों, वीरांगनाओं के लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद मिली हैं। उनके प्रति हमारा मन श्रद्धा और सम्मान से भर उठता है। श्रोताओं, कुछ और बातों, चर्चाओं और सुरीले गीतों के साथ हम फिर हाजिर होंगे और आपसे कहेंगे गुड मॉर्निंग जबलपुर। अब आज के कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अस्मिता को। नमस्कार।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सस्ता बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे

0: करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मेट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
3: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया।

0: गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निम्बुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19

0: घंटे भी ना चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under-construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all of those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pain during the partition in 1947. We have a report.
3: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August every year as the day to commemorate their sacrifice. It also ensures that future generations remember the pain and suffering endured by the people as the birth of independent India was marked by the violent partition which left lasting scars on millions. The Partition Horrors Remembrance Day keep reminding people of the need to remove the poison of social divisions, disharmony and further strengthen the spirit of oneness, social harmony and human empowerment. The partition caused among the largest migrations in human history, affecting about 20 million people. While celebrating the independence, a grateful nation also salutes those people who had to sacrifice their lives in the frenzy of violence. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: On Partition Horrors Remembrance Day, Prime Minister Narendra Modi has remembered the courage of all those who were impacted by partition. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के साथ। सबसे पहले सुनिए SH बिहारी की शब्द रचना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में। संगीतकार हैं OP नैयर। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए तीन देवियां फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए आज शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 बजे तक प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 बजे तक, वो फिल्में इस प्रकार हैं। पहली फिल्म है हम हिंदुस्तानी और इसका गीत है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। दूसरी फिल्म है कर्मा, इसके लिए गीत है ए वतन तेरे लिए। तीसरी फिल्म वीर जारा, गीत ऐसा देश है मेरा। चौथी फिल्म बॉर्डर, गीत है कि घर कब आओगे। और पांचवी फिल्म है रोजा, इसका गीत है ये हंसी वादियां। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। एक बार फिर सुनिए 9425149342। आपके संदेश हमें आज शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। और श्रोताओं, कार्यक्रम है आपके मैसेज हमारे गीत आज रात्रि 9:30 से रात्रि 10 बजे तक। सूचना समाप्त हुई। फिल्म संगीत में अभी

कभी धूप कभी छांव फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कवि प्रदीप के स्वर में। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी का गाया, साहिर लुधियानवी का लिखा ये नगमा। संगीतकार हैं जयदेव, फिल्म का नाम हम दोनों।

हम दोनों फिल्म के इस गीत के बाद लीजिए अब सुनिए 9-2-11 फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: प्रभावित परिवारों के संघर्ष और दर्द को स्मरण किया जाता है। प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य

0: सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन प्रदेश भर में करीब 8,135 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई, जबकि भोपाल और इंदौर में भी कई डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में 2 दिवसीय संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। और प्रदेश में आज जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी तेज और हल्की बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक रसधार कार्यक्रम। आज के हमारे दो कलाकार हैं रामकिशोर सूर्यवंशी और रुद्रदत्त दुबे। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, रामकिशोर सूर्यवंशी का गाया ये बुंदेली लोकगीत।

राम किशोर सूर्यवंशी के गाए बुंदेली लोकगीत के बाद लीजिए अब सुनिए रुद्र दत्त दुबे की आवाज में ये बुंदेली प्रस्तुति।

रुद्रदत्त दुबे और साथियों के गाए इस बुंदेली लोकगीत के साथ ही आज का लोकरसधार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। गांधी चर्चा अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

सत्याग्रही को उपवास का आश्रय अंतिम उपाय के रूप में तभी लेना चाहिए जब अन्याय के निवारण के सभी उपाय आजमा लिए गए हों और वे असफल हो गए हों। उपवासों में अनुकरण के लिए कोई स्थान नहीं होता। जिसमें आंतरिक शक्ति नहीं है उसे उपवास करने की बात स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए। एक बात और है कि उपवास को सफलता के प्रति आसक्ति के साथ कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्याग्रही अपनी दृढ़ धारणा से एक बार उपवास आरंभ कर दे तो फिर उसे उस पर कायम रहना चाहिए, चाहे उसकी सफलता की संभावना हो या ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उपवास का फल मिलता है या कि मिल नहीं सकता। जो व्यक्ति उपवास के अनुकूल परिणाम की आशा लेकर उपवास करता है वो प्रायः असफल हो जाता है। यदि वो असफल होता दिखाई नहीं भी देता तो भी वो उस आंतरिक आनंद से वंचित रहता है जो सच्चे उपवास से प्राप्त होता है। बेतुके उपवास प्लेग की तरह फैलते हैं और वे हानिकारक होते हैं, लेकिन जब उपवास कर्तव्य के रूप में सामने आए तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं उपवास तभी करता हूं जब मुझे लगता है कि वो जरूरी है। मैं किसी भी प्रकार से उसे टाल नहीं सकता। जो मैं करता हूं उसे वैसी ही परिस्थितियों में करने से अन्य लोगों को रोक नहीं सकता। ये सभी जानते हैं कि अच्छी चीजों का भी प्रायः दुरुपयोग होता है। हम अपने चारों ओर रोज इसे घटते देखते हैं। जब मनुष्य की चतुराई जवाब दे जाती है तो अहिंसा का पुजारी उपवास करता है। उपवास प्रार्थना के भाव में तीव्रता लाता है। ये एक आध्यात्मिक कृत्य है और इसलिए इसे ईश्वर को निवेदित करना चाहिए। लोगों के जीवन पर इसका यह प्रभाव होता है कि यदि वे उपवास करने वाले व्यक्ति से थोड़े भी परिचित हैं तो उनकी सुप्त चेतना जाग जाती है। हां, इस बात का खतरा जरूर है कि भ्रांतिपूर्ण सहानुभूति के वशीभूत होकर लोग अपने प्रिय व्यक्ति की प्राण रक्षा के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कर सकते हैं। इस खतरे का मुकाबला करना जरूरी है। आदमी अपने दृष्टिकोण की सच्चाई के प्रति आश्वस्त हो तो उसे सही कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे अधिकाधिक सावधानी सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार का उपवास अंतर्वाणी के आदेश का पालन करते हुए किया जाता है और इसलिए इसमें

जल्दबाजी का तत्व नहीं होता। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए आज शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है आज शुक्रवार शाम 4 तक, वो फिल्में इस प्रकार हैं। पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी, और इसके लिए गीत है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। दूसरी फिल्म है कर्मा, इसका गीत है ए वतन तेरे लिए। तीसरी फिल्म है वीर जारा, गीत ऐसा देश है मेरा। चौथी फिल्म बॉर्डर, घर कब आओगे, ये गीत है। और पांचवी फिल्म है रोजा, इसका गीत है ये हंसी वादियाँ। श्रोताओं, हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9425149342। आपके संदेश हमें आज शाम 4 तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, आज शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

स्पॉटलाइट रात्रि 9:15 पर और आज रात्रि 10 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम प्रसारित करेंगे विशेष काव्य गोष्ठी स्वतंत्रता की काव्यांजलि। प्रतिभागी कवि होंगे श्री सोहन परोहा सलिल, श्री शिरीष घोंटिया, डॉक्टर प्रशांत मिश्र पीयूष, संचालक होंगे श्री मनीष तिवारी।

फिल्म संगीत आज शाम की सभा में रात्रि 8:15 से 8:45 पर आप सुनेंगे और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे आज रात्रि 10:30 पर।

मीडियम वेव पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के साथ। लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीतकार हैं रवि और फिल्म का नाम है आँखें।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए हसरत जयपुरी की शब्द रचना मुकेश की आवाज़ में। संगीतकार हैं दत्ताराम, फिल्म का नाम श्रीमान सत्यवादी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए, अब सुनिए नीरज की शब्द रचना। संगीतकार हैं SD बर्मन और फिल्म का नाम गैम्बलर।

अनुरोध फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए गीत फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना आनंद बख्शी के है, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद।

फिल्म संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए प्यासा सावन फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, शब्दकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख डॉक्टर नीरज कुमार शुक्ल का है और वाचन स्वर है दीपा सिंह का।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख डॉक्टर नीरज कुमार शुक्ला, वाचन स्वर दीपा सिंह। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात केंद्रीय संचार मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के हालिया दौरे की। श्री सिंधिया ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित अशोकनगर रेलवे स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही बहादुरपुर कृषि उपज मंडी में कृषि सम्मेलन में किसानों से संवाद किया। जिला मुख्यालय पर दिशा के बैठक में करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम सेमरखेड़ी में विद्युत सब स्टेशन और चंदेरी के माँ जागेश्वरी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इसी दौरान श्री सिंधिया ने बताया कि अशोकनगर जिले में 6 गीता भवनों को मंजूरी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बारीलाल अहिरवार ने भी जिले का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम उज्ज्वला, लाडली बहना और समग्र पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की। जिले के 25,266 हितग्राहियों को करीब 1,51,59,000 रुपए की राशि मिली। इसके अलावा अप्रैल और मई की उज्ज्वला और लाडली बहना योजना की राशि के रूप में करीब 10,38,00,000 रुपए भी अंतरित किए गए। राष्ट्रीय भावना से जुड़े हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंदेरी के शासकीय हाई स्कूल फतेहाबाद में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्कूल स्टाफ ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। रैली के दौरान देशभक्ति के संदेश भी दिए गए। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक दिनेश दुबे ने जिले का दौरा किया। उन्होंने लखपति दीदियों से संवाद करने के साथ प्राणपुर में चंदेरी साड़ी बनाने वाले हैंडलूम का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अशोकनगर जिले ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में 100% उपलब्धि हासिल की है। अभियान के दौरान जिले में 1,57,161 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर पालिका का अमृत महाअभियान जारी है। इसके तहत शिवटोरिया और टिंचिंग ग्राउंड परिसर में 21 पौधे लगाए गए हैं। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान भी चल रहा है। यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके तहत मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी अशोकनगर ने प्रदेश स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। जुलाई में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के प्रदर्शन के आधार पर जिले को प्रदेश में 5वां स्थान मिला है। रोजगार आयुक्त ने कलेक्टर साकेत मालवीय को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। जिले में हर महीने युवा संगम के जरिए युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिले में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी जारी है। राजस्व विभाग ने ग्राम शंकरपुर पछार में कार्रवाई कर करीब 2,20,00,000 रुपए की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई। यहां सरकारी जमीन पर सड़क डालकर तार फेंसिंग की गई थी और अवैध कॉलोनी काटने की तैयारी थी। अपराध पर लगाम लगाने के लिए अशोकनगर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जाली भारतीय नोट चलाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में 87,700 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं नशे के खिलाफ जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्कूल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। लोगों को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। दूसरी ओर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अशोकनगर में सांदीपनी महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली सांदीपनी शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला भी वर्चुअली शामिल हुए। बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अशोकनगर में विद्युत वितरण कंपनी का संपर्क अभियान भी चल रहा है। अभियान के तहत 7 स्थानों पर लगाए गए शिविरों में 387 शिकायतें

0: प्राप्त हुए हैं। इनमें से 358 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शिविरों में 187 घरेलू, 78 कृषि उपयोग के नए बिजली कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आपने सुनी अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख डॉक्टर नीरज कुमार शुक्ल का था, वाचन स्वर था दीपा सिंह का।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी, आज की इस कड़ी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

श्रोताओं, वंदे मातरम अर्थात अपनी भारत माँ को नमन वंदन करने की ये प्रेमिल प्रणतांजलि, जिसे बंकिम चंद्र जी ने सन 1875 में लिखा, आज इसके 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्वाधीनता संग्राम में इस गीत ने देशवासियों को एकजुट किया, उनमें देशभक्ति की अनोखी प्रेरणा जगाई। अनगिनत बलिदानों संघर्षों के बाद आज हम सब आज़ाद हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी मनचाही जीवन पद्धति के लिए। वंदे मातरम में निहित भारत माँ के प्रति अगाध श्रद्धा हमें यही प्रेरणा देती है कि उनकी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक धरोहर को सहेजना ही हम देशवासियों का महती कर्तव्य है।

श्रोताओं, कवि ने भारत भूमि की प्राकृतिक सुंदरता, जल से परिपूर्ण नदियों, मलय पर्वत की शीतल हवाओं का जिस सुंदर भाव से वर्णन किया है, उसी भाव से इस संपदा को स्वच्छ संरक्षित रखना और अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करना ही सच्चे अर्थों में अपनी मातृभूमि भारत माँ को नमन करना कहलाएगा। वंदे मातरम एक अभिवादन ही नहीं वरन

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विश्व दर्पण अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत इसराइल हैकाथॉन में स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देशों के युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी। और कनाडा ओपन टेनिस में पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला सिंगल्स और अमेरिका के बेन शेल्टन ने पुरुष सिंगल्स खिताब जीते। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने और विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य वर्धन के विषय पर आयोजित भारत इसराइल हैकाथॉन को दोनों देशों के युवा नव प्रवर्तकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। ये स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास के क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करता है। इस हैकाथॉन में दोनों देशों के 1300 प्रतिभागियों ने 14 समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया। इसराइल के समाधानों में व्हीलचेयर पर लगाए जाने वाला अंग गतिशीलता तंत्र शामिल है। भारत के समाधानों में एक ऐसा तंत्र शामिल है जो घायलों के अंगों की गति का आकलन करने और स्वचालित गति विश्लेषण का उपयोग करता है। इस पहल ने भारत इसराइल के बीच आपसी संबंधों को मजबूत किया है। भारत द्वारा चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने को लेकर चीन और रूस ने इस वर्ष भारत के समर्थन की पुष्टि की है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में भाग लिया। एक रिपोर्ट।
2: राजदूत शू ने कहा कि चीन, भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को गहरा करने और वैश्विक मामलों में समूह की भूमिका को मजबूत करने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि करते हुए समूह को व्यवहारिक सहयोग और ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। चर्चा में समावेशिता, बहुपक्षवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जोर देते हुए एक लचीली और टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानव रहित ड्रोन और उसके पुर्जों के

0: आयात पर 100% तक का नया टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य चीन के प्रभुत्व वाले उद्योग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अमेरिका की निर्भरता को कम करना है। व्हाइट हाउस के अनुसार ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। नए उपायों में कुछ मानव रहित विमान प्रणालियों, विशेष रूप से 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बड़े ड्रोन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील मानी जाने वाली क्षमताओं से लैस प्रणालियों पर 100% टैरिफ शामिल है। नई नीति के अंतर्गत छोटे ड्रोनों पर 25% की कम टैरिफ दर लागू होगी। चीन वर्तमान में वैश्विक ड्रोन बाजार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2006 में स्थापित चीन के ड्रोन निर्माता DJI ने हाल के वर्षों में वैश्विक ड्रोन बाजार के 2/3 से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार कुरिल द्वीप समूह का दौरा किया। ये द्वीप समूह रूस के नियंत्रण में है और जापान भी इस पर अपना दावा करता है। उनके इस कदम का टोक्यो ने विरोध जताया है। एक रिपोर्ट।
1: जापान कुरिल द्वीप समूह के 4 सबसे दक्षिणी द्वीपों पर अपना अधिकार जताता है। इन द्वीपों को जापान उत्तरी क्षेत्र कहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत संघ ने इन द्वीपों को जापान से छीन लिया था। इस क्षेत्रीय विवाद के कारण दोनों देश युद्धकालीन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दशकों से किए जा रहे प्रयासों से कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। हाल के वर्षों में मॉस्को ने कुरिल द्वीप समूह पर अपनी सैन्य उपस्थिति भी मजबूत की है, जो क्षेत्रीय मुद्दों पर उसके दृढ़ रवैये को दर्शाता है। जापान के विदेश मंत्री तोशी मत्सु मोतोगी ने कहा कि वे राष्ट्रपति पुतिन की यूतोरूप यात्रा का कड़ा विरोध करते हैं, जिसे टोक्यो यूतोराफू कहता है। वर्ष 2021 में जब तत्कालीन रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशोस्टीन ने यूतोरूप का दौरा किया था, तब जापान ने भी विरोध दर्ज कराया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि वॉशिंगटन का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है।
2: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुफिया विफलताओं के कारण इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा बार बार गलत अनुमान लगाने का आरोप लगाया। यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है और वह इसे बरकरार रखेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह रणनीतिक जलमार्ग अवरुद्ध है और ईरान की शर्तें स्वीकार किए जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इंग्लैंड में लुइस शहर के पास एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 20 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रेन में लगभग 150 यात्री सवार थे और ये लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से ईस्टबोर्न जा रही थी। सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दमकल कर्मी, चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सहित 3 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पश्चिमी यूरोप का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। ब्रिटेन इस स्तर की गर्मी से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। दुकानों और दफ्तरों के बाहर एयर कंडीशनिंग का उपयोग न के बराबर ही होता है। उधर जंगल की आग इस सप्ताह दक्षिणी इंग्लैंड के न्यू फॉरेस्ट में लगातार फैल रही है। इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में 1000 से अधिक जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। नेपाल के रोल्पा जिले में तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग लापता हैं। ये घटना थ्वांग ग्रामीण नगरपालिका के कोटलबारा गांव में हुई, जो राजधानी काठमांडू से करीब 450 किलोमीटर पश्चिम में है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से 7 शव बरामद किए गए हैं। घटना में घायल 2 लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लापता लोगों में 2 बुजुर्ग महिलाएं और 3 बुजुर्ग पुरुष शामिल हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी हैं। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता की एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हराया। स्वियाटेक ने इस जीत के साथ इस सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। उधर पुरुष सिंगल्स में अमरीका के बेन शेल्टन ने मॉन्ट्रियल में अपने हम वतन ब्रेंडन नाकाशीमा को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ 5वीं वरीयता प्राप्त शेल्टन ने अपने करियर का दूसरा ATP मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बे सोलो न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत इसराइल हैकाथन में स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास संबंधी

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। सुबह के 10:20 हुए हैं और हम हाजिर हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सारंगा के साथ। आप सभी श्रोताओं को अस्मिता का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे सभी कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी बहुत आसानी से सुन सकते हैं। सारंगा कार्यक्रम के पहले गीत में फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार, किशोर कुमार और द्वारिका प्रसाद वर्मा। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से गायत्री धंजे, विशाल कुमार, शीला, राजेश कुमार और राहुल कुमार धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से महिमा वैद, रानी, नीतू और विजय वैद। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार की आवाज़ में परिचय फिल्म का ये नगमा। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: सारंगा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कैफी आजमी की शब्द रचना लता मंगेशकर के आवाज में। संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम बावर्ची। और इस गीत के लिए हमें पत्र भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश राशि और श्रीमती शीतल। दुबिया निवादा गाजीपुर से श्रीमती रोशनी राय, प्रतीक राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर बावर्ची फिल्म का ये गीत।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। श्रोताओं, अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए आज शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 तक, वो फिल्में इस प्रकार हैं। पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी और इस फिल्म का गीत छोड़ो कल की बातें। दूसरी फिल्म कर्मा, गीत ए वतन तेरे लिए। तीसरी फिल्म वीर जारा, गीत है ऐसा देश है मेरा। चौथी फिल्म बॉर्डर, गीत घर कब आओगे। और पांचवी फिल्म रोजा, इस फिल्म का गीत ये हंसी वादियाँ। श्रोताओं, हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। मोबाइल नंबर एक बार फिर 9425149342। आपके संदेश हमें आज शाम 4 तक मिल जाने चाहिए और आपके मैसेज आपके गीत कार्यक्रम आज रात्रि 9:30 से रात्रि 10 तक प्रसारित किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। सारंगा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए खुशबू फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, शब्दकार गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन और इस गीत में पसंद आप सभी श्रोताओं की। सिंहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर से भावना नेमा, प्राची नेमा, संगीता और राजेश। बरगीनगर जबलपुर से सुभाष गदरे, रविंद्र गदरे, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग, सृष्टि, विवेक, वंदना और लवकुश।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। तो आप सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गीत।

प्रोफेसर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और इस गीत के लिए हमें पत्र भेजे आप सभी श्रोताओं ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी और ओम प्रकाश राय। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आयशा खान, हदिया खान, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, असमा, सालिया, शोएब खान, साइमा, मुस्तवा, अफिया, रऊफ भाई, शहीद भाई। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, इमरान राजा, आलम शेख, रिजवान राही, शबाना नास, शबाना आलम, चांदनी नास। सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श बाबू। सारंगा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया दोस्ती फिल्म का ये गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने। जरुड़ वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। कृष्णानगर टीवी टावर, सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमा, दीक्षा और राहुल डोंगर दिवे। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर दोस्ती फिल्म का ये गीत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। लीजिए सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर में गुलजार की शब्द रचना। संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी और फिल्म का नाम पूर्णिमा। और इस गीत में पसंद आप सभी की चांदनी चौक गंडई पंडरिया से नानू सेन, रविंद्र सेन, लक्की विक्की, पवन कुमार और प्रभा देवी सेन, खुशी और रौनक सेन, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, कड़िया मोजे उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना कुमारी, पूजा आरती और सुनीता देवी। लीजिए आप सभी की फरमाइश पर पूर्णिमा फिल्म का ये नगमा।

सारंगा कार्यक्रम के इस गीत में पत्र आप सभी ने भेजे हैं। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा, कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, आप सभी सुनना चाहते हैं बहू बेगम फिल्म का ये गीत जिसमें स्वर लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों का है। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

0: इस गीत के साथ ही आज का सारंगा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अब हम रिले करेंगे। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस।
1: स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन में जान गंवाने वाले सभी लोगों और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। वे कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लोगों की शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में 2 दिवसीय संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। कल भोपाल, ओंकारेश्वर, उज्जैन, मंडला, बैतूल, मैहर, बालाघाट समेत कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गयी। भोपाल में बड़ा तालाब पर 350 से ज्यादा तिरंगा सजी नावों में नौका तिरंगा यात्रा हुई, जबकि ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 151 नावों से यात्रा निकाली गई और 24 अगस्त को सीवन नदी घाट से कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर भोपाल संभाग आयुक्त कर्णवीर शर्मा और IG रुचिवर्धन मिश्रा ने सीहोर में निरीक्षण किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो डायल कीजिए नंबर 2660902 और एसटीड कोड आप जानते ही हैं 0755। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते
1: जी बहन। प्रणाम नमस्कार
0: जी। कौन साहब बोल रहे हैं आप?
1: जी बहना जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: तो राजू जी कॉल कब किया, एक हफ्ते के बाद या एक हफ्ते के पहले?
1: जी ये तो एक हफ्ते से ज्यादा हो गया बहना जी।
0: चलो फिर ठीक है, क्योंकि अगर आप है ना एक हफ्ते के अंदर दोबारा कॉल करते ना तो हम शायद कॉल नहीं ले पाते।
1: नहीं, नहीं, नहीं, बहना जी हम नियम का पालन करते।
0: चलिए धन्यवाद। और राजू जी सुनाइए क्या हाल है आपके?
1: हाल चाल तो बहना जी बढ़िया है, मस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है, बिंदास है, बगीचे में बैठे हुए अपनी कृषि का हाल देख रहे।
0: और हमीरपुर में बारिश कैसी हो रही है?
1: बारिश समय समय पर होती रही लेकिन इस समय तो धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।
0: अच्छा
1: जी।
0: अलग अलग मौसम है, यहाँ तो भयंकर बारिश बनी हुई है।
1: दो दिन पहले हो चुकी है, मौसम खुला हुआ है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बीच बीच में धूप का आना भी जरूरी है।
1: जी, क्योंकि फसल के लिए धूप बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो राजू जी गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: बहना जी हमें बॉर्डर 3 का गीत सुनेंगे, याद आती है तेरी याद आती है।
0: बॉर्डर 3, एक मिनट हम चेक कर लें कि ये वाली मूवी हमारे पास है कि नहीं है। बॉर्डर 3 तो नहीं दिख रही हमारे यहाँ।
1: तो हिंदुस्तान की कसम जलवा तेरा जलवा।
0: देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो सकता है मिल भी जाए।
1: हिंदुस्तान की कसम जलवा तेरा जलवा।
0: ठीक है ये भी होगा तो हम देखते हैं। हिंदुस्तान की कसम
1: जी। जलवा तेरा जलवा।
0: हाँ हिंदुस्तान की कसम का मिल गया
1: जी।
0: जलवा तेरा जलवा
1: जी जी।
0: ठीक है ये आपको सुनवाएंगे और कल के प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे।
1: नाम नहीं ना शामिल कर सकती।
0: बिल्कुल कर सकते हैं, आप बोलिए किस किस का नाम लेना।
1: हमारे मित्र श्री अनूप कुमार राजपूत जी उपरहका से हैं, बलवान सिंह यादव जी महेश राजपूत जी हैं। हाँ। और बंडवा से हैं कुशवाहा जी, जो कार्यक्रम बहन दिल से सुनते हैं ये 10-11 बजे से
0: जी, जी।
1: यानी सुबह से ही सुनते हैं रात्रि तक।
0: चलिए ठीक है, तो फिर है ना राजू जी कल आप अपना प्रोग्राम सुनिएगा। ठीक है कॉल करने के लिए धन्यवाद
1: जी बहन। जय हिंद जय भारत।
0: जय हिंद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। हाँ
0: स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम। फोन करें गीत सुने में।
1: फोन करें गीत सुनने में जी।
0: डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा?
1: जी जी कब आए?
0: हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है।
1: आपकी आवाज़ तो मुझे क्लियर मिल रही है।
0: जी, चलिए बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। देवीदास जी। जी देवीदास जी, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि कॉल आपका 1 हफ्ते के बाद ही लग रहा है ना?
1: हफ्ते के बाद ज्यादा टाइम हो गया।
0: चलिए फिर ठीक है। और सुनाइए देवीदास जी, देवीदास जी कैसा मौसम है आपके यहाँ?
1: अभी 2 3 दिन से जो पानी आ रहा है था, अभी थोड़ा धीमे धीमे चल रहा है जी।
0: अच्छा, और क्या काम करते हैं आप?
1: जो मेरे मेरी वो दुकान है छोटा,
0: अच्छा,
1: एक दुकान है और उसमें बेचने से थोड़ा ढोला जो होता है, भजन जाता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, गीत बताइए अपनी पसंद का, कौन सा गीत सुनेंगे आप? जी, तिरंगा फिल्म का कौन सा गीत? अच्छा, टाइटल सॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा पाएँ।
1: मिल जाएगा।
0: हाँ, मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे हम दूसरी चॉइस। तिरंगा फिल्म का सिर्फ एक ही गीत यहाँ पर शो हो रहा है, इसे समझो ना रेशम का

Qatar. हाँ दूसरा बता दीजिए, क्योंकि इसमें एक ही गीत आ रहा है। जी आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही है। क्रांति का, ओके क्रांति का तो फिर हम सुनाई देंगे आपको। ठीक है चलिए, हाँ जी धन्यवाद कॉल करने के लिए, और कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत भी सुन सकेंगे और हमारे बीच हुई बातचीत। ठीक है देवीदास जी, जी नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: जी, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते जी।
1: हाँ, फरमाइश है कि बात आपके गीत हमारे खैर।
0: आज आपकी फरमाइश है, आप अपनी पसंद का
1: अच्छा
0: गीत सुन सकते हैं। पहले अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं बहन जी।
0: महोबा से? ठीक
1: जी
0: है,
1: बहन जी,
0: आपका कॉल एक हफ्ते बाद ही लग रहा है ना।
1: 1 हफ्ते क्या, वैसे कई फ्री 3 हफ्ते हो गए।
0: अरे चलिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। और सुनाइए सुरेश जी, क्या हाल है?
1: तो ठीक है, इस बात का ध्यान भी हम रखते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: 1 हफ्ते क्या, बल्कि 10 दिन बाद, और भी ज्यादा दिन बाद लगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि और भी नए श्रोता जुड़े तो और अच्छा कार्यक्रम
0: वही
1: लगता
0: ये बात है, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि बहुत सारे श्रोता हमसे कनेक्ट हो सकें, जुड़ सकें, है ना।
1: और कुछ श्रोता ऐसे हैं, वो उनका नाम नहीं लूंगा, कि
0: हाँ जी।
1: वो हफ्ते क्या, वो तो कुछ लोग पैडे ही लगाते हैं, उनका मगर लगता नहीं है, सुनता
0: हाँ।
1: रहता हूँ मैं कार्यक्रम, कि 2-3 दिन में कॉल आते ही रहते हैं,
0: तो अगर
1: तो इस
0: कोई
1: पे
0: श्रोता है ना,
1: कार्यक्रम
0: एक
1: के
0: हफ्ते के
1: लोग।
0: पहले कॉल लगाता भी है
1: जी,
0: तो हम लोग कॉल नहीं ले पाते।
1: तो बहुत अच्छा किया आपने।
0: ठीक है, चलिए बताइए अपनी पसंद, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप।
1: आज आप सुनवा दीजिए रक्षाबंधन का, नहीं, के उपलक्ष्य में सुनवा दीजिए कोई भी गीत।
0: कोई सा भी,
1: हाँ, कोई सा भी।
0: चलिए ठीक है, हम फिर आपको ये गीत सुनवाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम आप जानते ही हैं कि कल
1: हाँ, वो
0: आएगा,
1: तो कल आएगा।
0: है ना। चलिए
1: हाँ,
0: ठीक है, सुरेश कुमार सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के
1: ओके
0: लिए।
1: जी, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते।
2: नफरत

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते। हेलो फरमाइश।
0: जी हाँ हेलो फरमाइश।
1: अच्छा, जी मैं खेरो कला से, ग्राम खेरो कला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश से रमेश नायक बोल रहा हूँ।
0: रमेश नायक जी,
1: जी हाँ, आप कौन बोल रही मैडम?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: अच्छा, आपसे तो हो गई एक दो बार बात भी हो चुकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, अपन बात कर चुके हैं इससे पहले भी। कैसे
1: हाँ।
0: हैं आप?
1: ठीक है जी। हाँ,
0: बारिश हो रही है महोबा में?
1: बारिश तो हो रही है यहाँ पे, काफी हो गई जो है। फसल के हिसाब से सही है, वैसे ज्यादा तो नहीं बरसा,
0: हाँ,
1: लेकिन फसल के हिसाब से सही है। जैसे और है, तिली है, और जो है मूंग वगैरह है,
0: जी,
1: मूंगफली।
0: हाँ बिल्कुल
1: हाँ
0: सही कह रहे हैं। और सुनिए
1: जी,
0: रमेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कल आप?
1: आज मैं सुनना चाहता हूँ मोहम्मद रफी की आवाज में है, दो खिलाड़ी फिल्म का है, कि झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। दो
0: अच्छा, कौन सी फिल्म का है ये?
1: खिलाड़ी जी,
0: दो खिलाड़ी। चलिए ये गीत हम देखते हैं कि है कि नहीं।
1: मिल जाए तो बताना,
0: हाँ, और नहीं
1: और ना मिले
0: होगा।
1: तो फिर मैं दूसरा बताऊंगा। एक तो मिल जाएगा मुझे लगता है।
0: हाँ मिल गया। दूर

0: सुनता सावन
1: सुनिए, आप भी सब लोग सुनेंगे, श्रोता लोग
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है,
0: सही बात है। हमारे श्रोताओं के जरिए हमें भी नए नए टाइप के गीत सुनने को मिल जाते हैं।
1: नहीं नहीं कप्तान जी, क्या है आपसे बताएं, आप अभी आप तो जब खुद स्टेशन पे हो, अनाउंसर हो, तो आपको अनुभव हर चीज का है। तो मोहम्मद रफी लता की आवाज है,
0: इनका तोड़ नहीं है,
1: कोई तोड़ नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बहुत अनुभव किया फिल्मों का।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम भी सहमत हैं।
1: हुआ करती देखो बात के लिए, सब अपनी जगह सबसे गायक है,
0: ये बात सही है, लेकिन ये आवाजें एवरग्रीन है।
1: जो मोहम्मद रफी चाहे सिंगल गीत गाए चाहे युगल गीत गाए,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ ठीक है जी मैडम,
0: ठीक है रमेश जी, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम। फोन करें गीत सुने में।
1: धन्यवाद मैडम जी। नमस्कार, मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: अशोक सिंह जी
0: हाँ अशोक सिंह जी, अपनी पहले भी बात हो चुकी है।
1: जी जी
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम
1: आकाश
0: भी
1: भाई,
0: बढ़िया
1: परिवार
0: हैं,
1: गोपाल,
0: बहुत
1: और
0: अच्छे
1: सब
0: हैं।
1: मौसम सुहावना है।
0: वाकई
1: संस्कृत
0: अभी फुहार बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यूअसली 4-5 दिन से चल रहा है पानी।
1: चल रहा है, अभी तो बंद है, बंद हो जाता है बार बार बीच बीच में। चल
0: लेकिन फिर भी
1: रहा है। आप
0: धूप नहीं निकली है अभी।
1: भोपाल में तो काफी बरसात हुई है, इधर नहीं, जबलपुर में इतनी नहीं
0: अच्छा, भोपाल में तो बहुत बारिश हो रही है अभी,
1: हुई है।
0: तो
1: जी, लगभग
0: फुहारे हैं लेकिन
1: स्वतंत्रता
0: फिर बीच बीच में तेज भी हो जाता है।
1: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैडम जी।
0: हाँ जी,
1: गाना
0: आपको
1: सुनवा
0: भी बहुत
1: दीजिए
0: बहुत शुभकामनाएं।
1: जी, गाना सुनवा दीजिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उपकार मूवी जी
0: अरे वाह, क्या बात है। ये गाना तो एवरग्रीन
1: जी
0: है ना? कुछ भी हो, 15 अगस्त तो 26 जनवरी पे ये गीत ना बजे तो बड़ा सूना सूना लगता है।
1: जी यह भारत का रहने वाला हूँ,
0: बिल्कुल
1: गर्व की
0: बिल्कुल।
1: बात
0: तो कल के प्रोग्राम में सुनिएगा अपनी पसंद का गीत, ठीक है अशोक
1: जी।
0: जी?
1: जी,
0: चलिए,
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद,
0: कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: कौन बोल रहे हैं
1: मैं जिला सिंह मध्य प्रदेश से राहुल ध्रुवे बात कर रहा था।
0: जी? राहुल ध्रुवे जी, कैसे हैं
1: अच्छा है मैम, अभी तो
0: और परिवार में सब कैसे हैं?
1: सब बढ़िया है मैम। आपके
0: हम
1: आकाशवाणी में
0: बढ़िया,
1: सभी
0: आकाशवाणी परिवार भी बढ़िया है और आपसे बातचीत कर रहे हैं तो और भी बहुत बढ़िया लग रहा है।
1: बारिश हो रही है इस समय भोपाल में? नहीं,
0: हाँ बारिश बहुत हो रही है अभी 3-4 दिन से, तो
1: नहीं
0: धूप
1: नहीं
0: नहीं।
1: यहाँ तो पानी तो नहीं आ रहा है, सीवी में काफी परेशानी है, 15 दिन हो गए।
0: अच्छा
1: हाँ बिल्कुल, पानी आ ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि बादल तो है अभी गिर जाएगा लेकिन गिरता नहीं।
0: अच्छा अच्छा यहाँ तो अच्छी खासी बारिश हो रही है और कई जगह तो वाटर ब्लॉगिंग भी हुई कि है ना, पानी भर गया, ये सब हुआ, लेकिन ठीक
1: नहीं नहीं
0: है।
1: यहाँ बिल्कुल बादल बस आया है लेकिन पानी गिर नहीं रहा है।
0: हाँ आज तो फुहारे हैं लेकिन कल थोड़े, पर ये भी हो रहा है कि कुछ एरिया में पानी गिर रहा है और कुछ एरिया में नहीं गिर रहा है, ये भी हुआ है।
1: हाँ
0: खैर मूसलाधार
1: हाँ
0: बारिश थी एक जगह लेकिन दूसरी जगह नहीं थी।
1: हाँ ऐसा ही चल रहा है।
0: ऐसा भी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो राहुल जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे कल के प्रोग्राम में?
1: दिल की बाजी
0: दिल की बाजी।
1: मूवी का नाम,
0: अच्छा और गीत के बोल?
1: आगरे से आई हो या बरेली से, पूछ लेंगे आपकी सहेली से।
0: ओहो बड़ा स्पेशल सा गाना है ये तो।
1: हाँ, मिल जाएगा मैम।
0: मैं देख के बता रही हूँ, नहीं मिलेगा तो फिर आपको दूसरा गाना बताना पड़ेगा।
1: एक और बता देता हूँ आपको, ज्ञान की बाजी, ये तो अभी बताया मैंने,
0: जान की बाजी कि दिल की बाजी बताया था आपने?
1: दिल की बाजी।
0: और अब जान की बाजी,
1: हाँ
0: मतलब
1: ज्ञान
0: कुछ
1: की
0: भी
1: बाजी,
0: करो
1: हर साथ
0: बाजी
1: मिले
0: तो
1: तो
0: है
1: हर
0: ही।
1: साथ होने दे, अगर ना मिल पाया मैम तो
0: नहीं तो जान की बाजी है, बाजी चाहिए आपको आज।
1: कैसा।
0: बाजी तो होने ही होना है, चाहे दिल की बाजी हो चाहे जान की बाजी हो।
1: हाँ मैं दोनों बता दिया हूँ, दोनों में से आप देख लेना।
0: हाँ देख रही हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों ही नहीं है हमारे पास।
1: दोनों उपलब्ध नहीं है। हेलो,
0: एक सेकंड और देखते हैं, हम
1: ओके
0: कंटिन्यूस
1: अच्छा।
0: सर्च कर रहे हैं लेकिन नहीं दिख रहा है अभी, हो सकता है निकल आए, थोड़ा सा वेट करिए, नहीं तो फिर हम आपसे कहेंगे कि कुछ और बताइए,
1: ओके ओके
0: है ना? बाजी निकल आया है लेकिन दिल की और जान की, ये बस नहीं, प्यार की बाजी निकल आया, ना जान की निकला ना दिल की निकला। अब तो कोई दूसरा
1: जान
0: गीत
1: की बाजी
0: बताइए। हाँ
1: दूसरा,
0: जी
1: इसमें साजन का घर कर दीजिए।
0: ये मिल जाएगी आपको।
1: हाँ साजन का घर, और इसमें गाने के बोल रहेंगे,
0: हाँ
1: मैं करता हूँ तुझसे प्यार, पास मुझे आने दो। दोस्तों
0: अच्छा ठीक है बिल्कुल।
1: के नाम ले लो जल्दी से।
0: हाँ हाँ ले लीजिए।
1: मध्य प्रदेश सागर से रहेंगे विपिन कटारे,
0: अच्छा
1: और
0: हाँ
1: शिमला से रहेंगे राकेश जी। ठीक है
0: बहुत
1: सर, इसी
0: बढ़िया
1: पर
0: बहुत
1: सर।
0: बढ़िया। ये तो कटारे जी भी तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद करता हूँ मैं इनको, मैं यहाँ से। ठीक
0: बिल्कुल, तो साजन के घर फिल्म का गीत आप कल सुन पाएंगे। ठीक है
1: ओके ओके,
0: ठीक है। राहुल जी
1: धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। रानू जी
1: कविता
0: बोल
1: मैम
0: रही हैं देवास से।
1: जी, बिल्कुल। और आप कविता मैम बात कर रही हैं?
0: जी हाँ।
1: हम तो, और आपके क्या हाल चाल है मैम?
0: हमारे हाल बढ़िया हैं, आप सुनाइए, आपके क्या हाल हैं?
1: हम भी ठीक है। और क्या, और आपसे बात हो गई तो एकदम मतलब मन प्रसन्न हो गया है।
0: बिल्कुल, हमारा भी। और देवास में बारिश के क्या हाल है ये तो बताओ।
1: हाँ, देवास में मतलब अब बिल्कुल हो रही है बारिश।
0: कंटिन्यू चल रही है 4-5 दिन से।
1: हाँ बिल्कुल, मतलब गुना से तो कम है लेकिन फिर
0: हाँ।
1: भी मतलब है, मतलब अच्छी है बारिश।
0: भोपाल जैसी होगी।
1: और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन की बुजुर्गों की बहुत सारी एडवांस में शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। और भुंजरियों के पहले तो अपनी एक बार और बातचीत होगी, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ।
1: नहीं, उम्मीद तो करते हैं लेकिन मैं
0: हाँ,
1: ना
0: कई बार
1: सुना
0: कॉल नहीं
1: चली
0: लग
1: जाऊंगी तो
0: पाता है।
1: शायद ही टाइम मिले,
0: अच्छा
1: इसलिए बोल
0: अच्छा
1: रही
0: अच्छा
1: हूँ।
0: अच्छा चलो बढ़िया, हमने
1: हाँ
0: आपकी सारी बधाइयाँ एक्सेप्ट कर ली और आपको भी दे दी।
1: जी, थैंक यू।
0: बिल्कुल
1: वैसे मुझे टाइम मिलेगा तो एक बार और विश कर दूंगी, क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: देखो अरविंद सोनी जी के बाद मैं ना अगर सबसे ज्यादा किसी को मानती हूँ तो आपको।
0: थैंक यू वेरी मच इतना प्यार
1: जी,
0: देने के लिए।
1: और ना मुझे गाना सुनना है आज, आपकी पसंद का सुना दीजिए मुझे गाना तो।
0: मेरी पसंद का, चलो
1: हाँ,
0: ठीक है, हम अपनी पसंद
1: हमारी
0: का
1: पसंद तो
0: सुनाएंगे।
1: हम सुनते रहते हैं
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: आपकी सॉन्ग ऑफ चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप
0: अरे
1: कभी कभी
0: वाह,
1: प्ले करती है ना सॉन्ग
0: हाँ
1: तो मैं
0: हाँ
1: सुनती हूँ आपका प्रोग्राम।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर
1: और
0: मेरी पसंद का गीत सुनना,
1: ये
0: वो
1: मैंने
0: डेडिकेट
1: सुना
0: रहेगा
1: है
0: आपको।
1: जी, और आपको भी रहेगा और नंदनी को रहेगा।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, अभी तुम्हारा नाम लिया रानू जी ने और तुम हाजिर हो गई।
1: हाँ, मैंने बहुत दिन से कॉल भी नहीं किया ना।
0: हाँ नंदिनी, और सुनाओ कैसी हो।
1: हम अच्छे हैं, और आप कैसी हैं मैम? बरसात
0: हम अच्छे हैं। और ये बताओ कि सागर में मौसम कैसा है।
1: हो रही है यहाँ पे, तो अभी भी बादल ही हैं और अभी लगता है आने वाली है, और मतलब रात में भी हुई थी, शाम को भी हो ही रही है, अभी तो बारिश ही है।
0: और
1: और
0: क्या
1: आपके यहाँ?
0: करती हो इस मौसम में, तुम क्या करती हो।
1: मैं तो मुझे मतलब कुछ नहीं करती, मुझे ना अभी मन कर रहा था चीला खाने का, तो मैं तो बनाने जाती थी।
0: अकेले अकेले।
1: आप भी आ जाओ।
0: बिल्कुल, चलो ठीक है। और सुनाओ, कल कौन सा गीत सुनोगी तुम कल के प्रोग्राम में।
1: सॉन्ग आप अपनी पसंद का चला दे, कोई सा
0: अरे
1: भी।
0: भाई, रानू जी ने भी मुझे अपनी पसंद दी है और तुमने भी मुझे अपनी पसंद दे दी।
1: अब क्या है कि हम तो सॉन्ग सुनते रहते हैं,
0: हाँ
1: बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप ही सुना देना।
0: चलो ठीक है ठीक है, मैं अपनी पसंद का गीत सुनाऊंगी। ठीक है,
1: और
0: कॉल।
1: डेडिकेट आपको करना चाहूंगी, जो भी आप
0: ओहो
1: चलाएंगी, और मेरी सिस्टर रानू दीदी को। जी
0: चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: ठीक।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।
1: शिवानी मेहरा बात कर रही, नीमच से। जी
0: शिवानी मेहरा जी, अपनी पहले भी बात हो चुकी है ना?
1: जी मैम, मेरी बात हो चुकी है। आज मैं 4 महीने पहले मैंने कॉल लगाया था, दोस्तों ट्राई कर रहे हो, अब लगा है मेरा।
0: चलो अच्छा है, लेकिन आज कॉल लगा तो।
1: जी
0: और
1: मैम,
0: कैसी है शिवानी जी?
1: अच्छी मैम, आप कैसे हो
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और कौन से गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम? वो गाना में जान दुश्मन और गाने के बोले चलो रे डोली उठाओ कहाँ।
0: अरे वाह, क्या प्यारा गाना चूज किया है आपने तो। अच्छा,
1: जी मैम, हमारी शादी है इसलिए
0: शादी कब है?
1: देव उठनी पे। जी
0: अच्छा, देव उठनी पे। चलो
1: मैम,
0: बढ़िया, सारी तैयारी वैयारी हो गई।
1: जी मैम चल रही है।
0: पर ये गीत सुन के रोने मत लगना।
1: जी मैम, नहीं होएंगे। हमारी सिस्टर को, हमने सिस्टर से पूछा, मैंने कि मैं फोन ट्राई कर रही थी, तो
0: हाँ।
1: मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरे के कौन सा गाना सुन जल्दी बता, तो उसने मुझे बताया कि आला सुन लो। मैंने ठीक है सर।
0: चलो ठीक है, थोड़ा इमोशनल सॉन्ग है,
1: जी
0: बहुत
1: मैम,
0: मतलब हार्ट टचिंग है ना?
1: जी मैम,
0: चलो ठीक है, तो शिवानी जी अभी से आपकी शादी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: थैंक यू मैम।
0: ठीक है? और वैसे हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो अपनी बात होगी, अभी देव उठनी
1: हाँ
0: 11 पे
1: मैम,
0: बहुत
1: हो गया है
0: टाइम
1: कल,
0: है।
1: आपको ट्राई तो करती हूँ, पर क्या
0: हाँ
1: लग नहीं पाता है। काफी टाइम से ट्राई कर रही, अभी भी बहुत देर से ट्राई कर रही थी, अब लगा है मेरा फोन।
0: चलो कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी एक बार और अपनी बात होगी
1: जी मैम,
0: और फिर बाद में भी होती रहेगी, ठीक है?
1: होती रहेगी ना बात तो।
0: चलो शिवानी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
1: आप अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम कविता रावत है।
1: कविता रावत,
0: अब आप अपना नाम बताइए।
1: विजय पांडे,
0: कहाँ से?
1: बलरामपुर से। कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में।
0: अरे
1: इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, तब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। काबिले आदम मोहतरमा कविता रावत साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब, नमस्कार।
0: जी नमस्ते। बहुत खूबसूरत शायरी आपकी, और ऐसा लग रहा है कि सन 1947 के पहले की ऊपर आपने ये बोला है।
1: जी, ये चंद लाइनें हैं अमर शहीद अशफाक उल्ला खां के,
0: जी जी जी
1: जिन्होंने अपने वतन के लिए सर्वस्व

0: छावर कर दिए।
1: आक्रमण फिल्म का गीत हमारे पास है या नहीं ये हम थोड़ा सा, हाँ है
0: कुछ,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कोई भी आप सुना दीजिए।
1: बिल्कुल ये गीत मिल गया है और यही गीत सुनेंगे आप। चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन में जान गंवाने वाले सभी लोगों और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित प्रदर्शनी आज शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। वे कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लोगों की शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। और भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में 17 अगस्त को परमाणु ऊर्जा और उसके उपयोग पर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे के खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रोजा से, आवाज़ है हरिहरन की।

ए आर रहमान का संगीत, पी के मिश्रा का लिखे बोल, हरी आनंद की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रोज़ा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आनंद राज आनंद की आवाज़ में, फिल्म परदेसी बाबू से।

आनंद राज आनंद का संगीत उन्हीं के लिखे बोल और उन्हीं की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म परदेसी बाबू से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अनु मलिक की आवाज़ में फिल्म जुड़वा से।

लंकन गोरी नाना, लंकन की छोरी नाना, पारस की पोरी नाना, इंडिया, आहा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट।

से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: तारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: तारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट.
2: कम ऑन लेट मी हियर यू से
1: आई एम बी एन ए.
2: कम ऑन एवरीबॉडी.

अनु मलिक का संगीत, उन्हीं की आवाज़, उन्हीं के लिखे बोल साथ थे नितिन रायकवार। फिल्म जुड़वा से आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म परदेश से। आवाज़ है हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण और शंकर महादेवन की।

नदीम श्रवण का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति आदित्य नारायण और शंकर महादेवन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म परदेश से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की चौथी कड़ी।

दत्तक पुत्र के उत्तराधिकार को स्वीकृति ना देना कंपनी के उन तौर तरीकों में से एक था जिनके द्वारा अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जुट गए थे। एक समझी बूझी कुटिल योजना उनके पास थी और वो परिस्थितियों के अनुसार उसे क्रियान्वित कर रहे थे। सतारा के राजा अप्पा साहेब जब निसंतान मरे तो उनके राज्य को हड़प लिया गया। इसी तरह 8 देसी राज्यों को साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। पेशवाई और अवध की नवाबी भी इस मनमानी की चपेट में आ गई।

18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में फिरंगी शासन तंत्र ने देश के आर्थिक ढांचे में बुनियादी छेड़छाड़ की शुरुआत की। अंग्रेजों ने जमींदारी और रैयतवारी प्रथाएं शुरू की, जिससे किसानों का स्वामित्व छिन गया। अब जमींदार भूस्वामी था और ये वर्ग अंग्रेजों का समर्थक बन गया। रैयतवारी में किसानों पर लगान लगाया गया, ये बहुत ज्यादा था और इसे चुकाने में

जिन सामंतों को फिरंगी समझौतों के द्वारा अपना सहायक बनाते थे, उन्हें अपने यहां अंग्रेजी फौज रखनी पड़ती थी। बाहरी आक्रमण से रक्षा और चोरी डकैती बलवा जैसी वारदातों से शांति बनाए रखने के लिए रखी गई इस सेना का खर्च देशी सामंत को उठाना होता था। यह खर्च भारी होता था और जब धीरे धीरे सामंत इसे चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो इस कर्ज की एवज में उसकी अलमदारी जब्त करके ब्रिटिश राज में मिला ली जाती थी।

एक दुष्चक्र, षड्यंत्रों का एक लगातार घूमता हुआ घातक और विनाशक पहिया, जो भारत के स्वाभिमान और भारत की स्वतंत्रता को रौंदता कुचलता हुआ लगातार घूम रहा था। भारत की आजादी गुम होती जा रही थी और भारत में अंग्रेजी राज स्थापित हो रहा था। सामूहिक प्रतिरोध दूर दूर तक नहीं थे। जनता विभाजित बटी हुई थी।

किसानों के पास नहीं रही अपनी जमीन, मालिक बन बैठा जमींदार। बल्कि जमींदार भी कहां था मालिक, असल मालिक थी कंपनी की सरकार।

0: रोटी रोटी से वंचित खेतिहर देश के बहुमत निवासियों के सामने रोजगार का एक रास्ता खुला था, कंपनी की फौज में भर्ती का। वे सिपाही बनने लगे। अपने इलाकों से विस्थापित होकर वे कंपनी के वेतनभोगी सिपाही बने और कंपनी की लड़ाइयों में अपने ही देशवासियों के सीने पर उनकी गोलियां बरसने लगीं।
1: कंपनी ने देश के उद्योग धंधों को भी अपना निशाना बनाया। लोगों के हाथों का हुनर नहीं रहा, क्योंकि बाजार में मशीन से बने माल का सैलाब आ गया था। ढाका के मलमल की जगह मिल के तैयार लट्ठे ने ले ली थी। घरेलू उद्योग धंधे बंद होने लगे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, फिरंगी मिल्कियत वाली मिलें उग रही थीं।
2: हाथों का काम छिन रहा था, किसान के कांधे का हल और मजूर की छेनी हथौड़ी।

पड़ी, उससे छीन ली गई थी। वो बेकार थे, बेरोजगार थे, उनके पेट में जलती हुई भूख थी और आंखों में डूबता हुआ विश्वास। ये था 19वीं सदी का हिंदुस्तान, अभूतपूर्व हिंदुस्तान, जिसे फिरंगियों ने सात समंदर पार से आकर गढ़ा था।

0: एक कसमसाहट कांप रही थी महादेश की धमनियों में। अन्याय के प्रतिकार के लिए, अत्याचारी के संहार के लिए कण कण में आक्रोश का सैलाब रूप और आकार लेता हुआ चिंगारी बन रहा था, जो कालांतर में प्रलयंकारी दावानल की सर्वग्रासी व्यापकता होने जा रहा था। मातृभूमि की माटी ललकार रही थी, कुंठित पौरुष को विद्रोह के लिए पुकार रही थी।
1: अभी अभिव्यक्त होने का अनुकूल अवसर नहीं था, अंगड़ाई का वक्त नहीं आया था, अभी तो सिर्फ तैयारी थी और जनता इसमें जुट गई थी। आम जन जिनके पास नहीं था राजपाट और न जिनके थे अपने स्वार्थ, जिनके पास अपना खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए था स्वाभिमान और स्वदेश। महादेश की माटी में यह संकल्पित सपना सुगबुगा रहा था। एक ऐसी बयार थी जो चल पड़ी थी, तिनका तिनका, गाछ पखेरू और पत्ता पत्ता जिसके स्पर्शों से आश्वस्त हो रहा था, रोमांचित हो रहा था। बच्चा बच्चा निर्णायक मुठभेड़ के लिए तैयार हो रहा था।

0: स्वाधीनता के संग्राम का संदेश, बलिदानों का वाहन, सर्वस्व न्योछावर कर देने का संकल्प, अपनी नियति को बदलने और नया इतिहास रचने का संकल्प, ये सब समाहित था सर्वत्र सुलभ और जाने पहचाने प्रतीक रोटी और कमल में। रोटी जीवन की मूलभूत आवश्यकता और कमल उसे सुंदर से सुंदरतम बनाने की आकांक्षा। जन जन का विश्वास इन प्रतीकों से आत्मसात होकर जुड़ गया।
1: आजादी के इन प्रतीकों की यात्रा और इनके माध्यम से स्वाधीनता का ये स्वतः स्फूर्त संकल्प चल पड़ा।
2: एक दूसरे तक अनुप्राणित करने, एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक,
1: गांव, चौपालें, हाट बाजार, झोपड़े और घर, सिपाहियों की बैरकें और मजदूरों के कारखाने, बिजली की तेजी और तन्मयता के साथ पहुंच रही थी संघर्ष की ये पुकार।

0: संदेशा लेकर चले जा रहे थे सतत और निरंतर आजादी के हर कार्य। सब कुछ गोपनीय था। यायावर मुसाफिर पथिक सन्यासी साधु और फकीर शत्रु से अपनी पहचान छुपाए, सर्वग्रासी दावानल की आग दबाए।
1: उनके लक्ष्य पर विशेष रूप से फिरंगी फौज की छावनियां थीं। सशस्त्र संघर्ष में प्रशिक्षित सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली थी। हिंदुस्तानी सिपाही दासता के वातावरण से पहले ही उबे हुए और अपमानित थे।
2: इस हलचल से बेखबर और अनजान नहीं थी झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेलियों के नेतृत्व में जो स्त्री सेना तैयार की थी उसका रियाज और मशक्कत जारी था। अंग्रेज इसे उपहास की नजर से देखते थे, नहीं जानते थे कि एक तूफान शक्ल ले रहा है, एक लहर है जो उठ रही है। रानी के पास नाना के संदेशवाहक आते जाते रहते थे, विशेष रूप से तात्या टोपे। सामरिक तैयारी के रूप में गोला बारूद ढाला जा रहा था, तोपों की मरम्मत करके उन्हें ठीक ठाक किया जा रहा था, पूरी तैयारियां चल रही थी।
1: और राजा गंगाधर राव की रंगशाला की नर्तकियां नाचती गाती अंग्रेज छावनियों में घूम रही थीं, खुफिया समाचार और सूचनाएं इकट्ठा करती हुईं और आजादी के महासंग्राम का संदेशा पहुंचाती हुईं।

0: राजा गंगाधर राव अस्वस्थ रहते थे। उनकी चिंता थी झांसी को गद्दी का उत्तराधिकारी मिलेगा कब। रानी इन दिनों गर्भवती थी और राजा की आस वहां अटकी हुई थी। झांसी की जनता को भी अपने राजकुमार की प्रतीक्षा थी।
1: किंतु राजा गंगाधर राव और झांसी की जनता दोनों ही इस कड़वे सच को भी जानते थे कि अंग्रेजों की लोलुप गिद्ध

0: गाह से झांसी को बचाकर रख पाना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों का काला साया अपने मनहूस पांव पसारता हुआ बड़ा चला आ रहा था। देश के दूसरे भागों से इसकी सूचनाएं मिल रही थीं। झांसी में राजमहल से द्रोह रखने वाले तत्वों को अंग्रेज प्रश्रय और संरक्षण दे रहे थे। झांसी में फिरंगी सेना अफसर की ताक में थी।
1: खबरें आ रही थी और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। अतः राजा गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध संबंधी तैयारियों को उचित मानते थे और उनका मौन समर्थन करते थे। प्रगटतः वो अंग्रेजों के मित्र थे, लेकिन वो अच्छी तरह समझते थे कि उनके इन मित्रों का विश्वासघात देश के तमाम रजवाड़े भुगत चुके हैं।
0: अपनी माटी की पवित्रता और आजादी के स्वाभिमान की रक्षा तलवार की धार से करने के अभ्यस्त वीर बुंदेलों के सामने परीक्षा की एक और घड़ी रूबरू होने वाली थी। बुंदेलखंड इसके लिए तैयार हो रहा था।
1: विप्लव की आग में तपने के लिए प्रस्तुत थे बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ नरेश बख्त बली, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई और गढ़ मंडला के गौड़ राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह। आजादी के अनुष्ठान में अपनी आहुति देने के लिए जमुना से नर्मदा तक और टोंक से चंबल तक फैला हुआ बुंदेला अंचल तत्पर था। प्रतीक्षा थी केवल रणभेरी के बजे।

झांसी में घटनाएं घटित हो रही थीं। रानी ने झांसी के उत्तराधिकारी को यथासमय जन्म दिया, किंतु भाग्य की सहमति इस संभावना के साथ नहीं थी। कुछ महीनों के बाद राज्य का ये राजकुमार अल्प वय में ही काल कवलित हो गया, रोता छोड़ गया रानी को, झांसी को।

0: पहले से ही राजा गंगाधर राव अस्वस्थ चल रहे थे। एक और आघात लगा। राजा ने अपने परिवार के एक बालक आनंद राव को दत्तक रीति से अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया। उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय परंपरा के अनुसार आनंद राव के गद्दी पर बैठने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इस अधिकार की पुष्टि कंपनी सरकार से होनी थी। कंपनी पेशवा बाजीराव को निराश कर चुकी थी। उसने पेशवाई के लिए अधिकार मंजूर नहीं किया था और पेशवा की जागीर और पेंशन जब्त कर ली थी।
1: आनंद राव को दत्तक पुत्र के रूप में नया नाम दिया गया दामोदर राव और उसके उत्तराधिकार की पुष्टि के लिए राजा गंगाधर राव ने अर्जी कंपनी सरकार को भेज दी। इसे झांसी में मौजूद अंग्रेजों के आला अफसर एलिस ने बड़े लाट डलहौजी को पहुंचा दी। अर्जी पर लाट साहब के हुक्म का इंतजार कर रही थी झांसी।
0: झांसी के नवजात राजकुमार के असमय अवसान के बाद एक वज्रपात और हुआ। दुनिया की रंगशाला छोड़ राजा गंगाधर राव चल बसे। अवयस्क दामोदर और वैधव्य भोक्ती रानी

झांसी की राजगद्दी अब रीति थी। झांसी करुणा के समुद्र में डूब गई। एक अनिश्चय प्रस्तुत था, एक सवाल खड़ा था कि अब क्या होगा।

0: लॉर्ड डलहौजी ने 27 फरवरी सन 1854 को झांसी के कागजातों पर अपना हुक्म चढ़ाया। एलिस उस फरमान को लेकर झांसी के दरबार में आया।
1: झांसी के राज दरबार में कंपनी बहादुर एलिस साहब का स्वागत है। यहां पधारने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: वेल, सरदार साहब, हम सिपाही हैं और कर्तव्य पालन करने में हमें कष्टों की परवाह नहीं होती। फिर चाहे कर्तव्य कैसा ही दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो। बाय द वे, महारानी साहिबा आ गई क्या?
1: जी एलिस साहब, पर्दे के पीछे विराजमान है।
2: ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने राजा गंगाधर राव की दत्तक उत्तराधिकार की अर्जी नामंजूर की है। पेशवा का आश्रित झांसी का राज्य ब्रिटिश इलाके में मिलाया जाता है। हर खास आवाम को ताकीद की जाती है कि झांसी की सरकार अब से मेजर एलिस के अधीन होगा। इलाके का आवाम अब अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन की प्रजा माने और अंग्रेज कारिंदों को महसूल और करों की अदायगी करते हुए सुख और चैन के साथ रहे। लॉर्ड साहब ने कृपा करते हुए रानी साहिबा और उनके कुटुंब के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन मंजूर की है।
1: ओह, अनहोनी, ये तो अनहोनी है।
2: वेल रानी साहिबा, फकत इतना है फरमान, अब मैं इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।
3: मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की चौथी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को दिल्ली के लाल किले में होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने के लिए विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित प्रदर्शनी आज शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में 2 दिवसीय संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। आज समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में आज जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी तेज और हल्की बारिश होने की संभावना है। और भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 17 अगस्त को परमाणु ऊर्जा और उसके उपयोग पर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

उदास रहने की अनगिनत वजहों के बीच खुश रहने की वजह ढूंढना ही तो है जिंदगी। और हमें है आपकी हर एक पल की खुशियों का ख्याल। तभी तो हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो स्वीकार कीजिए हेमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। हाँ बहनों, बरसात का बादल तो मानो दीवाना सा ही होता है, कब बरस जाए और कब धूप निकल आए। और मौसम के पल पल के इस बदलाव में बहुत जरूरी हो जाता है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और इसीलिए बरसात के इस मौसम में खान पान, पोषण और संतुलित आहार का ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है, वरना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मौसम में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसीलिए हल्का, शीघ्र पचने वाला और पोषण युक्त संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। भोजन हमेशा हाथों को धोकर ही करें, भोजन हमेशा ढककर ही रखें और संभव हो तो पीने के लिए पानी उबालकर ठंडा कर ही इस्तेमाल करें। भोजन समय से कर लें, हमेशा ताजा, गर्म और घर पर बना ही भोजन लें। अधिक तला भुना और बाजार का खाने से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, मौसमी फलों को अपने आहार में शामिल करें। खिचड़ी, दलिया जैसे हल्के आहार आप ले सकते हैं। संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, फाइबर पर्याप्त मात्रा में होते हैं और इसीलिए अपने भोजन में दूध, चावल, राजमा, मेवे जरूर शामिल करें। बारिश के मौसम में स्वास्थ्य को लेकर खान पान में परिवर्तन और सतर्कता बेहद जरूरी होती है।

विशेष तौर पर इस मौसम में डाइट का सही चयन आपकी सेहत को बरकरार रख सकता है। तो बहनों, बारिश का मौसम जहां हमारे लिए खुशियां लेकर आता है, वहीं हमें अपने खान पान, पोषण और संतुलित आहार पर भी विशेष ध्यान देना होता है। तो सही पोषण युक्त संतुलित आहार लें और स्वस्थ रहकर बनाएं बरसात के इस मौसम को भी यादगार। स्वास्थ्य ही जीवन की हर खुशी का आधार है। वही लोग जिंदगी में सफल हैं जिन्हें खुद से प्यार है। बिछा दो सभी फूल राहों में उनके, बिछा दो सभी फूल राहों में उनके, वो सावन की रुत मिलने आने लगी है। छाने लगी हैं घनघोर घटाएं, बारिश भी कोई गीत गुनगुनाने लगी है।

0: अभी बहनें सुन रही थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ज्ञान ही विकास की कुंजी है। हाँ बहनों, शिक्षा हमें परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम बनाती है, इसीलिए जीवन में साक्षरता बहुत जरूरी है। और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाती है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता यानी पैसों की समझ का अर्थ है बचत, सही निवेश और बजट बनाना, जिससे जीवन सुरक्षित और खुशहाल बनाया जा सके। वित्तीय साक्षरता के तहत महिलाएं पारंपरिक बचत के आगे बढ़कर बचत, निवेश, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जैसे आधुनिक साधनों के जरिए अपने भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बना सकती हैं। केवल बचत करने से पैसा महंगाई दर को मात नहीं दे सकता, इसीलिए वित्तीय ज्ञान होना जरूरी है ताकि पैसों को बढ़ते हुए देखा जा सके। अक्सर महिलाएं घर चलाने और आपात स्थिति के लिए पारंपरिक रूप से बचत करने में माहिर होती हैं, लेकिन यह पैसा अक्सर घर में ही या साधारण बैंक खातों में ही रहता है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं को साधारण बचत के आगे बढ़कर सुरक्षित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना सिखाती हैं। म्यूचुअल फंड महिलाओं के लिए निवेश की दुनिया में कदम रखने का सबसे आसान और सुरक्षित जरिया है, क्योंकि इसमें पैसों का प्रबंधन पेशेवर एक्सपर्ट करते हैं। शेयर बाजार में सीधे कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं, इसमें रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावना होती है, लेकिन जोखिम के प्रति सावधान रहना भी जरूरी होता है। आंकड़ों के अनुसार शेयर बाजार में महिलाओं की भागीदारी अब तेजी से बढ़ रही है, वे अपने वित्तीय फैसले स्वयं ले रही हैं। वित्तीय साक्षरता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। इसका अर्थ है ऐसे वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होना जो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सके। यह किसी पेशे का चयन करके, व्यवसाय शुरू करके, शिक्षा में निवेश करके या आपात स्थितियों के लिए धन बचाकर किया जा सकता है। महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना न केवल उनकी आज़ादी सुनिश्चित करना है, बल्कि देश के समावेशी विकास की दिशा में भी प्रगति को आगे बढ़ाना है। वित्तीय साक्षरता अपनाओ, अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दें बहाव धारों के, और अपनी कलम से समाज को बदलने, नई दिशा देने का हुनर रखते हैं कलमकार। इसी क्रम में लीजिए सुनिए ये वार्ता राष्ट्रभक्त कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। वार्ताकार हैं अन्नपूर्णा अग्रवाल।
1: चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहनों, इस शौर्य गीत को कौन भुला सकता है जो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होकर एक अमर रचना बन गया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा के इस सजीव चित्रण ने जन जन में क्रांतिकारी चेतना का संचार किया। इस सुप्रसिद्ध कविता को लिखा था कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और भारतीय इतिहास के उस कालखंड में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वीर सेनानी संघर्षरत थे, जिन रचनाकारों ने शौर्य, त्याग, बलिदान, एकता और संगठन के ओजस्वी गीतों से जन जन को प्रेरित किया, उनमें सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। खंडवा के उदीयमान लेखक लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ विवाह के बाद जबलपुर को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। बहनों, उन दिनों स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन चरम पर था, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी वे बराबर की हिस्सेदार रहीं, जिसके लिए कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1936 में पहली बार मध्य प्रांत एवं बरार विधानसभा का उन्हें सदस्य चुना गया और दोबारा 1946 में वे निर्विरोध चुन ली गईं। बहनों, इस बीच उनके साहित्य का सतत लेखन जारी रहा। उन्होंने करीब 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। उनके मुकुल और तिरधारा कविता संग्रह हैं और बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे सादे चित्र कहानी संग्रह हैं। सुभद्रा जी ने कविताओं के माध्यम से अपने राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति प्रमुखता से की है। उनकी कविताओं में भावों को आंदोलित करने

की अपूर्व शक्ति है, जिनमें ओज और माधुर्य दोनों का सुंदर मिश्रण है। वे एक ऐसी कवित्री थीं जिनका वात्सल्य, वीर और श्रृंगार तीनों रसों पर पूर्ण अधिकार है। इन तीनों विषयों पर रचनाएं लिखकर उन्होंने भारतीय साहित्य के भंडार को समृद्ध किया है। लेकिन उनके व्यापक रचना संसार से कुछ राष्ट्रवादी कविताओं को आज हम विशेष रूप से याद कर रहे हैं। बहनों, झांसी की रानी कविता में झांसी की रानी के अप्रतिम शौर्य की गाथा ने उन लोगों में एक नई दृष्टि, चैतन्य बोध, आत्मसम्मान जागृत किया जो विदेशी शासकों के सुर में सुर मिला रहे थे, और जन जन में क्रांतिकारी भावना का संचार किया जिसने व्यापक प्रभाव छेड़ा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर वोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहनों, झांसी की रानी इस ओजपूर्ण कविता में 1857 के संग्राम और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की उनकी दृढ़ता को कवित्री श्रद्धांजलि देती है। सुभद्रा जी की एक और प्रसिद्ध कविता है वीरों का कैसा हो वसंत। इसमें उन्होंने वासंती प्रेम और वासंती बलिदानी वेश के द्वंद का भावपूर्ण वर्णन किया है। फूली सरसों ने दिया रंग मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गलवाहे हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुषवाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। बहनों, भारत माता की बलिवेदी पर सर्वस्व बलिदान और आत्मोत्सर्ग की भावपूर्ण अभिव्यक्ति व्यथित हृदय कविता में झलकती है। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार चढ़ा दो मुझको हे भगवान। बहनों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला हत्याकांड के बाद जब पूरा देश गुस्से में था, वहीं सुभद्रा जी भी इस घटना से बुरी तरह व्यथित थी। जलियांवाला बाग में वसंत इस कविता में उनके हृदय की पीड़ा कुछ इस तरह से अभिव्यक्त हुई है। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हा यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करें गुंजार कष्ट की कथा सुनावे, कोमल बालक मरे यहाँ गोली को खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर, यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। भारतीय संस्कृति का प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन उनका प्रिय त्योहार था, और उस समय की महिलाओं की दयनीय स्थिति उन्हें बहुत विचलित कर रही थी। तब उन्होंने लिखा, भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं राखी अपनी, यह लो आज, कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज, हाथ कांपता हृदय धड़कता है मेरी भारी आवाज, अब भी चौंक चौंक उठता है जलिया का वह गोलंदाज, यम की सूरत उन पतितों का पाप भूल जाऊं कैसे, अंकित आज हृदय में है फिर मन को समझाऊं कैसे, बहने कई सिसकती है हा सिसक न उनकी मिट पाई, लाज गवाई गाली पाई तिस पर भी गोली खाई, डर है कहीं न मार्शल्ला का फिर से पड़ जाए घेरा, ऐसे समय द्रौपदी जैसा कृष्ण सहारा है तेरा, बोलो सोच समझ कर बोलो क्या राखी बंधवाओगे, भीड़ पड़ेगी क्या तुम रक्षा करने दौड़े आओगे, यदि हाँ तो यह लो मेरी इस राखी को स्वीकार करो, आकर भैया बहन सुभद्रा के कष्टों का भार हरो। राखी की चुनौती इस कविता में कवित्री ने चित्तौड़ के ऐतिहासिक जौहर के परिप्रेक्ष्य में राखी बंधन की चुनौती का उल्लेख किया है। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है, छिनी है जो स्वाधीनता माँ की उसको वह जालिम के घर में से लाने गया है, आते हो भाई पुनः पूछती हूँ कि माता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती ये राखी की है आज तुमको। बहनों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने विजयादशमी कविता में स्वतंत्रता संग्राम की विजय पताका फहराने का आशीर्वाद मांगा है। वो इस तरह से लिखती हैं, दो विजय वह आत्मिक बल दो, वह हुंकार मचाने दो, अपनी निर्बल आवाजों से दुनिया को दहलाने दो, जय स्वतंत्रणी भारत माँ यह कहकर मुकुट लगाने दो, हमें नहीं इस भूमंडल को माँ पर वली वली जाने दो, पापों के गढ़ टूट पड़ेंगे रहना तुम तैयार सखी, विजय हम तुम मिलकर लेंगी अपनी माँ का प्यार सखी,
रामचंद्र की विजय कथा

0: भाषा का भेद बता आदर्श सखी, पराधीनता से छूटे यह प्यारा भारत वर्ष सखी। सुभद्रा जी के मन में राष्ट्रीय जीवन में मातृभाषा हिंदी की प्रतिष्ठा और व्यवहारिक प्रयोग के लिए भी मंगलमयी भावना थी। उन्हें विश्वास था कि हिंदी देश की एकता और स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण साबित होगी। तू होगी आधार देश की पार्लियामेंट बन जाने में, तू होगी सुखसार देश के उजड़े क्षेत्र बसाने में, तू होगी व्यवहार देश के बिछड़े हृदय मिलाने में, तू होगी अधिकार देश भर को स्वतंत्र दिलाने में। मुझसे एक एक की बंतु तीस कोट की आज हुई, हुई महान सभी भाषाओं की तू ही सरताज हुई। मेरे लिए बड़े गौरव की और गर्व की है यह बात, तेरे ही द्वारा होएगा भारत में स्वतंत्र प्रभात। बहनु सुभद्रा कुमारी चौहान जी देश को स्वतंत्र रूप में देखने की तीव्र इच्छा रखते हुए व्यक्त करती है, जिसमें देश को एक बालक, वीर, सेवक और स्वामी के रूप में देखती है और हर रूप में देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का आह्वान करती हैं। आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा। आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा। तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा। आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी, आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही है प्यारी। आ उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा, अथवा आ तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। आशा की सुखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराई, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई। बहनों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में देशभक्ति के अलावा अशिक्षा, अंधविश्वास, जाति प्रथा, नारी शोषण, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों पर भी तीखे शब्दों से प्रहार मिलता है। उनके राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को उन पर एक डाक टिकट निकाला। वहीं 2006 में भारतीय तटरक्षक सेना ने उन्हें सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। बहनों मुकुल नाम से जब उनकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसकी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया था, उस समय पुरस्कार ग्रहण करते समय उनके मन में जो विनम्रता सूचक भाव थे उन्होंने कुछ इस तरह से व्यक्त किए। हर पत्थर पर लिखा जहां बलिदान लक्ष्मी बाई का, कौन मूल्य है वहां सुभद्रा की कविता चतुराई का। देश की एक ओजस्वी राष्ट्रीय चेतना की प्रखर कवित्री का 44 वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही एक दुर्घटना में निधन हो गया। लेकिन बहनों आज देश के लिए जिस संकल्प, साहस और सच्ची राष्ट्रीय भावना की जरूरत है, उसका प्रेरक तत्व सुभद्रा जी की कविताओं में विद्यमान है और समग्र राष्ट्र का आत्मदर्शन इनमें आलोकित है।
1: अभी बहने सुन रही थी ये वार्ता राष्ट्रभक्त कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। वार्ताकार थी अन्नपूर्णा अग्रवाल। रिमझिम बरसे सावन की ये फुहारें, जैसे घटाओं ने किया हो जमी से यूं ही प्यार। काली घटाओं को देखकर हमारा मन गुनगुना उठता है फिर एक बार।

अभी बहने सुन रही थी लता मंगेशकर के स्वर में मजरू की शब्द रचना। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म थी मेरे हमदम मेरे दोस्त। सारे इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ गई, सारे इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ गई, मिट्टी में बारिश की बूंदें जो चंद पड़ गईं। बिना बारिश की बूंदें मिट्टी में पड़ते ही एक भीनी सी सुगंध हवा में घुल जाती है। यह नजारा वास्तव में प्रकृति का एक अद्भुत अनुभव होता है, जो न केवल मौसम को सुहावना बनाता है बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है। बारिश का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, रिमझिम फुहारें, चारों ओर हरियाली, कलकल करती नदियां, मधुर संगीत सुनाते झरने, ये सब हमारे मन को मोह लेते हैं और अक्सर बारिश में जलाशयों का जलस्तर बढ़ जाता है और हम उन खूबसूरत से नजारों को नजरों में कैद कर लेना चाहते हैं और निकल पड़ते हैं उन जलाशयों की खूबसूरती निहारने। मगर बरसात के मौसम में अधिक जलस्तर के कारण हमें जलाशयों से सावधान रहना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सेल्फी लेने या उसके आसपास जाने के चक्कर में अक्सर हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, इसीलिए बरसात के मौसम में जलाशयों, नदियों, बांधों के पास जाने से बचना चाहिए। इस दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने, तेज बहाव और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए सतर्क रहें, मौसम का आनंद लें मगर सावधानी रखना ना भूलें। जलाशयों, उफनते नालों या नदियों को पार करने की कोशिश ना करें। तेज बहाव और फिसलन भरे किनारों से दूर रहें। पानी के पास खड़े होकर सेल्फी लेने या वीडियो बनाने से बचें। प्रशासन के चेतावनी बोर्ड और निर्देशों का पालन करें। यदि कोई डूब रहा है तो बिना तैराकी जाने पानी में ना उतरें। किसी भी आपात स्थिति में राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर प्रशासन से संपर्क करें। तो बहनों, जीवन अनमोल है, इसीलिए बारिश के मौसम में जलाशयों से सावधान रहें और सुरक्षित रहें और मौसम की खूबसूरती का आनंद लें। वक्त रहते जो संभलते हैं वही लोग आगे निकलते हैं, वक्त रहते जो संभलते हैं वही लोग आगे निकलते हैं, सतर्कता अपनाओ हर बार, खुशियों से बीते ये संसार। बहनों, मौसम कोई भी हो, यदि मन अच्छा है तो हर मौसम खुशनुमा होता है। खूबसूरत वही दिन होते हैं जब मन शांत हो, परिस्थितियां आसान हो और अपनों का साथ हो। और इसीलिए मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की जमीन पर, मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की जमीन पर, मौसम बरसात का है, शायद अपनापन पनप जाए। आपकी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए, हर दिन खुशियों से भर जाए, इसी कामना के साथ अब अगली मुलाकात तक के लिए अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आरंभ में ही लीजिए सुनिए चुन्नी लाल रैकवार के स्वर में ये देशभक्ति गीत।
1: अरे झंग

रामकुमार प्रजापति और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना देशभक्ति गीत। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लीजिए अब सुनिए उर्मिला पांडे के स्वर में ये देशभक्ति गीत।

उर्मिला पांडे के गाए इस देशभक्ति गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अबोध कुमार सोनी के गाए गीत और भजन। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अबोध कुमार सोनी के स्वर में ये भजन।

अभी आपने सुना अबोध कुमार सोनी के स्वर में गीत। लीजिए अब सुनिए अबोध कुमार सोनी के स्वर में ये भजन।

0: अबोध कुमार सोनी के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
4: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
1: आपके साथ
4: आकाशवाणी।
5: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लान।
6: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। भुज, इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत मनोज मुंतशिर का है और संगीत है आर को का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फिल्म केसरी का गीत, आवाज़ बी पराग की है। गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और इसे संगीतबद्ध किया है आर को ने।

बी पराग के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म केसरी का गीत। गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने और इसे संगीतबद्ध किया था आर को ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। देश कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से समारोह की अगुवाई करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MiG-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज तिरंगे के रंग में सरंगी सड़कों पर देशभक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव गोयल।
1: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई 100 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: वहीं शिवपुरी और आगरमालवा सहित प्रदेश भर में विशाल तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने

0: आज भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी में संघर्ष में प्रवासी भारतीयों के योगदान, बलिदान और यशोगाथा को समर्पित प्रवासी सेनानी वीथी का लोकार्पण और अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के अमर शहीदों और वीर सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि मानवता को ऐसी त्रासदी का दंश फिर कभी न झेलना पड़े।
1: 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका का ये दिन, जब हमारे अपने देश के अंदर 60 लाख से ज्यादा शरणार्थी अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए, 1.5 से 2 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी यहाँ से निकल करके पाकिस्तान पहुंचे, हमने सबने वो कष्ट देखा समझा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी जो दर्द थे, पीड़ा थी, उनके अपने जो उनके साथ हुए व्यवहार, वो इतने अत्यंत दर्दनाक है कि आज भी रोंगटे खड़े होते। हम सब परमात्मा से कामना करें जीवन में कभी ये दोबारा ना आए और जो बीता कष्ट है उस कष्ट को सदैव स्मरण रखें।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर हैं। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत CBDC आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था का शुभारंभ उन्होंने किया। इसके बाद दोनों मंत्री अजीजपुर गांव में किसानों से संवाद करेंगे। शाम 4:30 बजे शिवराज सिंह चौहान हरियाणा के कैथल जिले के धांड स्थित FCI साइलो का निरीक्षण भी करेंगे। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है, जिसमें 40 सवाल हैं। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल रखे गए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं शहडोल, कटनी, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अगले 24 घंटे में 4 इंच या उससे अधिक बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत और लोक उपयोगी अदालत विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम में HIV और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले में 12 अक्टूबर तक सघन जागरूकता अभियान 3.0 चलाया जाएगा। छतरपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान वर्ष 2026 के तहत छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीना और SP रजत सकलेचा प्रशासनिक अमले के साथ बक्सवाहा के भ्रमण पर रवाना हुए और जबलपुर में लगातार बारिश के कारण बरगी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर परियोजना प्रशासन ने जलस्तर नियंत्रित करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर

0: भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई

यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई सौ जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं।

0: उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
2: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश

0: की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
1: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म बॉर्डर का गीत। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत है अनु मलिक का।

शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर और कुणाल गांजावाला के स्वरों में लीजिए सुनिए फिल्म लक्ष्य का गीत। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सैम बहादुर, ये है इस फिल्म का गीत शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्य कुमार की आवाज़ों में। बोल गुलजार के हैं, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए फिल्म कर्मा से। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की है। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: देश कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से समारोह की अगुवाई करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में प्रवासी भारतीयों के योगदान, बलिदान और यशोगाथा को समर्पित प्रवासी सेनानी वीथि का लोकार्पण और अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी आज पंजाब हरियाणा के दौरे पर हैं। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत CBDC आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था का शुभारंभ उन्होंने किया। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारण के कारण सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आज शाम 7:10 के स्थान पर 6:45 से किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है, जिसमें 40 सवाल रखे गए हैं। और प्रदेश में आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें, हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश आप सुनेंगे शाम 7:00 से। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे मुशायरा, जो यौम आज़ादी पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम होगा। शायर होंगे आरिफ अली आरिफ, मोहम्मद साजिद अंसारी, ओरिना अब्बासी, सरवर हबीब और संचालन करेंगे फरमान उल्ला खां। रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग केदार। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1095 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल

न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 और 28 सेकेंड हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: दिल्ली से, राजस्थान से।
1: ओह अच्छा, राजस्थान से बात कर रही हैं आप। तो चलिए बताइए, क्या करती हैं आप, क्या जॉब करती हैं, या फिर आप घर में रहती हैं?
0: नहीं, हाउसवाइफ।
1: तो ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
0: मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे दो बेटे, एक बेटी, बहू, एक पोती, एक पोता, एक नाती,
1: ओहो बहुत बढ़िया, फिर
0: उनसे
1: तो
0: मिली है
1: बहुत
0: मेरा।
1: अच्छा परिवार। आपके बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके
0: हाँ जी,
1: बचपन की आपको यादें होंगी कुछ की, जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो आप किस तरह से आप उनके लिए तैयारी करती थी, आपको करना पड़ता था कुछ?
0: नहीं मैडम, वो सब स्कूल में से सब तैयारी करवाते थे, सब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को खाली उनके कपड़े का, शूज का, ये सब अच्छे से तैयार करके भेजना था,
1: हाँ, यानी
0: और
1: सुबह सुबह
0: टाइम पे
1: जल्दी
0: उठना। हाँ, टाइम पे उठा के भेजना पड़ता था बस। वो सुबह जल्दी नहीं उठते थे, तो उनको टाइम पे तैयार करके और उसके पापा के साथ भेजना पड़ता था उस दिन।
1: तो अभी भी तो आपके जो नाती पोते हैं आपने बताया, तो उनके लिए भी आपके बच्चे तैयारी करते होंगे अब, है
0: हाँ,
1: ना?
0: करते हैं ना मैडम।
1: तो ये जो यादें होती हैं ना, जैसे जो अपने राष्ट्रीय त्योहार होते हैं ना, उनकी यादें सच में
0: अच्छी
1: बहुत ही अच्छी होती हैं, हमें हर एक को होती
0: होती है
1: हैं,
0: ना
1: है
0: मैम।
1: ना? तो पहले तो जैसे क्या क्या चीज़ें मिलती थी, है ना, तो हम इंतज़ार करते थे कि जो 15 अगस्त आ रहा है ना, या
0: आ रहा
1: 26 जनवरी
0: है
1: आ
0: तो
1: रही
0: शूज,
1: है।
0: रद्दियन, ये सब तैयार करके रखने पड़ते थे जब हम पढ़ने जाते थे, तो भी हमारे
1: पहले
0: पास
1: से
0: नहीं होते थे तो लेके आते थे, नहीं मम्मी हमको चाहिए
1: एकदम चमकती हुई ड्रेस होनी चाहिए,
0: ये चमकती हुई
1: यूनिफॉर्म।
0: ड्रेस प्रेस
1: हाँ,
0: करवा के लाते थे।
1: बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें रहती
0: अच्छी
1: हैं।
0: अच्छी यादें हैं। और
1: तो
0: एक उमंग सा होता था कि
1: बिल्कुल
0: हम अच्छे से तैयार होके जाएंगे।
1: हाँ, क्योंकि सब बच्चे उसी तरह से आएंगे। और जो ये
0: हाँ,
1: राष्ट्र के जो त्योहार होते हैं ना, ये समझिए सही मायनों में त्योहार होते हैं पूरे देश के ना,
0: होते हैं
1: सब
0: और पूरे
1: लोग
0: देश के
1: इसमें भाग
0: लिए।
1: लेते हैं। तो
0: तो बोले
1: बताइए।
0: आज आज के दिन आप मेरा ये गाना दे दोगे तो भी अच्छा है,
1: हाँ, आप इस लाइन
0: डिजाइन
1: को
0: का
1: आप
0: कोई।
1: गुनगुना के बता दीजिए फिर हमें।
0: दिल दिया है जान भी देंगे, वतन तेरे लिए,
1: वाह क्या बात,
0: बस
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम
0: आप
1: सुनवाते
0: ये
1: हैं,
0: गाना दे दीजिएगा
1: हाँ
0: मेरा।
1: सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: मुलाकात के साथ मनोरंजन भी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है जाकर
1: बिल्कुल,
0: वहीं पर।
1: मनोरंजन जब होता है ना तो काम और आसान हो जाता है ना, और
0: जी
1: थोड़ा
0: जी जी
1: जल्दी होता है, या हमें पता ही नहीं चलता काम कब हो जाता है।
0: काम कम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं
1: हाँ
0: चलता, बहुत अच्छा लगता है
1: तो ये
0: जब
1: बताइए
0: गाने से। जी,
1: सनप्रभा जी, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
0: मुझे कामकाज के साथ साथ गाने सुनना, गाने पुराने गाने मत बहुत अच्छा लगता है कि पुरानी फिल्म का गाने सुनना अच्छा लगता है। तो फिर वो भी मेरी साहित्य में भी जरा रुचि है,
1: अरे वाह।
0: मैं कविता वगैरह लिखती हूँ हमारे ओडिया में, संबलपुरी में।
1: अच्छा,
0: तो बहुत अच्छा लगता है ये सब
1: तो ये तो
0: करना।
1: बहुत अच्छी बात है, आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप कविता लिखती हैं,
0: जी
1: कितनी अच्छी बात है ना, अपने विचारों को व्यक्त करने का आपके पास एक तरीका है ना, कविता
0: जी
1: के
0: जी
1: माध्यम से या कहानी के माध्यम से, है ना, बहुत अच्छी
0: जी जी
1: चीज़ है ये। और साथ ही ये बताइए कि तो आपको कौन से जो लेखक हैं या कौन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनकी किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
0: जी हमारे तो उड़ीसा का लेखकों का लिखना अच्छा लगता है। हमारे जो हम उड़ीसा में हमारी प्रतिभा है, बहुत प्रसिद्धि है उनकी, और उनकी उपन्यास में बहुत अच्छा लगता है, जैसे
1: हाँ
0: जाज्ञसेनी वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से हैं
1: नहीं बिल्कुल,
0: जिनका
1: बहुत अच्छी
0: बहुत
1: बात है,
0: अच्छा।
1: देखिए आप जानती हैं, आप पढ़ती हैं, तो आपको मालूम है उनके बारे में, उनकी लेखनी के
0: जी
1: बारे में आपको पता है, तो आपके जरिए हमें भी पता चला कि कितने अच्छे लेखक हैं वहाँ पे, तो जो पढ़ना
0: जी
1: चाहेगा वो आराम से इनका लेखन निकाल के पढ़ सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये
0: और
1: तो।
0: एक बात बता रहती हूँ जी कि हमारे हिंदी में नोवेल बहुत मैं पढ़ती थी पहले,
1: अच्छा,
0: गुलशन नंदा की पढ़ती थी
1: अरे
0: नोवेल।
1: वाह, उनकी

0: तो किताबों के ऊपर कितनी ही फिल्में बनी है ना।
1: बहुत बहुत बहुत,
0: हाँ
1: जो कटी पतंग है, नाटक
0: हाँ
1: पतंग वगैरह, ये सब नॉवेल भी पढ़ चुकी हूँ और फिल्म भी देख चुकी हूँ जी,
0: जब
1: बहुत
0: आपने
1: अच्छा
0: नॉवेल पढ़ा उसके बाद फिल्म देखी तो और अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब
1: लगता
0: हम जिस चीज को
1: जी,
0: पढ़ते
1: सब जानकारी,
0: बिल्कुल
1: सब जानकारी हो जाती थी
0: बहुत अच्छे
1: सब।
0: लेखक है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो ये सब चीजें होती हैं, इस पे जो अगर कोई फिल्म बनती है उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो
1: बहुत
0: बताइए अब आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं तो बारिश के ऊपर एक गाना सुनना चाहती हूँ, प्यासा सावन का गाना, तो गाने के बोल जरा गुनगुना दूँ क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल गुनगुना दीजिए।
1: गाने के बोल है जी, मेघारे मेघारे मेघारे मेघारे मत पर दे।

अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो चलिए करते हैं बात और जानते हैं अभी कौन

0: सी सखी है हमारे साथ। हेलो सहेली।
1: नमस्कार राधे राधे मैम। हेलो सहेली,
0: नमस्कार। तो बताइए पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं त्रिपुरा से संगीता देवरा बोल रही हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा, गांव का
0: अच्छा,
1: नाम है चंदीपुर।
0: अरे वाह, तो आप त्रिपुरा से बोल रही हैं संगीता जिया। तो आप बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम। मेरा एक लड़का है और हस्बैंड वाइफ, हम लोग घर में 3 लोग हैं।
0: अच्छा, तो आपको बच्चा छोटा है कि बड़े हैं।
1: मैं घर में सबसे छोटा बहू हूँ और मेरा एक ही लड़का है,
0: हाँ, तो बेटा छोटा है आपका।
1: वो बीएससी में पढ़ती है कॉलेज
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा बीएससी में। नहीं, बड़ा बेटा है। तो आपको कुछ याद है अपने बेटे के बचपन का, जब स्कूल जाता था तो 15 अगस्त को मनाया जाता था जिस तरह से, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है अभी, तो कुछ यादें हैं
1: तो
0: आपकी।
1: वो तो स्कूल में जाया करती थी, साथ में मैं भी जाती थी उसको लेके। तो उसको कभी कभी गाना भी गाना पड़ता थी,
0: अच्छा,
1: बताती थी मैम।
0: हाँ, अरे वाह।
1: तो मैम मुझे गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है शारदा,
0: शारदा,
1: लता दीदी ने गाया था इस गाने को। गाने
0: हाँ।
1: का बोल है, आपका खत मिला, शुक्रिया शुक्रिया।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: गुजरात से बोल रही हूँ, नीलोफर।
0: अच्छा, नीलोफर बोल रही हैं आप, गुजरात से। तो बताइए नीलोफर
1: हाँ,
0: जी, आप क्या करती हैं?
1: मेरे पापा की राशन की दुकान है और वेफर और आइसक्रीम ये सब भी हम लोग बेचते हैं
0: अरे
1: दुकान
0: वाह,
1: में।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: मुझे ना रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है और टीवी देखना।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपकी पसंद का कौन सा गीत है जो आज हम आपको सुनवा सकते हैं?
1: मुझे ना दामिनी पिक्चर का गाना सुनना है,
0: कौन सा वाला?
1: बिन साजन
0: हाँ
1: झूला
0: हाँ वाह।
1: झूलू
0: गगन को छू लीजिए आप,
1: मैं
0: आपके पसंद का ये गीत
1: वादा
0: हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ तो पहले आप अपना नाम बताइए और अपने शहर का नाम बताइए।
1: मेरा नाम है कल्याणी सुर्वे, मैं वसई से हूँ।
0: अच्छा, बस ऐसे बोल रही हैं। तो बताइए कल्याणी
1: हाँ
0: जी, आप कुछ जॉब करते हैं या आप घर पे रहती हैं?
1: हाँ मैं जॉब पे हूँ।
0: अच्छा, तो आप बताइए
1: घर
0: आपके घर में कौन कौन है?
1: में हम 3 जन हैं, मेरे हस्बैंड स्टे टाउन में,
0: अच्छा, तो बेटा छोटा है कि बड़ा?
1: नहीं बड़ा है,
0: बड़ा।
1: कॉलेज जाता है।
0: अच्छा, आपकी कुछ यादें होंगी 15 अगस्त की कि आप किस बेटे को जब भेजती थी स्कूल, तो जब 15 अगस्त होता था तो आप किस तरह से तैयारी
1: हाँ,
0: करती थी, उसकी कुछ यादें हैं आपकी, या फिर आपकी अपनी खुद की यादें हो?
1: या मेरी खुद की यादें थी कि स्कूल में 15 अगस्त को जाना बहुत अच्छा लगता था, कि
0: हाँ।
1: वो एक अलग ही ये रहता था माहौल। टीचर्स बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ वाइट कलर के पहन के आते थे, फिर
0: अरे वाह।
1: जो भाषण होते थे, फिर पोइट्री स्कूल बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। यानी कि आपकी 15 अगस्त की याद आती तो पहले स्कूल की याद ही है।
0: तो आप भाग लेती थी या आपने पार्टिसिपेट किया इन सब चीजों में, जो भी अगर कुछ फंक्शंस में?
1: नहीं इतना तो नहीं, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता था बोलने से।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, आपके पसंद का कोई गीत?
1: मुझे क्या हुआ तेरा वादा गाना सुनना है, तो
0: अच्छा,
1: हम किसी से कम नहीं मिले।
0: अरे वाह, ठीक है, चलिए मैं आपको आपके पसंद का गीत सुनवाती हूँ।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली, तो
1: हेलो सहेली।
0: बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हाँ, मैं सोनू वर्मा बोल रही हूँ, भोपाल से। हाँ,
0: भोपाल से बोल रही हैं आप। आपके घर में कौन कौन है पहले बताइए तो।
1: घर में मम्मी पापा हैं और हस्बैंड है, बच्चे हैं।
0: बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: हाँ, मेरा एक ही बेटा है, बड़ा है।
0: अच्छा, तो आप कुछ अपनी यादें आप बताएंगे 15 अगस्त की, जो 15 अगस्त आ रहा है।
1: 15 अगस्त में बचपन में बहुत उत्साह रहते था स्कूल जाने का, क्योंकि वो जो पीले वाले लड्डू जो मिलते
0: मुझे मुझे
1: थे
0: यही सुनना था, वो पीले वाले लड्डू की मुझे बहुत, क्योंकि ना उसके उसके वजह से हम बहुत ज्यादा कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि वो पीले लड्डू मिलेंगे, वो 15 अगस्त आ रहा है, हमें तो जाना जरूरी है।
1: जी, वो 15 अगस्त पे ही उसका बहुत ज्यादा वो रहता था। उसके लिए क्या है कि जरूर तैयार होते थे कि आज लड्डू मिलेंगे, और दो मिलते थे।
0: हाँ, वो
1: तो
0: लड्डू बहुत ज्यादा कीमती
1: एक
0: होते थे ना।
1: जी बहुत ज्यादा कीमती और बहुत अच्छे होते थे। जो टेस्ट उस समय रहता था, बाकी नहीं मिलता था टेस्ट वो।
0: बिल्कुल, चाहे हम बाद में कितनी भी मिठाई खा लें, लेकिन वो जो एक स्वाद था ना, वो एकदम मन में
1: जी
0: बस जाता था, है ना। और
1: जी
0: साथ ही वहां पे जाके जब देश गान होता था ना, तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते थे ना,
1: हाँ,
0: जब जन
1: बहुत
0: गण
1: अच्छा
0: मन
1: लगता
0: शुरू
1: था
0: होता
1: उस
0: था।
1: समय की। जो 15 अगस्त थी बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत उत्साह रहता था, एक खुशी रहती थी कि साहब 15 अगस्त आ रही है।
0: हाँ,
1: उस
0: जाना है
1: चीज
0: हमें।
1: की यूनिफॉर्म गंदी रहती थी, तो रात को इसको धोना है, सुखाना है, ताकि सुबह साफ ड्रेस पहन के जाएं।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगता था, एकदम देख के माहौल पूरा एकदम दिल खुश हो जाता था, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा मैं उसी समय पे पहुंच गई हूँ।
0: देखिए, आप अपने बचपन वाले 15 अगस्त से पहुंच गई ना। बात करते करते।
1: जी, मेरी मम्मी से सीखा है मैंने रेडियो सुनना। मेरी मम्मी आज भी रेडियो सुनती है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, उन्हें बहुत पसंद है रेडियो। जब भी रेडियो पे अच्छा गाना सुनती है, तो मुझसे बोलती है कि तुम भी फोन लगाना, ये गाना सुनना। मैंने हाँ बिल्कुल सुनूंगी, और मेरी मम्मी को बहुत खुशी
0: जी
1: होती है अगर हेलो सेली में
0: हाँ
1: मेरी
0: हाँ
1: बात होती है तो। जी,
0: बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती
1: कुमार शानू की आवाज है, कितनी
0: हैं?
1: हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने
0: हाय,
1: की।
0: क्या गीत सुना है आपने, बहुत
1: जी,
0: बढ़िया। चलिए आप सुनाते हैं, आपको
1: मेरी
0: पसंद।

0: का नाम ले लूं?
1: हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
0: मेरी मम्मी का नाम है सोहरम बाई और ये गाना जिसके लिए है उनका नाम है संजय महेश्वरी।
1: अच्छा ठीक है, तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, तो
1: हेलो सहेली,
0: पहले तो आप बताइए अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं उज्जैन से भारती भटनागर बोल रही हूँ।
0: अच्छा भारती जी, तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: मुझे किचन में खाना बनाना और साफ सफाई करना बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आपको साफ सफाई अपने घर में रखना बहुत पसंद है,
1: हाँ बहुत
0: तो
1: पसंद है।
0: किचन में आपको खाना बनाना पसंद है। तो कोई ऐसी बहुत ही अच्छी सी जो डिश आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाती हैं, कौन सी है वो?
1: दाल चावल बहुत अच्छे से बनाती हूँ
0: बहुत बढ़िया।
1: मैं। मेरे
0: हाँ जी,
1: पोते को भी दाल चावल बहुत पसंद है इसलिए।
0: अच्छा, तो आपका पोता है कितना बड़ा?
1: वो 13 साल का है।
0: 13 साल का है, यानी 15 अगस्त की
1: जी
0: तैयारियां चल रही होंगी, है ना, स्कूल में।
1: जी इसलिए तो मेरा नाम भारती है। मेरा भी जन्मदिन 15 अगस्त को है ना। हाँ
0: अरे वाह, बहुत
1: 15 अगस्त
0: बढ़िया,
1: को
0: और
1: दिया
0: आपका
1: गया।
0: नाम भी शायद इसीलिए भारती रखा गया है।
1: भारती रखा गया है। हाँ इसीलिए भारती रखा गया
0: बहुत बहुत बहुत
1: है। हाँ
0: बधाई हो आपको,
1: बहुत खुशी
0: जन्मदिन
1: हुई
0: की
1: आपके
0: अग्रिम
1: यहाँ से फोन
0: बधाइयाँ।
1: लगा, इतनी खुशी हुई।
0: तो आप बताइए
1: हाँ
0: आज हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं जो आपको पसंद हो?
1: मुकेश दत्ता की आवाज में कभी कभी वाला गाना, कभी पिक्चर का गाना।
0: अच्छा, कभी कभी वाला गाना।
1: हाँ
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, तो
1: हेलो सहेली,
0: बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं राजगढ़ शहर से बोल रही हूँ। नाम है लक्ष्मी वर्मा।
0: तो बताइए लक्ष्मी
1: हाँ,
0: जी, आपको क्या करना बहुत पसंद है?
1: हमको बहुत पसंद है, हर चीज पसंद है। और ये जो सावन का महीना चलता है ना,
0: सावन बहुत पसंद है आपको, है ना?
1: बहुत पसंद है
0: सावन का
1: हमको।
0: महीना पसंद है, यानी आपको बारिश बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत बारिश पसंद है। और अब तो बहुत सारा पानी गिरा तो ऐसा लगता है कि दिन भर पानी में भीगो तो और अच्छा लगता
0: यानी भीगना
1: है।
0: पसंद है आपको, है ना?
1: हाँ, भीगना बहुत अच्छा लगता है ना, पानी में भीगो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत सहेली
0: बिल्कुल।
1: की भी आज अपन को महसूस होती है, यार आज अपनी सहेली रहती तो कितना अच्छा लगता है साथ
0: हाँ,
1: में।
0: हर मौसम को हम उसका आनंद उठाना चाहिए ना, लेकिन आनंद सावधानी के साथ उठाना चाहिए।
1: आपको मेरी सिस्टर का नाम बताने चाहती हूँ मैं।
0: बिल्कुल बताइए।
1: हमारी सिस्टर का नाम है सोनू वर्मा, भैया का नाम है उसका, एक तो रोहित है और जीजा का नाम है संजू वर्मा।
0: अरे वाह,
1: हम गाना सुनने चाहते हैं, कहो ना प्यार है।
0: ठीक है, चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, पहले
1: हेलो सहेली।
0: बताइए अपना नाम और फिर बताइए अपने शहर का नाम। अच्छा,
1: मैं वसई से उज्ज्वला नीलेश भरत बोल रही हूँ। मैं वसई में रहती हूँ।
0: तो आप उज्ज्वला जी
1: हाँ,
0: बोल रही हैं, तो ये बताइए उज्ज्वला जी आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, दोनों सब लोग हैं।
0: अच्छा, तो बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरी बेटी कॉलेज में जाती है, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है,
0: अरे वाह,
1: और बेटा 8th स्टैंडर्ड में है।
0: यानी पढ़ाई चल रही है अभी। तो 15 अगस्त
1: पढ़ाई
0: आने
1: चल
0: वाला है,
1: रही है,
0: कैसी तैयारियां चल रही हैं?
1: अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग बिल्डिंग में भी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स करवाते हैं छोटे बच्चों के।
0: अच्छा, आपकी सोसाइटी में भी होता है ये
1: हाँ
0: सब चीजें?
1: हाँ हाँ
0: तो स्कूल में तो एक अलग तरीके से होता होगा ना, तैयारियां भी आप अच्छे तरह से करते होंगे, और साथ ही बच्चे के स्कूल में है तो उसने किसी में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है किसी चीज में?
1: नहीं, इस साल तो उसने किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है।
0: लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा
1: जाना
0: ना।
1: जरूर पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो क्योंकि
1: हाँ
0: वहां पर जाके जो माहौल देखते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि अपने देश का
1: बहुत
0: त्योहार है ये।
1: अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सच।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश चल रही है, तो सबके सज्जन सावन में ये गीत सुनना है।
0: ठीक है, चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: झन्नू जायसवाल बोल रही हूँ, झांसी से। हाँ
0: अच्छा, झांसी से बोल रही हैं आप। तो
1: जी,
0: बताइए आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है।
1: हमको घर का काम करना अच्छा लगता है, हाउस वाइफ है, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको गाना सुनना अच्छा लगता है। आपको थोड़े से बचपन में आपके ले जाते हैं। आप जब छोटी रही होंगी तो आप 15 अगस्त जैसे अभी आ रहा है तो आप कैसे मनाती थी उसे।
1: तो मैडम हम तो बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे हम, तो हमारे 15 अगस्त हमारे स्कूल में मनाया जाता था। टीचरें सबसे गाना गवाती थी, झंडा
0: अच्छा,
1: उठता था और
0: हाँ
1: नाश्ता वाश्ता मिलता था, बहुत अच्छा लगता था।
0: वो पीले लड्डू की याद है आपको।
1: हाँ, पूरे पीले लड्डू हमारे यहाँ, तो हम यहाँ
0: हाँ
1: के हैं ना, मिर्जापुर के हैं, तो हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह से सब कुछ बांटते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे मैडम।
0: और
1: हाँ,
0: झंडा
1: लड्डू
0: फहराया जाता था, है ना।
1: झंडा फहराया जाता था, सुबह सुबह चले जाते थे हम लोग, कोई स्कूल सुबह 7 बजे का रहता था, मगर उस दिन बहुत जल्दी जाते थे।
0: हाँ, सुबह सुबह जाके वहां पे कितना अच्छा लगता था ना, जब जब देश गान होता है ना उसके बाद कितना अच्छा लगता है सुन
1: हाँ,
0: सुन के।
1: बहुत अच्छा। अभी भी कभी कभी जब गाने आते हैं रेडियो में, कभी कभी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं मैडम।
0: बहुत अच्छा लगता है। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज।
1: हम गाना सुनना चाहते हैं, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

जरा ध्यान से सुनिए। अरे, स्टूडियो का फोन लगातार बज रहा है, आपके संदेश हम तक पहुंचा रहा है। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी सी है। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना मत भूलिएगा। और हमारे जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाला प्रयास कभी भी असफल नहीं होता। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है अब गम नहीं।
2: जिंदगी एक कहानी ही तो है। हम आसपास जो देखते हैं हमारी कलम से शब्द बनकर वर्कों पर बिखर जाता है। कहानियाँ जीवन में न जाने कितने रंग लेकर आती हैं, है ना? कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपके चेहरे पर मुस्कान है? नहीं है तो चलिए ना, सजा देते हैं आपके चेहरों पर मुस्कान। जानती हूँ मैं कि जीवन की आपाधापी में बहुत कुछ छूट जाता है। ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम मिस करते रहते हैं, जैसे बचपन में सुनी हुई कहानियाँ जो हमने दादा दादी से सुनी होती हैं, नाना नानी से सुनी होती हैं। हमने न जाने कितनी कहानियाँ पढ़ी हैं, जातक कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, और ये सब कहानियाँ सुनकर पढ़कर हम सब उनमें डूबने उतराने लगते हैं ना। जी हाँ, देशभक्ति से जुड़ी भी ना जाने कितनी कहानियाँ हैं। अब 15 अगस्त आ गया है तो सोच रही हूँ क्यों ना इस अवसर पर आपके साथ वीरों की बातें हों, उनके परिवारों की बातें हों, उनकी वीरता की बातें हों, उनके आंसुओं की बातें हों, उनके मुस्कान की बातें हों। तो आज मेरी मानस पार्टनर कथा आपको कहानी सुनाएगी। करें कहानी शुरू। दोस्तों, मेरा नाम कथा है। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि किसी आर्मी वाले से शादी करूं। किसी फौजी की फोटो देखते ही एक जोश भर जाता था। ऐसा लगता था बस अब जो कुछ करना है फौज में जाकर ही करना है, फौज के साथ ही करना है। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ मेरे साथ तो नहीं होता ना। सेना और शौर्य की बातें सुनकर आप सब भी गर्व से भर जाते हैं ना। एक अलग सा जज्बा, एक जोश, एक ओज हमारे भीतर आ जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं अनहद आनंद मिलता है। बहुत से गाने ना, जैसे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ वतन ऐ वतन। तो चलिए ना, क्यों ना आज इस मौके पर फिर से हम उस देशभक्ति के रंग में रंग जाएं और सुने इस सुंदर से गाने।

दोस्तों, जब वीर गति पाने के बाद शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर आता है, तो क्या केवल उसके परिवार वाले रोते हैं? ये देखते हुए क्या आप दुखी नहीं होते? आप गमगीन नहीं होते? आपके भी आंसू बहते हैं ना? कितना खराब लगता है जब हम ये देखते हैं कि कुछ वीर शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, कोई छोटे से बच्चे को छोड़कर, तो कोई बूढ़े माँ बाप को रोता छोड़कर शहीद हो जाता है। उनका बलिदान कितना कुछ कहता है। हमेशा हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस माहौल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जुबां के हद से रिहा होकर हमारी आँखों से अता हो जाता है ना? बहते हैं ना हमारी आँखों से आंसू? क्या रिश्ता होता है उनका हमसे? क्यों वे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी खुशी, चैन, सुकून सब कुछ बलिदान कर देते हैं? और न जाने क्यों तिरंगे में लिपटे उन वीरों को देखकर हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है तो कुछ रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता है एक देशवासी का अपने फौजी से। कितना दुख होता है ना जब समझ में आता है जाते जाते भी शायद वे हमसे ऐसा कह

0: साथियों।
1: दोस्तों, आर्मी वाले से शादी करने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो सोचा चलो क्यों ना पत्रकारिता के जरिए ही उनसे जुड़ जाऊं, उनके लिए कुछ इस माध्यम से कर पाऊं। और अपने इस प्रोफेशन के जरिए अक्सर मैं उनके बीच जाती रहती हूं, कहीं से आंसू तो कहीं से गम बटोर कर अपनी झोली में भरती हूँ। बहुत सी कहानियां हैं उन वीरों की, उनमें से बहुत सी कहानियां मेरे दिल के पास हैं, क्योंकि मैं उनके परिवारों में उनके साथ रही हूँ, उनके पास जाकर उनसे बातें की है। आज आपको उन कहानियों में से दो कहानियों से आपको मिलवाती हूँ। जी हाँ, मेजर अर्शदीप चोपड़ा और कर्नल दीक्षित के परिवार से आज आपको मिलवाना चाहूँगी, और मिलवाऊंगी मैं आपको हमारी मन्नू से। मन्नू, मनु, मानविका, मानू, बहुत सारे नाम है उसके, बड़ी प्यारी है वो। हाँ, बताऊंगी आपको उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको मिला देती हूँ मेजर अर्शदीप चोपड़ा से। एक बार मैं रिपोर्टिंग के लिए कहीं गई थी, वहाँ मेरा मिलना मेजर चोपड़ा से हुआ। 6 फीट हाइट, गोरे चिट्टे, जिंदा दिल, आकर्षक व्यक्तित्व। उनसे मैं बातें करने लगी, वो भी मुझसे बहुत सी बातें करने लगे। तब मैंने उन्हें कहा, सर, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बड़ी होकर आर्मी से जुड़ूं, आर्मी ऑफिसर से शादी करूं। सच बहुत प्रभावित होती हूं आप सबके जज्बे से। मैं बातें करती जा रही थी, उनकी तरफ देखा नहीं थी, अचानक जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा शायद शायद मेरी किसी बात से उनको दुख पहुंचा है। मैंने कहा, सॉरी सर, अगर मैंने कुछ गलत कहकर आपको दुखी कर दिया है तो। नहीं नहीं कथा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, आज तुमने ये बात छेड़कर बहुत अच्छा।

अच्छा किया। आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया, न जाने क्यों तुम मुझे अपनी अपनी सी लग रही हो। मेरी कोई बहन नहीं है, बनोगी मेरी बहन? सर, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस बात पर उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा, उनकी आंखों के आंसू मेरे माथे पर टपक गए। न जाने क्या था कि मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रुला दिया कथा? नहीं, भाई की आंखें रोएंगी तो बहन की आंखों तक तो आंसू पहुंचेंगे ना सर। कथा, भाई का है तो सर क्यों कह रही हो? अब उनके चेहरे की मुस्कान फिर लौटने लगी थी। तो इस बहन को नहीं बताएंगे ये उदासी किस लिए? शायद मैं किसी काम आ सकूं। अच्छा चलो बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। वो देवदार का पेड़ है ना, मुझे बहुत सुकून देता है। वहां चलकर बैठकर बातें करें। जी भैया, जरूर। अच्छा, मेरे थर्मस में कॉफी है, निकाल लेती हूँ। पसंद है आपको कॉफी? हाँ, बहुत पसंद है। कॉफी का मग हाथ में लेकर वे बोले, पता है रूनू को भी मेरे जैसे कॉफी बहुत पसंद है। कहकर वे चुप हो गए, जैसे किसी सोच में डूब गए। लेकिन ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए थे। सर, नहीं नहीं भैया, रूनू कौन है? रूनू? कथा, रूनू मेरी बेटी है, मेरी और शुभा की बेटी, जो अब 13 साल की हो गई है। मैंने हमेशा चाहा था कि हमारे घर में ना एक प्यारी सी परी सी बेटी आए। वो आई, बहुत खुश थे हम दोनों। मैं उसकी नेपी सेंध करता था, उसे लोरियां गाकर सुनाता था। नन्ही परी सोने चली, ना जाने कितनी लोरियां। उसके उसके लिए मैं एप्पल मैश करता था, क्या क्या नहीं करता था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था मुझे। मैं और शुभा साथ में उसका हर काम करते थे। बिल्कुल एंजल सी लगती थी मेरी परी। उसके पास से मुझे हटने का दिल ही नहीं होता था। उसे मैं देखता ही रहता था और इंतजार था कि कब अपनी तोतली जुबान से वो मुझे पापा कहेगी। पर क्या भैया? कथा, आज तक उसने मुझे पापा नहीं कहा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके समझदार होने पर मैं उसके साथ कभी नहीं रह सका। मेरी पोस्टिंग होती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। और एक बार मैं सरप्राइज देने के लिए उन लोग के सामने यूनिफॉर्म में चला गया। बहुत छोटी सी थी वो। मुझे यूनिफॉर्म में देखकर वो अपनी मम्मा के पीछे दुबक गई। पता नहीं ऐसा उसने क्या देख लिया था, क्या समझ लिया था कि यूनिफॉर्म से डरने लगी थी मेरी परी। मुझे देखकर डर गई थी। डरती है मेरी परी मुझसे। अभी तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ। काश कभी तो वो मुझे पापा कहे। ये कहते कहते अचानक एक कॉल भी आ गया था और उन्हें उठकर अचानक जाना पड़ा था। और आंसुओं के बीच इससे ज़्यादा शायद अब वे और कुछ कह भी नहीं पाते। मैं समझ गई थी, उनके भीतर एक ऐसा गम है जिन्हें अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। मैंने एक निर्णय ले लिया था। इसके बाद मैं एक बार उनके कमरे में गई। मेजर चोपड़ा वहां नहीं थे क्योंकि उन्हें फ्रंट पर जाना था। टेबल पर एक डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कहानियों की डायरी जो तूने कभी नहीं पढ़ी मेरी रुनू। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू टपक गए थे। भाई, इन अधूरी कहानियों को अब मैं मुकम्मल करूंगी। एक बहन का वादा है फौजी भाई से। इस घटना के 3 महीने बाद मेजर चोपड़ा फ्रंट से अभी अभी बंकर में आए थे। गहरे घाव थे, दर्द था। अचानक उन्हें एक वीडियो कॉल आया। उस वीडियो कॉल में ऐसा क्या था कि उनका सारा डर चला गया? जी हाँ, उनकी रूनू कह रही थी, पापा पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। मेजर चोपड़ा को लगा ये तो सपना है, लेकिन दोस्तों वो सपना नहीं, सच था। उनकी बेटी रूनू आज उनसे कह रही थी वो जो मेजर चोपड़ा सुनना चाहते थे, जो पापा सुनना चाहते थे अपनी एक बेटी से। पापा पापा, इस बार मैंने एनुअल डे पर आप रहेंगे ना हमारे साथ? मेरी मैम ने भी कहा है, दुश्मनों को याद दिला दी तुम्हारे पापा ने। मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, सचमुच आप कितने अच्छे हैं पापा। मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाऊंगी। और ना पापा, मुझे एक स्टोरी भी लिखनी है पापा के ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है पापा, मेरी स्टोरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है ना।

जब मेरी बाकी फ्रेंड्स कहती थी ना अपने पापा के बारे में, पापा ऐसे करते हैं, पापा वैसे करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं अपने पापा के बारे में क्या कहूंगी। लेकिन अब मैं बताऊंगी, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, उनके पापा मेरे पापा जैसे नहीं।

0: मेरी परी, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मेरे लिए? आपके मुंह से पापा सुन रहा हूं। फिर बोलो पापा, बोलो मेरी बच्ची, पापा कहो, कहो मुझे पापा। रूनू ने कई बार कहा, पापा पापा पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, आई लव यू पापा। उनकी पत्नी शोभा के चेहरे पर भी खुशी थी, मेजर चोपड़ा की आंखों में खुशी के आंसू थे, और एक प्रश्न भी था, आखिर ये हुआ कैसे? ये देखकर शोभा ने और रूनू ने कैमरे को कथा के चेहरे पर किया। मेजर सब समझ गए। रूनू ने कहा, पापा वैसे बड़ी अच्छी बुआ ढूंढी है आपने, बहुत क्यूट है कथा बुआ। कथा बुआ ने मुझे आपके बहुत सारे वीडियोस दिखाए, तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। कितना दुख दिया है ना मैंने आपको। आई एम रियली सॉरी पापा। नहीं नहीं बच्चे, नो सॉरी। मेरा बच्चा, अब तो खाली खुश रहने की बातें कर, मैं जल्दी आऊंगा अपनी परी के पास। अरे कथा, तेरी आंखों में आंसू क्यों बहना? भैया, ये आंसू भी ना मौका नहीं देखते, दुख में भी बहते हैं और खुशी में भी। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं। मैं कैसे कुछ कहूं कथा, तुझे क्या कहूं? तूने क्या कर दिखाया मेरी बहन। सच, अब कोई गम नहीं। मैं क्या कर पाऊंगा तेरे लिए? कुछ कर सकता हूं? भैया, रक्षाबंधन पर हिसाब बराबर कर लूंगी बहुत सा प्यार लेकर। सोचता हूं अब अपनी बहन के लिए आर्मी ऑफिसर ढूंढ ही दूं। क्यों? नहीं भैया, आप लेट हो गए। अब मैंने एक जर्नलिस्ट को ही पसंद कर लिया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मेजर चोपड़ा की, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मंजर था उस दिन। हम सब बहुत खुश थे, मन में गाना जैसे बज रहा था, खुशियाँ ही खुशियाँ हो आंगन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए।
1: खुशियाँ।

तो दोस्तों, इस कहानी के बाद आपको एक और फौजी परिवार में लेकर चलती हूँ। वहाँ भी हैं कुछ आंसू, कुछ मुस्कान। आइए, भावनाओं के सागर में डूबते हैं। ये कहानी है कर्नल दीक्षित, उनके प्रिंसिपल पत्नी जानवी और प्यारी सी बेटी मानविका की। मैं उसको आपकी कहानी बताऊं, उससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि मानू, मानविका, मन्नू, जी हाँ, वो खुद आपको अपनी कहानी कहे, आपसे सीधी बातें करे। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मानविका मुझे मिली कहाँ और कैसे मिली। बात तब की है जब मैं चैनल की ओर से एक इवेंट कवर करने के लिए नैनीताल जा रही थी। काठगोदाम से बस में नैनीताल की ओर हम जा रहे थे। मैं मेरी सीट पर अकेली बैठी हुई थी, बहुत कम लोग थे उस बस में, और वो मेरी बगल वाली सीट पर अकेले बैठी हुई थी, हौले हौले मुस्कुरा रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी वो, न जाने

क्या था उसमें जो मैं उसे देखने लगी? उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज के किशोर जब फोन की रील्स बनाने में व्यस्त होते हैं, ये लड़की प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए कितनी खुश हो रही है, कुछ लिख रही है। कितनी सुंदर लग रही है वो प्रकृति को वर्कों में उतारते हुए। उसके सलोने चेहरे पर सपने संजोए हुए दो बड़ी बड़ी आंखें थी, गालों में डिंपल पड़ रहे थे। न जाने क्यों मेरा मन उससे बहुत सी बातें करने को होने लगा। अचानक वो उसने मेरी ओर देखा, देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दी। उसे देखकर मेरे मन में न जाने क्यों ये शब्द उतरने लगे।

आगे जब बस रुकी, हम नीचे उतरे, उसने जूस लिया और मैंने चाय। पैसे देने के समय उसे पता चला कि उसका वॉलेट किसी ने निकाल लिया है। वो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, परेशान मत हो। मैंने उसके रुपए भी दे दिए। फिर हम दोस्त बन गए। हम एक सीट पर साथ में बैठ गए। बातें करते हुए नैनीताल पहुंचे। न जाने कितनी बातें, पहली बार मिले थे पर हमारे बीच इतनी सारी बातें आ कहाँ से रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। हम उम्र ना होकर भी हम बहुत करीब आ गए। इस बात से शायद और ज़्यादा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। जी हाँ, हमारी मानू भी आर्मी बैकग्राउंड से है। कुछ समय पहले तक जो दो अनजाने थे, कितने अपने से हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम पहली बार मिले हैं। हमें पता चला कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास में हैं। उसके बाद कई मौक़ों पर हम मिलने लगे। मानू को मेरी मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद आती थी, तो जब भी मेरे घर खीर बनती, मम्मी कहती, मानू के घर खीर जरूर जाएगी। और मानू के घर जब भरवा बैंगन बनते, तो आंटी यानी मानू की मम्मा मुझे ज़रूर बुलाती। मैं मानविका से उम्र में कुछ साल बड़ी हूँ, पर वो अपनी सारी बातें मुझसे साझा करने लगी। मैं उसके लिए दोस्त, बहन, न जाने क्या क्या बन गई। वो कहती, कथा दी, मेरा कोई सिबलिंग नहीं था ना, इसलिए भगवान ने आपसे मिलाया। इसके बाद अक्सर वो कई बार मेरे स्टूडियो आ जाती, कई बार मैं उसे अपने साथ आउटडोर पर ले जाती। कभी कभी मैं भी उसके पापा के साथ आर्मी के किसी प्रोग्राम में चली जाती। जब वो ये कहती ना कि भगवान जी ने मुझे आपसे मिलाया, बड़ी प्यारी लगती। उसकी इस मासूमियत पर मैं उसका माथा चूम लेती। आप उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं? तो जानिए भाई, हक है आपका। तो क्यों ना मानू यानी मानविका से ही सुन लें आप कहानी, उसी के

वानी, मैंने आपको पहले बताया था ना कि डायरी लिखती है मानू। तो अब आगे की कहानी हमारी मानविका और उसके डायरी के पेज ही आपको बताएंगे। मानविका डायरी में लिख रही है, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे पन्नों पर मेरे

आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको उसी लेटर पैड पर लेटर लिखूं जो आपने मुझे मेरे सेकंड बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। पिंक बैकग्राउंड, गोल्ड एंड पिंक फेडीज वाला, जिसमें चिड़ियां और परियां बनी हुई हैं। आपको याद है ना, मुझे हर चीज पिंक चाहिए होती थी। आइसक्रीम पिंक, ड्रेस पिंक, स्लीपर पिंक, शूज पिंक, हेयर बैंड पिंक। पापा मेरे भाई नहीं है ना, तो आपको ही तो मैं राखी बांधती हूं ना। पिछले रक्षाबंधन पर मैं आपसे गुस्सा हो गई थी, आपसे और मम्मा से। पता है ना क्यों? आप लोगों ने मुझे व्हाइट आइसक्रीम जो दे दी थी। लेकिन आप दोनों भी कम नहीं है, कुछ प्लान कर लिया था और आइसक्रीम में पिंक कलर डालकर उसे पिंक कर दिया था और मुझे खुश कर दिया। लेकिन मैं जानकर गुस्सा रहने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों का और ज्यादा प्यार मिलता। और तब आप दोनों मुझे प्यार करते हुए इस गाने पर मेरे साथ नाचने लगे।

मैं रोते रोते हंस दी थी। मुझे हंसता देखकर आप दोनों कितना खुश हो गए थे, जैसे आपके घर आने से मैं खुश हो जाती हूँ। पापा, आपने कहा था ना जल्दी आओगे। कब आओगे पापा? जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पेरेंट्स डे आता है ना, तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। सबके पेरेंट्स आते हैं ना, आप नहीं होते। और पापा, हर संडे ना मेरी दोस्त ना अपने अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह पाते ना। पापा, जब आप आएंगे ना तब हम गार्डन में झूला झूलेंगे, आपके साथ मैं बाइक पर घूमूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके साथ क्या क्या करना है, जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा, आप जहाँ रहते वहाँ गुड़िया मिलती है ना, मेरे लिए लाएंगे आप आंख मटकाने वाली गुड़िया? याद है बचपन में हम गाना गाते थे, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छा ठीक है ठीक है। पापा, मेरा 9th बर्थडे आने वाला है, आपने मुझसे वादा किया था ना आप मेरे बर्थडे पर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे बर्थडे को केवल कुछ ही दिन तो बाकी हैं। आप तो अपने मन्नू को कभी दुखी नहीं देख पाते ना, याद है ना? अच्छा, कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत हो, डोंट बी सैड। हाँ, मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि ना अब मुझे समझ में आ गया है कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हमारे पास। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत से मन्नू हैं, अगर मेरे यानी मन्नू के पापा फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे तो उन सब मन्नू के पापा उनके पास नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ ना, वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप पढ़ लेना। हाँ, और मम्मा ने ना मुझे वो गाना दिखाया था जिसमें चिट्ठी पढ़कर ना सारे सोल्जर्स ये गाना गाते हैं।

पापा अब जब मुझे समझ में आया ना कि आप मेरे बर्थडे पर हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, तो कहना चाहती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। कोई बात नहीं है, मेरा बर्थडे मैं आपको वीडियो कॉल करके मना लूंगी, ठीक है? अच्छा पापा, आपको पता है आपके मन्नू ने क्लास में टॉप किया है और कथक डांस में भी ना मैंने लेवल 1 कर लिया है। पापा मैं भी आपके जैसे सोल्जर बनूंगी, और कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। अब तो जानते हैं ना आपकी मन्नू हर प्रोग्राम का हिस्सा होती है। आप सोचेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। पापा मैं सोल्जर बन के परफॉर्म करने वाली हूँ अपने इस फेवरेट गाने पर, नन्हा मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ। अरे पापा आपको ये भी तो बताना है कि मम्मा ने मेरे ऊपर एक और कविता लिखी है, और जब भी मुझे याद आती है ना आपकी, मैं उदास होती हूँ ना, मम्मा मुझे गले लगाकर बहुत सा प्यार करती है, फिर एक नई कविता सुनाती है और फिर मुझे खुश कर देती है। आपको पता है आपकी मन्नू भी ना मम्मा जैसे थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करने लगी है। आप आएंगे ना तब मैं आपको सुनाऊंगी मैंने क्या लिखा है। लगता है मम्मा कॉलेज से आ गई हैं, मुझे मम्मा से बहुत सारी बातें करनी, वो भी बहुत सी बातें बताएंगी, और मैंने जो कविता लिखी है ना मम्मा को पहले सुना देती हूँ। आप आएंगे तब आपको सुनाऊंगी। सॉरी पापा चिट्ठी बीच में छोड़ कर गई, लेकिन मम्मा को कविता सुनानी थी, मम्मा थक कर आई थी, उन्हें पानी देना था, ग्रीन टी बनानी थी। मैं ना धीरे धीरे किचन का काम सीख रही हूँ, जब आप आएंगे ना आपको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी, ओके? पता है पापा मेरी कविता सुनकर मम्मा बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सा प्यार किया, मुझे कहा जूही की कली, चांद की किरण, पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा आज मेरा 9th बर्थडे है, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, मम्मा मुझे आज गर्ल्स ऑर्फनेज लेकर जाने वाली हैं, हम ना गर्ल्स के साथ में वहाँ अपना बर्थडे मनाएंगे। पता है आज मैंने पहली बार नमकीन बिस्किट का स्नैक्स बनाया उन बच्चियों के लिए, और मम्मा ने केक घर पर बनाई है। उन्हें पता है ना मुझे मलाई वाली केक बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगती है ना। 2 केक बनाई है, एक हम ऑर्फिनेज में काटेंगे और एक हम घर आकर वीडियो कॉल करेंगे आपको, तब काटेंगे। ओके पापा अभी फिलहाल इतना, फिर बाद में बात करती हूँ, बाय। आज 1 महीने बाद आपको चिट्ठी लिखने का फिर से मन कर रहा है पापा। उस ऑर्फिनेज की बच्चियों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन लोगों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, एक प्रेयर भी की थी।

0: कि हमने उनके साथ बैठकर खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आपके साथ वीडियो कॉल पर बात करनी थी तो वो एक्साइटमेंट भी था। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, हमारा ड्राइंग रूम भी सजा हुआ था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा था अचानक। अरे मम्मा तो मेरे साथ गई थी, ये सब पीछे से किया किसने? और तभी सरप्राइजिंगली आप बाहर निकले थे, आपके साथ बहुत सारे आर्मी वाले अंकल भी आए थे। पापा अपना वो बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती, मम्मा भी मेरा बहुत ध्यान रखती, लेकिन आपके आने से ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, एक अधूरापन खत्म हो जाता है। आप सबने कितना सुंदर डांस किया था, हम
1: Happy
0: सब कितनी मस्ती कर रहे थे ना, कितना अच्छा लगा था हमें उस
2: birthday to you।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेल, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू।

0: और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू,
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: सच्ची पापा, आई एम द लकीस्ट डॉटर। आप दोनों मुझे कितना प्यार करते हैं ना। एक दिन की छुट्टी मिली थी, आप मेरे लिए घर आ गए थे। कितना प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए, और आप लोगों ने मेरी गलती के लिए मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। याद है एक बार दादी हुई थी, उस दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, मैं मुंह फुलाकर बैठ गई थी, और तब आपने मजेदार एक्टिंग करते हुए गाना सुनाया था, आलू कुचालू कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। मैं खिलखिलाकर हंस दी थी, लेकिन भेल खाने की जिद पकड़ ली। दादी ने कहा, विश्वा बड़ा सिर चढ़ा लिया तुमने बिटिया को, इसे दूसरे घर जाना, इतने नखरे ना चलने वाले। और तब आपने कहा था, आसमान में उड़ेगी, आसमान की परी है हमारी बिट्टू, शादी करेगी तो करेगी, ना मन होगा तो ना करेगी। अरे अम्मा गुस्सा छोड़ो, चलो मोटर में बैठ के चौपाटी जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे। हम चौपाटी से भेल खाकर आ गए थे, बहुत मस्ती की थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं 13 साल की हो चुकी थी। दादी की इस बात ने मुझे बुआ की बात याद दिला दी जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी। भैया भाभी, आपके तो बस एक बेटी है, कैसे वंश चलेगा आप लोगों का। तब आपने कहा था, जिज्जी यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है, आप देख लेना जिज्जी, मेरे जैसे देश की सेवा करेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी मेरा। इसका नाम मानविका है, लेकिन हम मन्नु कहते हैं, लक्ष्मीबाई का नाम मनु था ना। हमारी मन्नु हमारी राजकुमारी है, हमारा राजकुमार भी। मैंने उदास होते हुए पूछा, पापा मैं आप लोग का बेटा बन के पैदा क्यों नहीं हुई। बुआ कह रही थी ना, बेटे से वंश का नाम चलता है। तब आप

0: उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाकर नैनी वाली काकी के बेटे के बारे में बताया था। कितनी मन्नत के बाद उनके घर चार बेटियों के बाद बेटा हुआ था। लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि उसने घर ही बिकवा दिया। पापा, आपने मुझे आर्मी में जा रही लड़कियों के बारे में बताया, तो मम्मा ने मुझे वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें लड़कियों ने लड़कों को एजुकेशन में पीछे छोड़ दिया था। माँ ने अपनी एक कविता की लाइन के साथ मुझे गले लगाकर कहा था, बेटी मेरी, मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है। अपने आगोश में समाते हुए आपने मुझे कहा था, मेरा अभिमान है मेरी बेटी। कितना प्यार किया था।
1: तुझे

मैंने आपको सल्यूट करते हुए कहा था, पापा आपकी तरह मैं भी देश की सेवा करूंगी। अगले हफ्ते आपको फ्रंट पर जाना था, 3 साल बाद आप घर आने वाले थे। जब आप आए

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2026 के उद्घाटन में भाग लिया। अमृत उद्यान आम जनता के लिए रविवार से अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के चमोली में एक जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंग ढहने की घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में प्रवासी भारतीयों के योगदान, बलिदान और यशोगाथा को समर्पित प्रवासी सेनानी वीथि का लोकार्पण और अवलोकन किया। और आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा, जिसके चलते सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार का प्रसारण 7:10 के स्थान पर 6:45 से किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की है।

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शिवांगी तिवारी। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, साथ ही आप सभी के मनोरंजन के लिए होंगे गीत संगीत और आप सभी की जानकारी के लिए होगी वार्ता। आइए शुरुआत करते हैं पहली महत्वपूर्ण चर्चा से। दोस्तों, आज हम बात करते हैं साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा की। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारे काम को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। साइबर अपराध वो अपराध हैं जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग करके लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। आज फर्जी कॉल, ओटीपी और बैंक डिटेल मांगकर ठगी, फिशिंग लिंक भेजना, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना, क्यूआर कोड स्कैन करवाकर पैसे निकालना, फर्जी नौकरी और लोन के नाम पर ठगी और

डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तरीके सामने आ रहे हैं। इन अपराधों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ना ही किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए ऐप डाउनलोड करें। हमेशा मजबूत पासवर्ड रखें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें और अपने मोबाइल और कंप्यूटर को समय समय पर अपडेट करते रहें। यदि आपके साथ साइबर ठगी हो जाए तो घबराएं नहीं, सबसे पहले अपने बैंक को तुरंत सूचित करें ताकि लेन देन रोका जा सके। इसके साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर 1930 पर तुरंत शिकायत करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। समय पर की गई शिकायत से नुकसान कम होने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, साइबर अपराधियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है जागरूकता और सतर्कता। इंटरनेट का उपयोग समझदारी से करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाएं। तो अभी हम बात कर रहे थे साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा। आइए दोस्तों, अब आपको सुनवा देते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल है कि मानता नहीं फिल्म से प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की। संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने और गीतकार थे फैज अनवर। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में ले चलते हैं एक और महत्वपूर्ण चर्चा की ओर, जिसका विषय है ड्रग्स एवं नशे का सेवन ना करें। साथियों, आज के समय में नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। कई बार लोग शौक, दोस्तों के दबाव, तनाव, फैशन या जिज्ञासा के कारण नशे की शुरुआत करते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि एक बार शुरू हुई ये आदत धीरे-धीरे लत बन जाती है और फिर उसी लत से बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता है। नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन, परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सोचने समझने की क्षमता खोने लगता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, पढ़ाई और नौकरी पर असर पड़ता है, परिवार में तनाव बढ़ता है और आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। कई बार नशे की लत व्यक्ति को चोरी, हिंसा और अन्य अपराधों की ओर भी धकेल देती है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि आज हमारे युवा इस जाल में फंसते जा रहे हैं। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यदि वही नशे के शिकार हो जाएं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए युवाओं को सही मार्गदर्शन, सकारात्मक वातावरण और अच्छे मित्रों का साथ मिलना बहुत आवश्यक है। साथियों, नशे से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है जागरूकता, आत्मविश्वास और सही संगति। हमें अपने जीवन में खेल, योग, व्यायाम, संगीत, पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों को अपनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसे नशे का सहारा लेने के बजाय अपने परिवार, मित्रों, शिक्षकों या विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए। यदि आपके पास कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो उसका मजाक उड़ाना या उसे अकेला छोड़ने के बजाय उसका सहयोग करें, उसे उपचार और पुनर्वास के लिए प्रेरित करें। सही समय पर मिला सहयोग किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए हम आज ही संकल्प लें कि हम स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे और अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम था ड्रग्स एवं नशे का सेवन न करें। आइए कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में ले चलते हैं आपको महत्वपूर्ण वार्ता की ओर, जिसका विषय है इंजीनियरिंग का विकास पहिए से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। वार्ताकार हैं परिजात द्विवेदी।
1: इंजीनियरिंग का विकास पहिए से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। पहिए घूमने से बहुत पहले, पहली मशीन बनने से बहुत पहले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अस्तित्व में आने से हजारों साल पहले एक ऐसी चीज जन्म ले चुकी थी जिसे मानव सभ्यता की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उसका नाम था इंजीनियरिंग। यह सिर्फ मशीन बनाने की कला नहीं बल्कि हर समस्या का समाधान खोजने की सोच है, जिसने इंसान को गुफाओं से निकालकर गगनचुम्बी इमारतों तक, बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक और साधारण औजारों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचा दिया। लेकिन आखिर इस अद्भुत सफर की शुरुआत कहां से हुई? कल्पना कीजिए, आज से लगभग 33 लाख वर्ष पहले की पृथ्वी, चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और हर पल जीवन के लिए संघर्ष। उस समय ना कोई शहर था, ना सड़क, ना कोई मशीन और ना कोई आधुनिक तकनीक। इंसान के पास केवल उसका दिमाग और जीवित रहने की इच्छा थी। इसी संघर्ष के बीच उसने समस्याओं का समाधान ढूंढने शुरू किए और यहीं से इंजीनियरिंग की असली कहानी शुरू हुई। पुरातात्विक खोजों के अनुसार लगभग 33 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को तराश कर दुनिया के सबसे शुरुआती औजार बनाए। यही मानव इतिहास के पहले इंजीनियरिंग डिजाइन थे। फिर इंसान ने आग पर नियंत्रण करना सीखा, जिससे भोजन पकाना, ठंडे क्षेत्रों में रहना और धातुओं के उपयोग का मार्ग खुला। इसके बाद लगभग 10,000 वर्ष पहले कृषि क्रांति आई। अब स्थायी बस्तियां बसने लगीं और नहरों, जलाशयों, भंडारण व्यवस्था तथा मजबूत घरों की व्यवस्था ने इंजीनियरिंग को नई दिशा दी। लेकिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया लगभग 3500 ईसा पूर्व, जब मेसोपोटामिया में पहिए का आविष्कार हुआ। शुरुआत में इसका उपयोग कुम्हार के चाक के रूप में हुआ, लेकिन बाद में यही तकनीक परिवहन का आधार बन गई। पहिए ने व्यापार को गति दी, दूर दराज की सभ्यताओं को जोड़ा और साबित कर दिया कि सही तकनीक पूरी दुनिया बदल सकती है। यही सिद्धांत आगे चलकर रथों, जलचक्कियों, भाप के इंजनों, कारों, ट्रेनों और आज के अंतरिक्ष यानों तक पहुंचा। पहिए के बाद दुनिया की महान सभ्यता ने इंजीनियरिंग को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। प्राचीन मिश्रों ने लगभग 2600 ईसा पूर्व गीजा की महान पिरामिड बनाई, जिसने करीब 23 लाख विशाल पत्थरों का उपयोग हुआ। 4500 वर्ष के बाद भी इसका खड़ा रहना उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। इसी दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी सभ्यता ने सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, भूमिगत जल निकाश और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीक से दुनिया को चौंका दिया। वहीं रोमन साम्राज्य ने मजबूत सड़कें, पुल और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर आधारित एक्वाडक्ट्स बनाकर शहरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाया। दूसरी ओर चीन की महान दीवान ने दिखाया कि सीमित संसाधन के बावजूद विशाल इंजीनियरिंग परियोजना भी संभव है। तब तक इंसान पत्थर, लकड़ी और अपने श्रम के सहारे दुनिया बदल रहा था, लेकिन जल्द ही एक ऐसी क्रांति आने वाली थी जो इंजीनियरिंग को पूरी तरह बदल देगी। मशीनें इंसानी ताकत की जगह लेगी, कारखाने दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल देंगे और मानव सभ्यता औद्योगिक युग में प्रवेश करेंगे। 18वीं शताब्दी में आई औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए ही बदल दी। इससे पहले अधिकांश काम इंसानों और जानवरों की ताकत पर निर्भर थे, लेकिन भाप के इंजन ने पहली बार मशीनों को उत्पादन का मुख्य साधन बना दिया। बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे, उत्पादन कई गुना बढ़ गया और इंजीनियरिंग नए युग में प्रवेश कर गई। इसी दौर में रेल मार्ग का विस्तार हुआ, विशाल पुल बने और स्टील के निर्माण ने दुनिया में क्रांति ला दी। अब इंजीनियरिंग केवल जीवन को आसान नहीं बना रही थी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति दे रही थी। इसके बाद आया बिजली का युग, जिसने उद्योग और मानव जीवन दोनों को नई ऊर्जा दी। बिजली से कारखाने अधिक तेजी से चलने लगे, शहर रात में भी रोशन रहने लगे और टेलीग्राफ, टेलीफोन तथा रेडियो जैसी तकनीक ने संचार का स्वरूप ही बदल दिया। अब संदेश जो पहले दिनों या महीनों में पहुंचते थे, अब कुछ ही मिनटों में दुनिया के दूसरे कोनों तक पहुंचने लगे। इंजीनियरिंग अब केवल निर्माण तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम बन गई। 20वीं शताब्दी में इंजीनियरिंग ने नई ऊंचाइयां हासिल की। हवाई जहाजों ने लंबी दूरियों को घंटों में बदल दिया, विशाल जहाजों ने वैश्विक व्यापार को नई गति दी और रॉकेट ने इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। 1969 में मानव का चंद्रमा पर कदम रखना केवल अंतरिक्ष विज्ञान की सफलता नहीं थी, बल्कि मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। इसके बाद उपग्रहों ने संचार, मौसम पूर्वानुमान, GPS और इंटरनेट जैसी तकनीकों को संभव बनाया, जिसके बिना आज दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 21वीं सदी में इंजीनियरिंग ने एक और ऐतिहासिक मोड़ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मशीन केवल इंसानों के निर्देश का पालन नहीं करती, बल्कि डेटा से सीखती हैं, पैटर्न पहचानती हैं और निर्णय लेने में भी सक्षम होती जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में रोग की पहचान, कृषि में फसल की विश्लेषण, उद्योग में स्मार्ट रोबोट, स्वचालित वाहन और वैज्ञानिक अनुसंधान, लगभग हर क्षेत्र में AI नई संभावनाएं खोल रहा है। लेकिन इसकी रोजगार, डेटा सुरक्षा और नैतिकता जैसे नए सवाल भी सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि भविष्य की इंजीनियरिंग केवल नई तकनीक बनाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि तकनीक मानवता के हित में काम करे। अगर इस पूरी यात्रा पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखाई देती है, इंजीनियरिंग सिर्फ कभी मशीन बनाने का नाम नहीं रहा, यह उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास है जिसने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया। पत्थर के पहले औजार से शुरू हुई यह यात्रा पहिए, पिरामिडों, औद्योगिक क्रांति, बिजली, कंप्यूटर और आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। हर युग ने यह साबित किया है, जब इंसान अपनी कल्पना को विज्ञान और तकनीक से जोड़ता है, तब हर असंभव चीज भी संभव हो जाती है। और शायद आने वाले वर्षों में जब इंसान मंगल ग्रह पर स्थायी बस्तियां बनाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग नई खोजों को गति देगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सबसे बड़ी सहयोगी बनेगी। तब भी इतिहास यही कहेगा कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे विचार से हुई थी, क्योंकि तकनीक बदलती रहती है लेकिन इंजीनियरिंग की सोच कभी पुरानी नहीं होती। यह सोच मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत थी, है और रहेगी।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था इंजीनियरिंग का विकास पहिए से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। वार्ताकार थे परिजात द्विवेदी। साथियों, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मानवाधिकार आखिर है क्या। मानवाधिकार के बेमूल अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। इनमें जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय पाने का अधिकार शामिल है। इन अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र का कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मानवाधिकारों की रक्षा करना, उनके उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना और सरकार का आवश्यक सुझाव देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष समानता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे व्यक्ति हो सकते हैं एवं इसके अन्य सदस्य न्यायिक और मानवाधिकार क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, आयोग के प्रमुख कार्यों में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, जेलों एवं सुधार गृहों का निरीक्षण करना, मानवाधिकारों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करना, सरकार को आवश्यक सुझाव देना और समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना शामिल है। आयोग अपने स्तर पर भी किसी गंभीर मामले का संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ पुलिस अत्याचार, हिरासत में मृत्यु, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों का हनन होता है तो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। आयोग मामले की जांच कर संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांग सकता है और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक अनुशंसाएं कर सकता है। हालांकि आयोग की एक सीमा भी है, ये सीधे दंड नहीं देता बल्कि अपनी जांच के आधार पर सरकार और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए सिफारिश करता है। फिर भी इसकी सिफारिशें प्रशासनिक जवाबदेही और मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के समय में मानवाधिकारों की रक्षा केवल सरकार और आयोग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव, हिंसा, शोषण और अन्याय मानवाधिकार के विरुद्ध है। तो अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। अब सुनवा देते हैं आप सभी को मिस्टर इंडिया फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मिस्टर इंडिया फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में ले चलते हैं हम आपको आज के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना की ओर। UPBSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, एस्टेट मैनेजर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट। पदों की संख्या 37। शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार भिन्न भिन्न है। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और साथियों, आपसे बात करते करते घड़ी की ओर ध्यान ही नहीं गया और घड़ी हमें इशारा कर रही है आप सभी से अनुमति लेने की ओर। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी मित्र शिवांगी तिवारी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वंदे मातरम के 150 वर्ष से हर घर तिरंगा राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओ, आज शाम 10 बजे सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष काव्य गोष्ठी, स्वतंत्रता की काव्यांजलि। शाम 7 बजे सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। फिल्म संगीत, फिल्म संगीत में बॉर्डर फिल्म का गीत सुनिए। स्वर शंकर महादेवन, सोनाली राठौड़ और साथियों का। स्वर डायलॉग ओपी दत्ता का। संगीत अनु मलिक का और गीत जावेद अख्तर का। फिल्म है बॉर्डर।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो।

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
7: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
6: क्या, कैसे?
7: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
6: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
7: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
8: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अब बॉर्डर 2 फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज में। गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

और लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म स्वदेश से। इसे गाया है ए आर रहमान ने और गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज शाम 7 बजे सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6 बजे। शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा रविकांत श्रीवास्तव के गाए लोकगीत। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आपके मैसेज हमारे गीत। रात 10 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष काव्य गोष्ठी स्वतंत्रता की काव्यांजलि और रात 10:30 पर मन भावन। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब आपको बताते हैं कल के कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7 बजे सुनिएगा लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

कल सुबह 9 बजे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संबोधन का सजीव प्रसारण

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों बाद ठीक 5:58 पर न्यूज हेडलाइंस हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
2: है, उसको अपना के

में, कॉमर्स में, साइंस में, या जो भी प्रोफेशन आप चुनते हैं, हर एक प्रोफेशन में शीर्ष पे जाने का अवसर रहता है। अगर आप मेहनत करेंगे, शीर्ष पे जाएंगे तो आपको रिकग्निशन

मिलेगा। कोई एक प्रोफेशन या एक क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र से बेहतर नहीं है। हर एक क्षेत्र को अपना के किसी भी क्षेत्र को जो आपने चुन लिया उसमें आप मेहनत करेंगे तो शीर्ष पे पहुंच सकते हैं और देश की तरक्की और देश को विकसित बनाने में आप योगदान कर सकते हैं। इसलिए पूरे मन से देश के सम्मान

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
1: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
0: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
1: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
0: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
0: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
0: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
0: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
0: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
1: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
0: जी।
1: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
0: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
0: जी।
1: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
0: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
1: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
0: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
1: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा

0: फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था।
1: जी।
0: आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
1: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
1: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
3: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
4: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्ट्री पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
3: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्ट्री की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
4: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं।
3: जैसे तुम्हारी मर्जी।
2: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया।

0: ये डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम ये हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
1: अरे भाई कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
2: जी मैं दादा भाई हूँ।
3: दादा भाई?
2: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियाँ स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
3: अरे लड़कियाँ पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
1: अरे लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
4: अरे जाओ कुछ और काम करो।
2: सुनिए सुनिए आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
0: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगीं। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
5: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
0: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
5: मेरे साथियों साथियों हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
4: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
5: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
6: लेकिन वो कैसे?
5: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
6: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
3: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
6: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
5: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाए जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
0: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया।

परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में यह पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरोजी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी, क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूं? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ।
6: हाँ।
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े

0: हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
1: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के चार आने का ही सवाल है।
0: सवाल चार आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
1: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
0: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
1: ठीक है,
0: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
1: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
0: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
1: क्या?
0: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करे।
1: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
0: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
1: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
2: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
3: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
2: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
4: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
5: हाँ भाई इरादा तो पक्का है।
4: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
5: हाँ काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी, और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
4: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
5: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो वो आ ही गए।
0: क्यों दिनेश भाई कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
5: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
0: नहीं भाई मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
5: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
0: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस

0: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
1: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
2: मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े-बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
3: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
2: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
3: नहीं।
2: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
3: नहीं।
2: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
3: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
1: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी, और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
4: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है।
1: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की

0: इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु चेतना
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में पहले सुनिए रविकांत श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पल।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धार में भोजशाला परिसर के पास निर्धारित स्थल पर तीसरे शुक्रवार जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित होगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर इसका हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समारोह में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, जिसके बाद राष्ट्रगान होगा। भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। समारोह में करीब 2,500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक तथा 5,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए 15,000 जवान और 1,000 CCTV कैमरे तैनात किए गए हैं। देश भर में 343 स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। समारोह में पुलिस, SAF, CISF, जेल गार्ड, होमगार्ड, NCC और स्काउट गाइड्स की संयुक्त परेड होगी और मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुख्य समारोह से पहले मुख्यमंत्री शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने आम जनता की शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की। इसके बाद तलून स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर OPD, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा महिलाओं और वृद्धजनों के उपचार की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद बोरलाय के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में जिले के पहले मैथ्स पार्क का उद्घाटन किया और छात्राओं से संवाद कर गणित को रोचक और प्रयोगात्मक तरीके से सीखने के अनुभव की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब परिवारों को राशन के लिए मिलने वाली सहायता सीधे और सुरक्षित तरीके से मिलेगी और इसका उपयोग राशन तथा जरूरी खाद्य सामग्री की खरीद में ही सुनिश्चित होगा।
2: एक तरफ काम धंधा रोजगार से जोड़ के गरीबी दूर करेंगे और दूसरी तरफ जो सबसे पीछे और नीचे हैं उनको गरीब कल्याण अन्न जैसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं में भी सहायता देंगे ताकि थाली में भोजन की कमी ना

0: रहे और जो पैसा भोजन में खर्च होता था वो बचे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरे कामों में काम आए।
1: इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्री निमूबेन बंभड़िया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर आयोजित विभिन्न तिरंगा यात्राओं में शामिल होकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक देश को विकसित और अग्रणी राष्ट्र बनाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कोलार रोड पर कर्मश्री की तिरंगा यात्रा को रवाना किया और प्रतिभागियों के साथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने शौर्य स्मारक में विभाजन विभीषिका दिवस पर अमर शहीदों को नमन किया और प्रवासी सेनानी वीथि का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन की पीड़ा से सीख लेते हुए देश की एकता, भाईचारे और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि भोपाल को 6 जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्वरूप दिया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस की तिरंगा बाइक रैली भी रवाना की गई। इस अवसर पर कटनी में बारिश के बीच भव्य तिरंगा यात्रा हुई। वहीं शहडोल में 1 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई, जबकि सीहोर में भी रैलियों का आयोजन किया गया। खंडवा में तैराकों ने अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली। भोपाल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज केंद्रीय संचार ब्यूरो ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स में संगोष्ठी का आयोजन किया। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के निदेशक डॉ. मुकेश मिश्रा ने कहा कि विभाजन की विभीषिका को याद रखना जरूरी है ताकि देश नए बंटवारे का शिकार न हो। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक मनीष गौतम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस आयोजन में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी, प्रश्न मंच, चित्रकला, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन के कारण आकाशवाणी का कल सुबह का समाचार बुलेटिन अपने निर्धारित समय सुबह 7:10 के स्थान पर सुबह 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। धार में भोजशाला परिसर के पास सर्वे नंबर 612 पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत निर्धारित इस स्थल पर लगातार तीसरे शुक्रवार नमाज हुई। प्रशासन ने नमाज स्थल के आसपास बैरिकेडिंग और पर्दे लगाए थे तथा पुलिस बल तैनात किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।
2: माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश तक एक निर्धारित स्थल पर नमाज पढ़ाने को लेकर पिछले शुक्रवार की भर्ती इस बार भी प्रण नंबर 612 पर नमाज अदा की गई। साथ ही जो पुलिस फोर्स है, लगभग अभी हमें 2 कंपनियां मिली थी और 800 से 900 का बल नमाज के लिए हमें उपलब्ध हुआ था। जिले का बल मिलाकर हम लोगों ने सेंसिटिव एरिया के साथ साथ में जो CCTV के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। इस प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में नहीं है।
1: अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून के सक्रिय सिस्टम के चलते पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में 4 इंच या उससे अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 12% कम बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्थानीय सांसद हिमाद्री सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर पात्र किसानों तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिला प्रशासन और जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से आधार ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स के लिए मास्टर ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा के तामिया की जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिंदी में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के खंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। रायसेन में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भू अर्जन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की। सीहोर जिले के ग्राम ब्रिजेश नगर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया और छतरपुर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर मृणाल मीणा ने शासकीय हाईस्कूल गढ़ोही का निरीक्षण किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के 3 विद्युत ग्रहों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धार में भोजशाला परिसर के पास निर्धारित स्थल पर तीसरे शुक्रवार जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 6:45 पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त 6:55 हुए हैं। सुनिए देशभक्ति गीत ऋचा वाजपेयी की आवाज़ में।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर पर। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: करनाल सा। न्याय सबके लिए, कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा।

देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी, फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा

और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्यरूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलबत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार

मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुकान नेलते मिरु चने राग बया दाया हाया गे गुजुकान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65

प्रतिशत लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है।
आप

हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है। और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपने गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदी पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्योलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए, देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sportspersons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities, and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soldiers in the three armed forces, Armed Police Forces and all police personnel for their unwavering dedication to duty. I also praise the Indian diaspora and the officials serving in our embassies who enhance India's prestige and honor on the global stage. My dear fellow citizens, we are moving ahead towards building Viksit Bharat by the centenary year of our independence in 2047. Guided by the spirit of Antodaya, it is our resolve to ensure that the fruits of development reach every individual. Embracing our rich heritage and the ideals of the freedom movement, we march ahead on the path of modern development. The Veda Vakya, Vayam Rashtre Jagrayamo.
inspire us to always remain

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आज मैं हूं आपके साथ नीतिका वर्मा।

उत्तर में गिरिराज का पहरा, तीन तरफ है सागर गहरा, एक छोर है कश्मीर तो दूजा कन्याकुमारी है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 8:15 हुए हैं। फिल्म संगीत। श्रोताओं, मिट्टी की खुशबू में बसता है हिंदुस्तान हमारा, इसके हर कण पर न्यौछावर हो जाए जीवन हमारा। आइए सुनते हैं समूह स्वर में खेले हम जी जान से इस फिल्म का गीत, संगीत सोहेल सेन का।

0: Sen Loika.
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत।

मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

तिरंगा केवल तीन रंगों का झंडा नहीं, हमारी आन बान और शान है। इसके सम्मान में अपना हर कर्म देश के नाम करना ही सच्ची देशभक्ति है। लीजिए अब सुनिए होटल मुंबई फिल्म का गीत, मिथुन बी प्राक और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, संगीत मिथुन का।

तिरंगा जब आसमान में लहराता है तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आइए इसकी शान को हमेशा अपने कर्मों में बनाए रखें। रंग दे बसंती फिल्म का गीत है दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज, संगीत ए आर रहमान का।

आइए फिर से दिल में देश प्रेम की लौ जलाएं, अपने भारत को विश्व में सबसे सुंदर और मजबूत बनाएं। आइए सुनते हैं अगला गीत सुखविंदर सिंह और अनुप्रिया की आवाज में, संगीत सुजॉय बोस का, फिल्म है 72 आवर्स।

هر صبح و شام. अग्नि पथ का हूँ पथिक मैं चलता हूँ हर सुबह हो शाम खलते सुबह.

देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ना नहीं, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना भी है। एक जिम्मेदार नागरिक बनकर हम रोज भारत को मजबूत बना सकते हैं। लीजिए सुनिए A.R. रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाज में समीर का गीत, संगीत A.R. रहमान का, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर 8:45 पर समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते

0: हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या

0: बिरला पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

0: उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
1: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
2: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्ण रेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गाँव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस वक्त रात के 9:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म हम है हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, जिसे गाया है मुकेश और साथियों ने। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

अगला गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है कर्मा।

अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद अजीज, माफ कीजिएगा, अगला गीत लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रिया मजुमदार की आवाज में। संगीत दिया है मदन मोहन ने और गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और फिल्म का नाम है वीर ज़ारा।

अगला गीत सोनू निगम रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बॉर्डर। जावेद अख्तर के लिखे हुए गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में सिकंदर आजम फिल्म का गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सुनिए विशेष काव्य गोष्ठी स्वतंत्रता की काव्यांजलि। प्रतिभागी हैं श्री सोहन परोहा सलिल, श्री शिरीष गोंटिया, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा पीयूष। संचालन किया है श्री मनीष तिवारी ने।
1: देश की आज़ादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जबलपुर आकाशवाणी द्वारा राष्ट्र की आराधना करने, अमर शहीदों को आदर भाव सहित नमन करने, देशभक्ति से परिपूर्ण काव्य गोष्ठी में आज हमारे बीच देश के सुप्रसिद्ध कवियों में भाई सोहन सलील, श्रीश गौटिया जी, युवा कवि डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी और मैं स्वयं मनीष तिवारी उपस्थित हूँ। अपनी अपनी रचनाएं हम राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण आप तक पहुँचाएंगे। मुझे ज्ञानवती सक्सेना जी की चार पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए लिखा कि देख उत्साह सिपाही का गगन घूम गया, देख उत्साह सिपाही का गगन घूम गया, रक्त का दान निरखने को पवन झूम गया, रात भर चांद सितारों में यही चर्चा थी, एक फरिश्ता भी शहीदों का कफन चूम गया।
2: वाह वाह वाह।
1: हमारे बीच युवा कवि डॉक्टर प्रशांत मिश्र जी हैं। मैं प्रशांत भाई से आग्रह करता हूं कि वे राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण अपनी समर्थ रचनाएं आप तक पहुँचाएँ।
3: स्वागत प्रशांत।
1: स्वागत है भाई प्रशांत का।
2: माँ भारती को नमन करता हूँ, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पढ़ना चाहता हूं कि अपने देश में केवल अपने लोगों

0: की आबादी मिली, अपने देश में केवल अपने लोगों की आबादी मिली, लाखों वीर हुए शहीद, तो जाके आजादी मिली।
1: क्या बात।
0: यह राष्ट्र पल्लवित पुष्पित हो, हरदम इसमें रानाई हो, आप सभी को आजादी की लख लख बार बधाई हो।
2: बहुत बढ़िया प्रशांत, वाह।
0: तो आकाशवाणी के सभी देशभक्त श्रोताओं, आइए संकल्प करते हैं कि शहादत मेरे हर अरमान दे देंगे वतन के वास्ते, शहादत मेरे हर अरमान दे देंगे वतन के वास्ते, तिलांजलि व्यक्तिगत अभिमान दे देंगे वतन के वास्ते, और हमें जितनी मोहब्बत खुद से है, इस मुल्क से भी है, जरूरत पड़ गई तो जान दे देंगे वतन के वास्ते।
2: वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रशांत।
0: तिरंगे पर मैंने एक कविता लिखी है, तिरंगा हमसे क्या कहना चाहता है, उसके रंगों को आधार बनाकर मैं पढ़ना चाहता हूँ।
2: स्वागत है प्रशांत भाई।
0: लहर लहर लहराता तिरंगा, लहर

0: आसमान
1: वाह
0: है,
1: वाह वाह,
0: लहर लहर लहराता तिरंगा देश की पहचान है। सबसे ऊपर रंग केसरी शौर्य का परिचायक है,
1: बहुत बढ़िया,
0: मध्य में श्वेत रंग भारत में शांति का परिचायक है, और हरा रंग कहता है यहाँ समृद्ध खेत खलिहान है। लहर लहर लहराता तिरंगा देश की पहचान है। और क्या कहता है तिरंगा झंडा?
1: हाँ भैया स्वागत है।
0: केसरिया कहता है तुम आजाद भगत से महान बनो, श्वेत सिखाता मदर टेरेसा गांधी सा इंसान बनो, धर्म

0: बहुत
1: लहर
0: बढ़िया बहुत।
1: लहर लहराता तिरंगा भारत की पहचान है। एक गीत, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है।
0: स्वागत स्वागत है प्रशांत
1: आजादी के लिए जो
0: स्वागत।
1: लोग अपना प्राणों का बलिदान दिए उन सभी शहीदों को समर्पित करता हूं,
0: स्वागत स्वागत।
1: सुनिएगा। जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अब विश्व गुरु कहलाता है, जिसका परचम दुनिया के कोने कोने में लहराता है, जिस देश के वीरों का वंदन ये सारी दुनिया करती है, जिस देश के वीरों का वंदन ये सारी
0: क्या बात है
1: दुनिया
0: वाह
1: करती
0: वाह।
1: है, ये राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की
0: धरती
1: धरती
0: है
1: है।
0: वाह वाह वाह।
1: राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की धरती है। कुछ भारत माँ के रखवाले जो अर्ध समर में अटक गए, अपने बेबाक पराक्रम से ब्रिटिश सरकार को खटक गए।
0: वाह वाह
1: कुछ
0: क्या बात है
1: पहलवान थे
0: वाह।
1: भारत के जो बड़े बड़ों को पटक गए,
0: बहुत
1: और जब
0: बढ़िया प्रशांत
1: वक्त पड़ा तो हंसते हंसते जाकर
0: क्या बात
1: फांसी लटक
0: वाह
1: गए।
0: वाह।
1: ऐसे ऐसे वीरों की गौरव गाथा दुनिया शान से पढ़ती है, ये राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की
0: धरती
1: धरती
0: है
1: है,
0: बहुत बढ़िया
1: भगत
0: प्रशांत
1: सिंह
0: वाह
1: की
0: वाह
1: धरती है।
0: वाह क्या बात है
1: एक चंद्रशेखर आजाद थे जो
0: हाँ।
1: अपनी नजरों में गिरे नहीं, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से कोई समझौता करे नहीं, जब अंग्रेजों ने घेर लिया वे फिर भी उनसे डरे नहीं, खुद ही खुद को मार लिया अंग्रेजों के हाथों मरे
0: मरे मरे
1: नहीं।
0: नहीं
1: क्या कहें,
0: वाह
1: तो ऐसे ऐसे वीर जाबाजों को ये मिट

0: हाँ
1: है ये राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की धरती है, भगत सिंह की धरती है। धोती ओढ़ के गांधी ने दुनिया को शांति संदेश दिया, बंदूक उठा के सुभाष चंद्र ने आक्रामक परिवेश दिया, मंगल पांडे ने अंग्रेजों पे पहली गोली चलाई थी और झांसी वाली रानी ने भी तो तलवार उठाई
0: उठाई, क्या
1: थी।
0: बात है, वाह।
1: तो लाखों लाखों वीरों की आहुतियां स्वतंत्रता यज्ञ को पूरा करती हैं, ये राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की धरती
0: वाह
1: है,
0: प्रशांत,
1: ये
0: वाह
1: राजगुरु सुखदेव
0: वाह,
1: आजाद और भगत
0: बहुत
1: सिंह
0: बहुत
1: की
0: बढ़िया।
1: धरती है, भगत सिंह की धरती है। भारत माता की जय।
0: देश के अमर शहीदों को नमन करते हुए एक गीत भाई प्रशांत ने सुनाया, कुछ मुक्तक भी सुनाए। राष्ट्रभक्ति का ज्वार आज भी देश के जन जन में व्याप्त है, देश के कण कण में व्याप्त है। हम सब भारत माता के सपूत हैं और देश की रक्षा करने के लिए जब जिस स्तर पर जिसकी आवश्यकता पड़ेगी सब तैयार हैं। हम कवि हैं, लेखनी से देश की सेवा कर रहे हैं, कलम से देश की सेवा कर रहे हैं और राष्ट्र को जगाने का काम कर रहे हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुंवर बेचैन जी ने कहीं लिखा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए,
1: क्या
0: जिंदगी ही हवन है वतन के लिए,
1: बात,
0: कह गई फांसियों से फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए।
1: वाह क्या वाह
0: तो
1: वाह,
0: वतन को नमन करते हुए आज की यह काव्य संध्या में मैं अगला पुष्प अर्पित करना चाहता हूँ और जबलपुर शहर के बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ और समर्थ कवि जिन्होंने साहित्य की हर विधा में लिखा है उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनका नाम है आदरणीय शिरीष गौटिया जी। शिरीष जी आएँ और अपनी रचनाएँ आप तक पहुँचाएँ।
1: स्वागत श्री जी।
2: आकाशवाणी के सुधी श्रोताओं को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए अपनी रचना का आरंभ करता हूँ। शीर्षक है
0: स्वागत है भैया,
2: एक दीपक देहरी पर रखना।
0: वाह।
2: वो जो अपनी मातृभूमि पर तिल तिल जलकर होम हो गए,
0: वाह।
2: वो जो अपनी मातृभूमि पर
1: तिल तिल
2: तिल तिल
1: जलकर
2: जलकर होम
1: होम
2: हो
1: हो गए,
2: गए, मतवाले वीरों की खातिर एक दीपक देहरी पर रखना।
1: क्या
0: वाह
1: बात,
0: वाह
1: भैया
0: वाह, बढ़िया।
2: वो जो
0: आवाज है,
2: अपनी
0: वाह।
2: मातृभूमि पर तिल तिल जलकर होम हो गए,
1: क्या कहने से,
2: मत वाले वीरों की खातिर एक दीपक देहरी पर रखना। एक दीपक देहरी पर रखना, वो जो सकरी सी जेलों में शीश उठाए जाग रहे थे,
0: क्या दृश्य,
2: वो जो सकरी सी जेलों में
0: वाह,
2: शीश उठाए जाग रहे थे,
0: वाह।
2: राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने जंगल जंगल भाग रहे थे, वो जो संकरी सी जेलों में शीश उठाए जाग रहे थे, राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने जंगल जंगल भाग रहे थे, जिनके शोणित की धारा से जलियांवाला लाल हुआ था, जिनके अवदानों से ऊंचा भारत माँ का भार
0: क्या
2: हुआ
0: बात है, क्या बात है भाई साहब,
2: जिनके शोणित की धारा
0: वाह
2: से जलियांवाला लाल
0: बहुत
2: हुआ था, जिनके अवदानों से ऊंचा भारत माँ का भाल हुआ
0: बढ़िया,
2: था,
0: क्या बात है, वाह।
2: वो जो जलकर शेष हो गए, भस्म अस्थि अवशेष हो गए,
0: वाह
2: वो जो जलकर शेष हो गए, भस्म अस्थि अवशेष हो गए, खंड खंड तनसे होकर भी, खंड खंड तनसे होकर भी जीवित भारत देश हो गए, ऐसे सच्चे बलिदानों को मन स्मृतियों में अंकित रखना, एक दीपक देहरी पर
0: पर,
2: रखना।
0: वाह क्या बात, वाह वाह वाह,
2: एक दीपक देहरी पर रखना।
0: वाह
2: काला पानी की जेलों में वो जो कोहलू खींच रहे थे,
1: काला पानी
2: काला पानी की जेलों में वो जो कोहलू खींच रहे थे, रक्त श्वेत से तर्पण कर इस पुण्य धरा को सींच रहे थे, काला पानी की जेलों में वो जो कोहलू खींच रहे थे, रक्त श्वेत से तर्पण कर इस पुण्य धरा को सींच रहे थे, वो जो खुद आगे बढ़कर फांसी के फंदे चूम रहे थे, रंग दे बसंती चोला गाकर जो मस्ती में झूम रहे थे, वो जो खुद आगे
0: वाह
2: बढ़कर फांसी के फंदे चूम रहे थे, रंग दे वसंती चोला गाकर जो मस्ती में झूम रहे थे, बरसों से सपना बुनते थे भारत को स्वतंत्र बना दें,
0: क्या बात है,
2: बरसों से सपना बुनते थे भारत
1: भारत
2: को
1: को
2: स्वतंत्र
1: स्वतंत्र
2: बना
1: बना
2: दें, अखिल विश्व को आजादी का यह नूतन अभिमंत्र सुना दें,
0: वाह वाह
2: अवदानों के मुक्ति कलश को खुला ही रखना।

0: कभी न रखना
1: क्या बात है,
0: एक दीपक देहरी
2: पर रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह।
0: पुलवामा के शहीदों पर एक रचना
2: स्वागत है, स्वागत है।
0: वो रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
1: स्वागत।
0: शब्द बौने हो गए अब क्या लिखूं हे वीर तुमको,
1: शब्द बौने हो गए अब क्या लिखूं हे वीर तुमको,
0: शब्द बौने हो गए अब क्या लिखूं हे वीर तुमको, भस्म हो तुम देश के मस्तक का चंदन हो गए।
2: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह।
0: शब्द बौने हो गए अब क्या लिखूं हे वीर तुमको, भस्म हो तुम देश के मस्तक का चंदन हो गए। उस दिवस जब घात देकर छद्म का बारूद बोला, वग्नि ज्वाला देख कर जब धैर्य का भी धैर्य डोला, उस दिवस जब घात देकर छद्म का बारूद बोला, वग्नि ज्वाला देख कर जब धैर्य का भी धैर्य डोला, एक क्षण में मांग के सिंदूर सारे बह गए,
1: क्या बात,
0: एक धमाके से दरक कर स्वप्न सारे ढह गए। एक क्षण में मांग के सिंदूर सारे बह गए, एक धमाके से दरक कर स्वप्न सारे ढह गए, गोद में रोता हुआ अपने शिशु को छोड़कर लौट आने की किसी सच्ची कसम को तोड़कर, गोद में रोता हुआ अपने शिशु को छोड़कर लौट आने की किसी सच्ची कसम को तोड़कर, वीर सारे एक गहन निद्रा में जाके सो गए। शब्द बोने हो गए अब क्या लिखूं हे वीर तुमको,
1: बहुत सुंदर,
0: भस्म हो तुम देश के मस्तक का चंदन हो गए। पीठ पीछे वार करके आज जो इतरा रहे हैं, सत्य का वो सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं। पीठ पीछे वार करके आज जो इतरा रहे हैं, सत्य का वो सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं। स्वप्न में भी जो तुम्हारी वीरता को छू न पाए, वो स्वयं को मारकर ही आज तुमको मार पाए। स्वप्न में भी जो तुम्हारी वीरता को छू न पाए, वो स्वयं को मारकर ही आज तुमको मार पाए। वो न समझे थे, न समझे हैं, न समझेंगे कभी, देह मर जाती है लेकिन आत्मा मरती
2: नहीं। क्या बात है, क्या बात है।
0: वो न समझे थे, न समझे हैं, न समझेंगे कभी, देह मर जाती है लेकिन आत्मा मरती नहीं। रूह बनकर तुम उड़े, रूह बनकर तुम उड़े, आकाशगामी हो गए, शब्द बौने हो गए अब क्या लिखूं हे वीर तुमको, भस्म हो तुम देश के मस्तक का चंदन हो गए।
2: वाह।
0: अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूँ।
2: स्वागत है।
0: तुमने अपने रक्त से ही जीवनी अपनी लिखी है,
1: तुमने अपने
0: रक्त से ही जीवनी अपनी लिखी है, सबसे पहले देश है ये भावना तुम में दिखी है। तुमने अपने रक्त से ही जीवनी अपनी लिखी है, सबसे पहले देश है ये भावना तुम में दिखी है। मांस का एक पिंड बनकर खंड बनकर रह गए, जाते जाते देश के लोगों से ये भी कह गए। मांस का एक पिंड बनकर खंड बनकर रह गए, जाते जाते देश के लोगों से ये भी कह गए। सौंप कर थाती वतन की अब सफर करते हैं हम, गा रही थी रक्त की हर बूंद वंदे माता,
2: वंदे माता, क्या बात।
0: सौंप कर थाती वतन की अब सफर करते हैं हम, गा रही थी रक्त की हर बूंद वंदे मातरम, चूम कर मिट्टी वतन की खुद ही मिट्टी हो गए।
2: क्या बात,
0: शब्द बौने हो गए,
2: क्या बात,
0: क्या लिखूं हे वीर तुमको, भस्म हो तुम देश के मस्तक का चंदन हो गए।
2: वाह वाह वाह,
1: बहुत हो गई,
2: देश के अमर शहीदों के प्रति आदर भाव का ये गीत हमने सुना, और गीत की एक एक पंक्ति पूरा दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर रही थी, वो काला पानी हो या अन्य जगह की घटनाएं हों, पूरा एक संपूर्ण चित्र हमारे सामने श्रीश भाई के इस पावन पवित्र गीत के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित हुआ। आकाशवाणी जबलपुर के इस आयोजन में हम सभी कवि राष्ट्र के सजग प्रहरी बनकर यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारा ये प्रयास है कि जन जन में राष्ट्र चेतना की भावना जागृत हो, लोग वतन के प्रति अपना सब कुर्बान करने के लिए समर्पित रहें। इसी भावभूमि को जीवित रखने के लिए और जीवित करने के लिए हम कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और एक ऐसा कवि, शहीदों पर लिखना तो देशभक्ति है ही, लेकिन देश के संपूर्ण वैभव का चित्रण करना भी देशभक्ति है। कविता कवि के भावनाओं का चित्र होती है, कवि जो देखता है महसूस करता है वो आप तक पहुँचाता है। हमारे बीच में एक कवि बैठा हुआ है, उसने देश प्रेम के भी गीत लिखे हैं, गाँव की माटी के गीत लिखे हैं, देहरी के गीत लिखे हैं, तालाब के गीत लिखे हैं, प्रेम के गीत लिखे हैं। श्रीश भाई की उस बात को मैं थोड़ी सा आगे, आत्मप्रकाश शुक्ल जी की मुझे पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि सारा आलम मुरीद होता है, वक्त खुद चश्मदीद होता है।
0: क्या
2: सारा आलम मुरीद होता है, वक्त खुद चश्मदीद

0: होता है, मौत पेशानी चूम लेती है जब सिपाही शहीद होता
1: क्या
0: है।
1: क्या कहते हैं, वाह वाह।
0: शहीद का हमारे देश में देवता के तुल्य हम दर्जा देते हैं और मानते हैं, सम्मान देते हैं। आइए, मैं सोहन भाई से आग्रह करता हूं कि देश प्रेम के गीत तो सुनाए सुनाए, इसके अलावा जिस मिट्टी से वो जुड़े हुए हैं और जिस मिट्टी का गुणगान उन्होंने अपने गीतों में हमेशा किया है, वो रचना भी आप तक पहुँचाएँ। आदरणीय सोहन सलील जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, उसकी पूर्व संध्या, और आकाशवाणी जबलपुर में आयोजित एक काव्य गोष्ठी में आकाशवाणी जबलपुर के सुनने वाले प्रत्येक श्रोता को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये स्वतंत्रता हमने यूं ही नहीं पाई, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश की तरुणाई ने अपना जीवन बलिदान किया है, और इस स्वतंत्रता की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए आज भी हमारे देश की तरुणाई, हमारा देश का युवा हमारे देश से इतना ही प्यार करता है और तैयार है। मैं अपनी कुछ भावनाएं अपने देश के युवाओं से मैं साझा करना चाहता हूं। देश की तरुणाई का जब सपना देखा जाता है तो मैं अपने सपने से बात करते हुए एक छोटा सा रचना प्रस्तुत कर रहा हूं कि ओ मेरी नव तरुणाई के पहले सपने, ओ मेरी नव तरुणाई के पहले सपने, तूने मेरे जीवन को संचार दिया है, जग समुद्र में दिशाहीन जीवन नैया को बुद्धि बाहुबल साहस की पतवार दिया है।
0: क्या बात,
2: ओ मेरी नव तरुणाई के पहले सपने, तूने मेरे जीवन को संचार दिया है, जग समुद्र में दिशाहीन जीवन नैया को बुद्धि बाहुबल साहस की पतवार दिया है। कि मैं अलसाया अवचेतन सा दिग्भ्रमित हो, मैं अलसाया अवचेतन सा दिग्भ्रमित हो, उम्र डगर को अपलक विस्मित ताक रहा था, मूढ़मती था सुखजल लेकर पास में अपने,
0: क्या बात है,
2: यहाँ वहाँ बस कूप दुखों के झांक रहा था।
3: क्या शब्द,
2: मैं अलसाया अवचेतन सा दिग्भ्रमित हो, उम्र डगर को अपलक विस्मित ताक रहा था, मूढ़मती था सुखजल लेकर पास में अपने, यहाँ वहाँ बस कूप दुखों के झांक रहा था, तूने आकर मुझे जगाकर अनायास ही ज्ञान की तृष्णा का अनुपम उपहार दिया है, वो मेरी नवतरुणाई के पहले सपने, तूने मेरे जीवन को संचार दिया। गीत का एक बंद ये भी देखें कि नयन ज्योति ले इस असार संसार में प्यारे, नयन ज्योति ले इस असार संसार में प्यारे, नेत्रहीन सा संभल संभल कर मैं बढ़ता था, कर्ण कटु भाषा थी मेरे मुख की शोभा, बात बात पर अपनों ही से लड़ पड़ता था।
0: क्या बात है, क्या बात।
2: नयन ज्योति ले इस असार संसार में प्यारे, नेत्रहीन सा संभल संभल कर मैं बढ़ता था, कर्ण कटु भाषा थी मेरे मुख की शोभा, बात बात पर अपनों ही से लड़ पड़ता था, तूने आकर दिखलाया है दर्पण मुझको, और मतवाले जीव को प्रेम का सार दिया है, ओ मेरी नवतरुणाई के पहले सपने, तूने मेरे जीवन को संचार दिया है।
3: बहुत बढ़िया।
2: और इसका अंतिम बंद देखिए,
3: बहुत बढ़िया,
2: कि तेरी बात मानकर बढ़े कदम अब मेरे, तेरी बात मानकर बढ़े कदम अब मेरे, निकल पड़ा मैं एकाकी पुरुषार्थ के मग में, शायद तेरी आकांक्षाओं के बल पर ही विस्तारित कर सकूं हृदय के भाव जग में, शायद तेरी आकांक्षाओं के बल पर ही विस्तारित कर सकूं हृदय के भाव जग में, तो मैं आभारी चिर कृतज्ञ हूं तेरा सपने, मैं आभारी चिर कृतज्ञ हूं तेरा सपने, तूने मम गंतव्य को एक आकार दिया है, ओ मेरी नवतरुणाई के पहले सपने, तूने मेरे जीवन को संचार दिया है, जग समुद्र में दिशाहीन जीवन नैया को बुद्धि बाहुबल साहस की पतवार दिया।
3: बहुत बढ़िया भैया।
2: एक गीत मनीष जी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
0: हाँ, स्वागत स्वागत भाई साहब।
2: जब ये एक आवाहन गीत है।
0: हाँ, आवाहन का।
2: जब देश हमारा दुश्मनों के द्वारा संकट में डाला गया, तो जब आवश्यकता पड़ी इस गीत को राष्ट्रभक्ति से संबंधित, एक गीत ये सुनिएगा।
3: स्वागत है भैया,
2: मैं प्रस्तुत करता हूँ इसे गाकर।
0: ऐसे गीत की आवश्यकता भी है, सुनाइए।
2: कि शांति यज्ञ का मंत्रोच्चारण छोड़ो गीत क्रांति के गाओ,
0: वाह।
2: शांति यज्ञ का मंत्रोच्चारण छोड़ो गीत क्रांति के गाओ,
3: वाह।
2: प्यासी है माँ धरती अपनी लहू

प्यास बुझाओ, प्यासी है माँ धरती अपनी लहू से इसकी प्यास बुझाओ। तो दुश्मन के सर काट के नर मुंडों की माला पहना दो, माँ काली की तरह भारती माँ को भी एक गहना दो, दुश्मन के सर

0: वाह। अपने आंसू पोंछो प्यारे, समय नहीं है रोने का, तो अपनी छाती को मजबूत बना, सीमा पर डट जाओ। प्यासी है माँ धरती, अपनी लहू से इसकी प्यास बुझाओ।
1: और
0: गीत का ये बंद देखिए, आह्वान कर रहा हूँ,
2: स्वागत।
0: उठो शिशु माँ की गोदी से, माँ का कर्ज चुकाना है। उठो शिशु माँ की गोदी से, माँ का कर्ज चुकाना है। छोड़ो प्रिय

0: लाठी खाट दवाएं, अब बंदूक संभालो तुम। तो जीवन से यदि प्यार है अपने, चलो मृत्यु को गले लगाओ। प्यासी है माँ धरती अपनी, लहू से इसकी प्यास बुझाओ। प्यासी है माँ, और गीत का अंतिम बंद
1: स्वागत है भाई साहब।
0: कि नारी शक्ति महाशक्ति है, सुनो नारियों भारत की, ईंट से ईंट बजा दो दुश्मन की हर एक इमारत की।
1: बढ़िया।
0: कि फिर से माँ दुर्गा काली रानी लक्ष्मी का रूप धरो।

0: प्यार करो, त्याग और बलिदान की अब परिभाषा फिर से सिखलाओ। प्यासी है माँ धरती अपनी लहू से इसकी प्यास बुझाओ। प्यासी है माँ धरती अपनी लहू से इसकी प्यास।
1: बहुत बढ़िया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुना। और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम ना देते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस छोटी सी काव्य गोष्ठी को जो संचालित कर रहे थे हमारे शहर जबलपुर ही नहीं बल्कि देश के स्वनामधन्य शीर्षस्थ हास्य व्यंग्य के शिल्पी, एक बहुत ही प्रचलित नाम, एक स्थापित मंच के संचालकों में जिनका नाम आता है, कवि सम्मेलनों के मंचों के जो संचालक हुआ करते हैं, आज आकाशवाणी के इस छोटे से आयोजन में आपके संचालन में हम सब ने काव्य पाठ किया। मैं पूरे आदर सम्मान के साथ में और माननीय मनीष तिवारी जी को आवाज देता हूं कि वे भी अपनी रचनाओं का पाठ करें।
2: मनीष तिवारी जी,
1: देशभक्ति से ओतप्रोत आज की इस काव्य गोष्ठी में भाई सोहन ने आह्वान का गीत सुनाया, मैं उस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज देश में जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, पूरे देशवासियों को, सब लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और हमें क्या करना है जिससे हमारा देश समृद्ध और सुखाल हो। कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं।
2: स्वागत है भैया।
1: आह्वान की पंक्तियां हैं कि बदनेक इरादे करें पस्त सब सुंदर सुखद विहान चलो। बदनेक इरादे करें पस्त सब सुंदर सुखद विहान चलो, दुश्मन की अब करना है सारी बंद दुकान चलो। दुश्मन की अब करना है सारी बंद दुकान चलो, भारत का सुख रहे सुरक्षित सभी करो चौकीदारी। भारत का सुख रहे सुरक्षित सभी करो चौकीदारी, अंतरिक्ष तक जाने वाले लेकर नए विमान चलो। अंतरिक्ष तक जाने वाले लेकर नए विमान चलो। और आगे सुनिएगा, हमें देश के लिए क्या आवश्यकता है आज की सबसे बड़ी आवश्यकता कि धर्म जाति भाषा के अब कोई वाद विवाद न हो। धर्म जाति भाषा के अब कोई वाद विवाद न हो, भारत माँ की रक्षा करने राम कृष्ण रहमान चलो। धर्म जाति भाषा के अब कोई वाद विवाद न हो, भारत माँ की रक्षा करने राम कृष्ण रहमान चलो। लोकतंत्र और संविधान को हमें सुरक्षित रखना है, प्रत्येक देशवासी की ये ड्यूटी है कि लोकतंत्र और संविधान को हमें सुरक्षित रखना है। रक्षक से चौकीदारों तक पूरा

0: हिंदुस्तान चलो, रक्षक से चौकीदारों तक पूरा हिंदुस्तान चलो। और सुनिएगा आगे,
1: स्वागत है दादा,
0: कि सीमाओं की रक्षा करने सैनिक संघ जवान चलो।
2: क्या बात,
0: सीमाओं की रक्षा करने सैनिक संघ जवान चलो। खेत की पैदावार

0: को, नई सदी को अपने भारत की ही सदी बनाना है, अपने दिल दिमाग में लेकर ऐसे ही अरमान चलो, अपने दिल दिमाग में लेकर ऐसे ही अरमान चलो। और एक चार पंक्तियां और के कैसे कैसे हमने देश में आज़ादी पाई और हमारे देशभक्त डिगे नहीं, उसी से प्रेरणा लेके एक चार लाइनें आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद एक राष्ट्र वंदना का छंद सुनाऊंगा कि रखे कदम जवानी पर ज्यों ही अपनाया वंदे मातरम। ये उस वक्त का दृश्य आप देखिए, छोटे छोटे लोग नौजवान, देश आजाद नहीं हुआ, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कि रखे कदम जवानी पर ज्यों ही अपनाया वंदे मातरम, जहां जहां तक नजरें जाती पाया वंदे मातरम। रखे कदम जवानी पर ज्यों ही अपनाया वंदे मातरम, जहां जहां तक नजरें जाती पाया वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति कुछ ऐसी जागी अंग्रेजों को पीट पाट कर, राष्ट्रभक्ति कुछ ऐसी जागी अंग्रेजों को पीट पाट कर, फांसी पर चढ़ते चढ़ते भी गाया वंदे मातरम, फांसी पर चढ़ते चढ़ते भी गाया वंदे मातरम। और राष्ट्रवंदना के एक छंद से मैं अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के सारे लोग तो प्रसन्न हुए, इसके अलावा भी एक और हलचल हुई जिसे मैंने अपने नज़रिए से देखा कि देश आज़ाद हुआ तो हमारे इस ब्रह्मांड में और जो चारों तरफ की जो दिशाएं हैं उनने कैसे आज़ाद भारत का स्वागत किया। एक एक दिशा आती है और हमारी मातृभूमि का स्वागत करती है। सुनिएगा कि पूरब से सूरज भी किरणों को भेज कर धरती के तेज को निखारता ही जा रहा। पूरब से सूरज भी किरणों को भेजकर धरती के तेज को निखारता ही जा रहा, और पश्चिम का नीर देखो होकर अधीर देखो, पश्चिम का नीर देखो होकर अधीर देखो, वंदे मातरम को उचारता ही जा रहा। पश्चिम का नीर देखो होकर अधीर देखो, वंदे मातरम को उचारता ही जा रहा। उत्तर के मान से हिमालय ध्यान से, उत्तर के मान से हिमालय ध्यान से दिव्य धरा धाम को निहारता ही जा रहा, और दक्षिण में बार बार हिलोरों को मार मार सागर चरण को पखारता ही जा रहा। दक्षिण में बार बार हिलोरों को मार मार सागर चरण को पखारता जा रहा है। बोलिए भारत माता की जय जय। इसी के साथ वंदे मातरम और आज की जबलपुर आकाशवाणी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी का हम यहीं पर विराम देते हैं, और आकाशवाणी के सभी चाहने वाले और सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, भारत माता की,
1: भारत माता की जय। वंदे मातरम।
2: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सुन रहे थे विशेष काव्य गोष्ठी स्वतंत्रता की काव्यांजलि। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में हमें अनुरोध भरी चिट्ठी भेजी है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया ने। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद। इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं उपकार फिल्म का यह गीत।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्ताबा, आफिया खान, रऊफ भाई और शहीद भाई ने। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेग बिरक और मीका बिरक। बरगी नगर से रविंद्र गद्रे, सुभाष, दिगंबर, राजेश गद्रे, शिवम, शुभांग, सृष्टि। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इन सब की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत।

अगला गीत फिल्म आक्रमण से सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राजेश शर्मा, मोना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शर्मा शाइना ने। चांदनी चौक पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन। गढ़िया मौजे अस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती और सुनीता देवी। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य उदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। सुनते हैं इन सब की पसंद पर आक्रमण फिल्म का ये गीत।

मन भावन, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। रात्रि के 11 बजे हैं। अब हम हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर

0: अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुँच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in the several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: President Draupadi Murmu highlighted that making the country a Naxal free is a major achievement as for decades Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said today the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
2: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
1: The President said that the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students.